गौड़ी ग्वारी महला पंजवा बहुत दर्भ कर मन ना आघन्ना अनक रूप देख नह पतियाना पुत्र कलत्तर उर्जियो जान मेरी ओह बिन सह ओए पस मैं ढेरी बिन हर

रहाउ। हस पवन हस्त असवारी, चोआ चंदन सेज सुंदर नारी। नट नाटक आखारे गाया, तामह मन संतोख न पाया। तखत सभा मंडन दोलीचे, सगल मेवे सुंदर बागीचे। अखेर बिरत राजन की लीला, मन ना सुहिला परपंच हीला। कर कृपा संतन सच कहया, सर्व सुख एहो आनंद लहया। साध संग हर कीर्तन गाईऐ, कहो नानक वड भागी पाईऐ। जा कै हर तन सोई सुहेला, प्रभ कृपा ते साध संग मेला। रहाओ दूजा गौड़ी गुआरवी महला पंजवां।

दासा कमन सो बिद जित राम गुण गाए कमन सो मत जित तरै एह माए रहाउ जो पालाई सो

राम गुण गाओ, निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिय कतु जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरे, कमन सो जन जो सौदा जोरे, महल साहा का किन बिद पावे, कमन सो बिद जित पीतर बुलावे, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसाह, गौड़ी महला पंजवां गवारी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहू ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन ताने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निर धन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु प्रकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अरबस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अररंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल शिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म कर हों फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत ए जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राए, ताको कहां व्यापै माए, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रह में कोई जागत रह, साबत वस्त ओह अपनी लह रहाओ। सगल सहेली अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारी, सुने नगर परे ठगहारी, उन तेरा कै बाप ना माई, उन तेरा कै मीत ना पाई, दर्ब स्याणप ना हुए रहते, साध संग ओए दुष्ट वस होते।

हो जागै जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी साबत धन माल, रहाउ दूजा गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, जाकै वस खान सुल्तान, जाकै वस है सगल जहान, जाका किया सब किश होए, तिसते बाहर ना ही कोई, कहो बेनंती अपने सतगुर पाए, काज तुम्हारे देन बाहे रहाओ, सबते ऊच जाका दरबार, सगल भगत जाका नाम आधार, सर्ब व्यापत पूर्ण तनी, जाकी शोभा कट कट बनी, जिस सिमरत दुख डेरा टह, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे, संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास, गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, सतगुर दर्शन अगन निवारी, सतगुर भेट तहु मैं मारी, सतगुर संग नाही मन डोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जा सच महराती, शीतल शांत गुरते प्रभ जाते, रहाओ संत प्रसाद जपै हर नाऊ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाऊ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह परम, साध रेण मज्जन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोविंद, साधा मह ए हमरी जिंद, किरपा निध किरपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कौ प्रभ कीनी दया, साध संग नानक नाम लया, गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, साध संग जपियो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताज अभमान पये निर्वैर, आठ पहर पूजो गुर पैर, अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जस कानी।

अगमय गोचर सदा बेअंता, सिमरमना पूरे गुरमंता, जाकी सेवा सर्व निदान, प्रभु की

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जाके है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाय बिन हर पव काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्श न मेटे कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशना।

निदान सोई पुरख जपै भगवान आठ पहर हर हर गुण गाऊं कहो नानक कहो तिस बल जाऊं राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा चौपदे दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना जो तज छोड़न तिस स्यों मन रचना कहो गसाई मिली ऐ के जो बिबरजत तिस स्यों ने रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती सत होवन मन लगे ना राती बावे मार्ग टेढ़ा चलना सीधा छोड़ अपूठा बुनना दोहां सनिया का खसम प्रभ सोई जिस मेले नानक सो मुक्ता होई गौड़ी ग्वार री महला पंजवा कल युग मह मिले आए संयोग जिचर आ गया तिचर भोग है भोग जलै न पाइए राम स्नेही किरत संयोग सती उठ होई रहाव देखा देखी मन हठ जल जाइए प्रिय संग न पा

अमोल, परे पंडार अखूट अतोल, खाव है खर्च है रल मिल पाई, टूट न आवे वद दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए, सो एत खजाने लियार लाए, गौड़ी महला पंजवां, डर डर मरते जब जानिए दूर, डर चूका देखिया भरपूर, सतगुरे अपने कौ बलिहार, छोड़ न जाई सर पर तारे रहाव, दुख रोग सोग बिसरे जब नाम, सदा आनंद जा हर गुण गाम, बुरा भला कोई ना कही जय, छोड़ मान हर चरण गही जय, कहो नानक गुर मंत्र चितार, सुख पावे साचे दरबार, गौड़ी महला पंजवां, जांका मीत साजन है समिया, तिस जन कहो कहो का की कमिया, जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी, दुख दर्द भ्रम तां का भागी रहाउ, जां कहो रस हर रस है आयु, सो अन रस नाही लपटायु, जा का कहया दरगाह चले, सो किसको नदर ले आवे तले, जां का

कह सगल निदहना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किने बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसलह पुंचा रहा अनहत बाणी थान निराला ता की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा अरादो कवन योग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ लै गावो कवन बोल पार ब्रह्म री जावो रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पव जल तरो कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमे मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा।

सेव आद पुरख अपरंपर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पए समरथ अंगा।

हर कै मार्ग पतत पनीत, पूरी शोभा पूरा लोकीक, कर्णहार सद वसै हदूरा, कहो नानक मेरा सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, संत की धूर मिटे अग कोट, संत प्रसाद जन्म मरण ते छोट, संत का दर्श पूर्ण इशनान, संत कृपा ते जपिए नाम रहाव, संत कै संग मिटिया अहंकार, दृष्ट आवे सबे कंकार, संत सो प्रसन्न आए वस पंचा, अमृत नाम हृदय ले संचा, कहो नानक जा का पूरा कर्म, तिस भेटे साधु के चरण। गौड़ी महला पंजवा, हर गुण जपत कमल परगासै, हर सिमरत त्रास सब नासै, सामत पूरी जित हर गुण गावे, बड़े भाग साधु संग पावे रहाव, साध संग पाइय निदनामा, साध संग

मुख हर हर बोले सो जन इत उत कत है ना डोले जां कै हर तन सो सच साह गुरपूरै कर दीनो विसा जीवन पुरख मिलिया हर राया कहो नानक परम पद पाया गौड़ी महला पंजवां नाम भगत कै प्राण आधार नाम।

नाम भगत कै सुख स्थान, नाम रत सो भगत परवान। हर का नाम जन को तारे, सास सास जन नाम सुमारे। कहो नानक जिस पूरा भाग, नाम संग ताका मन लाग। गौड़ी महला पंजवा, संत प्रसाद हर नाम ते आया। तब ते तावत मा

साद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरन आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया।

सिमरन की बरिया, सिमरत नाम पै पार उतरिया। रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख, प्रभ अवनासी मन मह लेख। सुन कीर्तन साध पह जाए, जन्म मरण की त्रास मटाए। चरण कमल ठाकुर उरतार, दलाब दे नानक निस्तार। गौड़ी महला पंजवा, जाको अपनी कृपा धारे। सोजन रसना नाम उचारे, हर बिसरत सहसा दुख व्यापे। सिमरत नाम परम पौ भागै।

पहल करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल, नानक तजियले अवर जंजाल। गौड़ी महला पंजवां, छाड़ सियानप बहु चतुराई। गुरपुरे की टेक टकाई, दुख बिन से सुख हर गुण गाई। गुरपुरा पीतिया लिवलाई, रहाउ हर का नाम दियो गुरमंत्र। मिटे वसूरे उतरी चिंत, बंद भये गुरमिलत कृपाल। कर कृपा।

गुर पूरै जब कृपा करी, भणत नानक मेरी पूरी परी, गौड़ी महला पंजवां, अनक रसा खाई जैसी ढोर,

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवां कल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी पै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण गाया।

सिमरत सिमरत प्रभ का नाम, सगल रोग का बिनसे आठाव, सहज सुपाए बोले हर वाणी, आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी, दुख दर्द जम नेड़ ना आवे, कहो नानक जो हर गुण गावे, गौड़ी महला पंजवा, पले दिनस पले संजोग, जित पेटे पार ब्रह्म निर्जोग, ओह बेला को हों बल जाऊं, जित मेरा मन जपै हर नाऊं, रहाऊं, सफल मूरत सफल ओह करी, जित रसना उचरै हर हरी, सफल ओह माथा संत नमस्कारत, चरण पनीत चलह हर मार्ग, कहो नानक भला मेरा कर्म, जित पेटे साधु के चरण, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द राख मन माहे, नाम सिमर चिंता सब जाहे, बिन

तुमरी कृपा ते दरगाह धाम, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरंपर स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी। करो अरदास अपने सतगुर पास, नानक नाम मिले सच रास। गौड़ी महला पंजवा, तन बिना जैसे थोथर तुखा, नाम विहून सुने से मुखा। हर हर नाम जपो नित प्राणी, नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहाओ। नाम बिना नाही मुख भाग, परत विहून।

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुमते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जी तेते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाणा, हुक्म बूझै सो सच समान, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवा, ताका दर्श पाईऐ वडभागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वसिया मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाव, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथि न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभु बिनो सनीजै, दास की धूर नानक को दीजै, गौड़ी महला पंजवा, हर सिमरत तेरी जाए बलाए, सर्व कल्याण बसै मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवै काम रहाव, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, विक्रम सागर तेई जन तरे, नानक जा कौ नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारे, पूरे सतगुर मिल निसतारे, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई, मिन साधु हर नाम त्याई रहाव, दलभ देह होई परवान, सतगुर ते पाया नाम निशान, हर सिमरत पूरन पद पाया, साध संग पै परम मटाया, जत कत देखो तत रहया समाए, नानक दास हर की सरनाए, गौड़ी महला पंजवा, गुरजी के दर्शन कौ बल जाओ, जप जप जीवा सत गुर नाओ, पार ब्रह्म पूर्ण गुरदेव, कर कृपा लागो तेरी सेव रहाओ, चरण कमल हृदय उरतारी, मन तन धन गुर प्राण आधारी, सफल जन्म होए परवान, गुर पार ब्रह्म निकट कर जान, संत धूर पाईऐ वड भागी, नानक गुर भेटत हर स्यों लिव लागी, गौड़ी महला पंजवा, करै दुह कर्म दिखावै होर, राम की दरगाह बांधा चोर, राम रमै सोई रामाणा, जल थल महियल एक समाना रहाव, अंतर बिख मुख अमृत सुनावै, जमपुर बाता चोटा खावै, अनक पड़दे मह कमावै विकार, खिन मह प्रगट होवे संसार, अंतर साच नाम रस राता, नानक तिस कृपाल विधाता, गौड़ी महला पंजवा, राम रंग कदे उतर न जाए, गुरपूरा जिस दे बुझाए, हर रंग राता सो मन साचा, लाल रंग पूर्ण पुरख बधाता रहाव, संत संग बैस गुण गाए, ताका रंग न उतरै जाए, बिन हर सिमरन सुख नहीं पाया, आन रंग फीके सब माया, गुर रंगे से पये निहाल, कहो नानक गुर पये है दयाल, गौड़ी महला पंजवा, सिमरत स्वामी किल विख नासे, सुख सहज आनंद निवासे, राम जना को राम परोसा, नाम जपत सब मिटियो अंदेसा रहाव, साध संग कस पौ ना परांति, गुण गोपाल गाय है दिन राती, कर कृपा प्रभ बंधन छोट, चरण कमल की दीनी ओट, कहो नानक मन पई प्रतीत, निर्मल जस पीवह जन नीत, गौड़ी महला पंजवा, हर चरणी जा का मन लागा, दुख दर्द भ्रमता का भागा, हर धन को वापा।

जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़ी महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा अमृत रस खावे है खान पान जिन दिए तिसै ना जानह स्वान कहो नानक हम लून हरामी बख्श ले हो प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मज्जन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे भाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जहां कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना परापत साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यों बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरै हर नाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरता कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे पीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवां कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग न व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पई काम जप तप संयम पूरी बडियाई

अंधला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तू ही वडियाई माया मगन नरक ले जाई रहा।

सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमहु सब।

उक्त फल पाए, उक्त सियानप इससे कश नाही, कर कृपा नानक गुण गाही, गौड़ी महला पंजवा, थाती पाई हर को नाम, बिचर संसार पूर्ण सब काम, वड भागी हर कीर्तन गाइए, पार ब्रह्म तू देह ता पाइए रहाउ, हर के चरण हृदय उरतार, भव सागर चढ़ उतरह पार, साधु संग करहो सब कोय, सदा कल्याण फिर दुख ना होय, प्रेम भगत भज गुणी निदान, नानक दरगाह पाइए मान, गौड़ी महला पंजवा, जल थल महियल पूर्ण हर मीत, ब्रह्म बिन से गाए गुण नीत, उठत सोवत हर संग पहरुआ, जां कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ, चरण कमल प्रभ हृदय निवास,

नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मज्जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाव हर के चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सरनाई जिन हर जाति मन तन शीतल चरण हर राति पै भंजन प्रभ मन ना बसाही दरपत दरपत जन्म बहुत जाही रहाव जां कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास ग्रास।

कर पूजी, सौदे को धावै बिन पूंजी, नानक राम नाम जप चीत, सिमर स्वामी हर सामीत, गौड़ी महला पंजवां, सा मत निर्मल कहियत तीर, राम रसायन पीवत बीर, हर के चरण हृदय कर ओट, जन्म मरन ते होवत छोट, रहाउ सो तन निर्मल जित उपजै न पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बिकार, सब ते ऊज एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै साध रवाल, गौड़ी महला पंजवां, ऐसी प्रीत गोविंद सिउं लागी, मेल लए पूर्ण वडभागी रहाउ, परता पेख बिगसै ज्यों नारी, त्यों हर जन जीवै नाम चितारी, पूत पेख ज्यों जीवत माता, ओत पोत जन हर सिउं राता, लोभी आनंद करै पेख तना, जन चरण कमल सिउं लागू मना।

रसायन जो जन गीते चरण कमल प्रेम भक्ति बीते रहाव आन रसादि सह सब चार नाम बिना निःफल संसार अंध

गिल विख खोए सिमरह साध करह आनंद मन तन रबिया परमानंद जिसह प्राप्त हर चरण निदान नानक दास तिसह कुर्बान गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को राखन हार, रहाउ आद जगाद प्रगट प्रताप। निंदक मुआ उपज वड ताप, तिन मारिया जे रखे न कोई। आगे पाचे मंदी सोए, अपने दास राखे कंठ लाए। शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा, रहाउ साची दरगाह बोले कूड़। सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़, रोग व्यापे कर दे पाप। अदली होए बैठा प्रभ आप, अपन कमाए आपे बांधे। दर्ब गया सब जी कै साथे, नानक शरण परे दरबार। राखी पैज मेरे करतार, गौड़ी महला पंजवा। जन की धूर मन मीठ खटानी, पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी। रहाउ अहम बुद्ध मन पूर थिधाई, साध तूर कर सुध मंजाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुध न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ। गौड़ी महला पंजवा।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी।

बादशाह सहा सब वस कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निरपव होए भजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, शरण परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी, गौड़ी महला पंजवा, हर संग राते पाहे ना जले, हर संग राते माया नहीं चले, हर संग राते नहीं डूबे जला, हर संग राते सुफल फला, सब पै मिटह तुम्हारे नाई, पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ, हर संग राते मिटै सब चिंता, हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता, हर संग राते जम की नहीं त्रास, हर संग राते पूर्ण आस, हर संग राते दुख न लागे, हर संग राता अन दिन जागे, हर संग राता सहज कर वसै, हर संग राते ब्रह्म पौ नसै, हर संग राते मत उत्तम होए, हर संग राते निर्मल सोए, कहो नानक तिन कहो बल जाई, जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही, गौड़ी महला पंजवा, उदम करत सीतल मन पहे, मार्ग चलत सगल दुख गए, नाम जपत मन पहे आनंद, रस गाए गुण परमानंद, खेम पया कुशल कर आए, पेटत साध संग गई बलाए रहाओ, नेत्र पनीत पेखत ही दर्श, तन मस्तक चरण कमल ही परस, गोबंद की टहल सफल एकाया, संत प्रसाद परम पद पाया, जन की कीनी आप सहाय, सुख पाया लग दासह पाए, आप गया ताया पह पहे, कृपा निदान की सरनी पए, जो चाहत सोई जब पाया, तब ढूंढन कहां को जाया, अस्थिर पए बसे सुख आसन, गुर प्रसाद नानक सुख बासन, गौड़ी महला पंजवा, कोट मजन कीनो इशनान, लाख अरब खरब दीनो दान, जा मन वस्यो हर को नाम, सगल पवित्र गुण गाए गोपाल, पाप मिट है साधु शरण दयाल रहाव, बहुत उर्द तप साधन साधे, अनक लाभ मनोरथ लादे, हर हर नाम रसन अरादे, सिमरत शास्त्र वेद बखाने, जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने, नाम जपत प्रभ सिंह मन माने, अगाध बोध हर अग्न अपारे, नाम जपत नाम हृदय बिचारे, नानक कहो प्रभ कृपा तारे, गौड़ी महला पंजवा, सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल गुर हृदय बसाया, गुरु गोबिंद पार ब्रह्म पूरा, किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ, अन दिन जपो गुरु गुर नाम, ताते सिद्ध पहे सगल काम, दर्शन देख सीतल मन पहे, जन्म जन्म के किल बिख गए, कहो नानक कहां पै पाई, अपने सेवक की आप पैज रखाई, गौड़ी महला पंजवा, अपने सेवक को आप सहाई, नित प्रत पार बाप जैसे माई, प्रभ की शरण उबरे सब कोए, कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव, अब मन बसया करने हारा, पै बिन से आत्म सुख सारा, कर कृपा अपने जन राखे, जन्म जन्म के किल बिखलाते, कहन न जाए प्रभ की वडियाई, नानक दास सदा सरनाई, राग गौड़ी चेती महला पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम को बल पूरन पाई, ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ, जो जो चितवै दास हर माई, सो सो करता आप कराई, निंदक की प्रभ पत गुआई, नानक हर गुण निरपो गाई, गौड़ी महला पंजवा, भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर,
गर्त परत गह लेहो अंगोरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं, आरत द्वार रटत पिंगोरिया। दीना नाथ अनाथ करना में, साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक, पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बै

रहाउ। तुझ बिन करी ना जीवना, त्रिग रहना संसार। जी प्राण सुख दातिया, निमख निमख बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ, गर्त हो उदर गोपाल। मोहे निर्गुण मत थोरिया, तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला, कवन विधि विचार। सरल समाई दास हित, ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध, नाम महारस माहे। सो प्रसन्न भये केसवा, सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो, तू मेरे प्राण आधार। साध संग नानक भजै, बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के, संत के घर महला पंजवां।

रहाव। बन बन खोजत फिरत बैरागी, बिरले काहू एक लिव लागी। जिन हर पाया से बड़ भागी, ब्रह्मादिक सनकादिक चाहै। जोगी जति सिद्ध हर आहै, जिस है प्राप्त सो हर गुण गाहै। ताकि शरण जिन बिसरत नाही, बड़ भागी हर संत मलाही।

सहज भया भ्रम खिन मह नाठा मिल ज्योति ज्योत समाई रहा दूजा गौड़ी महला पंजवा ऐसो परचो पायो करी कृपा दयाल बीठले सतगुर मुझे बतायो रहाओ जत कत देखो तत तत तुम ही मोहे एहो विश्वास होए आयो कह पह करो अरदास बेनती जो सुन तो है रघुरायो लहयो सहसा बंधन गुर तोरे ता सदा सहज सुख पायो होना सा सोई फुनोसी सुख दुख कहां दिखायो खंड ब्रह्मांड का एको ठाणा गुर परदा खोल दिखायो नौ निद नाम निदान एक ठाई तौ बाहर कैठे जायो एक कनक अनक पांत साजी बहु प्रकार रचायो कहो नानक परम गुर खोई है इव तत्तै तत् मलायो गौड़ी महला पंजवा औज कटै दिन सरै नारी मन गुर मिल काज सवारी रहाओ करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला यहां खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला एह संसार विकार सहसे मह तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए की आए हर रस अकथ कथा तिन जानी जा को आए सुई विहाजो हो हर गुर ते मन है बसेरा निज कर महल पाव हो सुख सहजे बहुर ना हुए गो फेरा अंतर जामी पुरख बधाते श्रद्धा मन की पूरे नानक दास इही सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे गौड़ी महला पंजवा राख पिता प्रभ मेरे मोहि निर्गुण सब गुण तेरे रहाओ पंच बखादी एक गरीबा राखो हो रा।

आयुः सरण तुहारी कर कर हारिउ अनक बहु भांति छोडह कतहु नाही एक बात सुन ताकी ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपौ गुर का शब्द कमाया जीत लये ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपौ संग तुम्हारे बसते एहो डरन कहां।

अनक जन्म बहु जोनी भ्रमिया बहुर बहुर दुख पाया तुमरी कृपा ते मनुख दे पाई है देहो दर्श हर राया सोई हुआ जो तिस पाणा अवर ना किन्ही कीता तुमरे पाणे परम मोह मोहया जागत नाही सूता बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारी कृपा निद दयाला राख ले हो पिता प्रभ मेरे अनाथ है कर प्रतपाला जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शन साध संगत कह पाछे कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बांछे गौड़ी महला पंजवा हौं तां कै बलिहारी जां कै केवल नाम आधारी रहाओ महिमा तां की केतक गनिए जन पार ब्रह्म रंग राते सुख सहज आनंद तिना संग उन समसारे अवर ना दाते जगत उदाहरण से ही आए जो जन दर्श प्यासा उनकी शरण परे सो तरिया संत संग पूर्ण आसा तां कै चरण परों तां जीवा जन कै संग निहाला भगतन की रेन होए मन मेरा हो प्रभु कृपाला राज जोगन अवध जो दीसै सब किस जोग मह काटिया नाम निदान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवा जोग जुगत सुन आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमक निमक नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैरागने आग्याकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेपूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी वडभागी भेट माया के बंधन काटे सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटे गौड़ी महला पंजवा अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याए ले मीता हर औखद जाको गुरदिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो ते तन ते गुर शब्द दीपक परगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जाको साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो तां को देवै जां को हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवा दया मया कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ शरण प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गात्मित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराते ओत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहे जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिय प्रगट प्रभ होआ आनंदन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवा
तुम हर से तीर आते संत हो, नबाहे ले हो मोको पुरख बधाते, ओढ़ पहचाव हुदाते रहाओ। तुम्हारा मर्म तुमा ही जानिया, तुम पूर्ण पुरख बधाते, राखो सरन अनाथ दीन कहो, करहो हमारी गाते। तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे, तुम जानो अपनी पांते, कर कृपा जिस राखो संगे, ते पार पुराते। ईत ऊत प्रभ तुम समरथा, सब किस तुम रह हाथे, ऐसा निदान देहो मोको, हर जन चले हमारे साथे। निर्गुण यारे कहो गुण की जय, हर नाम मेरा मन जापे, संत प्रसाद नानक हर पेटे, मन तन शीतल त्रापे। गौड़ी महला पंजवां, सहज समायो देव, मोको सतगुर भये दयाल देव रहाउ। काट जेवरी कियो दासरु, संतन टहलायो, एक नाम को थियो पुजारी, मोको अचर्ज गुर है दिखायो। पयो प्रगास सर्व उजियारा, गुर ज्ञान मन है प्रगटायो, अमृत नाम पियो मन तृप्तया, अन पै ठहरायो। मान आ गया सर्व सुख पाए, दुखा ठाउ गवायो, जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर, सब आनंद रूप दिखायो। ना किस आवत ना किस जावत, सब खेल कियो हर रायो। कहो नानक अगम अगम है ठाकुर, भगत टेक हर नायो। गौड़ी महला पंजवा, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, मन ता कियो टगी जैरे, जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर, ताको नाम जपी जैरे रहाओ। मन की मत त्याग हो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाई रे, जो प्रभ करे सोई पल मानो, सुख दुख योही त्याई रे। कोट पतत उधारी खिन में, करते बार ना लागे रे, दीन दर्द दुख भंजन स्वामी, जिस पावे तिस

इस करते पूर रहे हो रतनागर रे जाचक जाचे नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता सगल कटां प्रित पारी रहाओ महाकष्ट काटे खिन पीतर रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन में जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर ऊंचा अगम अपारी।

मानना हो रे परे परे ही को लुजी है सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजी है अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजी है जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी है गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो डंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार, राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, पायो बाल बुद्ध सुखरे, हरख सोग मान मृत दुख सुख, चित समसर गुर मिले रहाओ, जो लो हो किस सोचो चितो,

केते बंद परे, जो साधु कर मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए। जो लो मेरो मेरो कर तो तौ लो बिख घेरे, मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए। जो लो पोट उठाई चलियो तौ लो दान भरे, पोट डार गुरु पूरा मिलिया तौ नानक निर्भय। गौड़ी माला महला पंजवा, भावन त्यागियो री त्यागियो, त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो। सर्ब सुख आनंद मंगल रस, मान गोबिंद आगियो रहाओ। मान अभमान दो समाने, मस्तक डार गुर पागियो। संपत हरख ना आपत दुखा, रंग ठाकुर लागियो। बास बासरी एक है स्वामी, उद्यान दृष्टा गियो। निरपौ भये संत भ्रम डारियो, पूर्ण सर्वागियो। जो किस करतै कारण कीनो, मन बुरो न लागियो। साध संगत प्रसाद संतन कै, सोयो मन जागियो। जन नानक ओड़ तुहारी परियो।

गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन शीतल मन शीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख त्रिशन सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकर जो भेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्ब लोक माया के मंडल गिर गिर परते तरनी रहाओ सास्त सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किश इन्ह कमानो जप तप कशु ना साधा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांधा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाई एह पैखर पए पैरा तब इहो कहां कमावन परया जब इहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करन हार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ बरत नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई मुहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

तेन त्रे पवन सुख परमानंदा जीओ सेज सुहावी एहो मन बिकसंदा जीओ पेख दर्शन एहो सुख लहिया जीओ चरण पखार करी नित सेवा जीओ पूजा अर्चा बंदन देवा जीओ दासन दास नाम जप लेवा जीओ बिनो ठाकुर पै कही है जीओ इस पुन्नी मेरी मन तन हरिया जीओ दर्शन पेखत सब दुख पर हरिया जीओ हर हर नाम जपे जप तरिया जीओ एहो अजर नानक सुख सही है जीओ गौड़ी माज महला।

मारे सुख वसा सच शब्द निशान रहाव सबे गल्ला जातियां सुन कै चुप किया कद ही सुरत ना लदिया माया मोहड़िया दे बजारत सारता से अखी डिठड़िया कोई जे मूर्ख लोभिया मूल ना सुनी कहया इकस दोहो चौहो क्या गणी सब इकत साध मुठी एक अध नाए रसियड़ा का विरली जाए बुठी भगत सच्चे दर सोहंदे आनंद करह दिन रात रंग रत्ते परमेश्वर है जन नानक तिन बल जात गौड़ी महला पंजवा मांझ दुख भंजन तेरा नाम जी दुख भंजन तेरा नाम आठ पहर आराधी है पूरन सतगुर ज्ञान रहाव जित घट वसै पार ब्रह्म सोई सुहावा थाम जम कंकर नेड़ ना आवई।

आज सब फिक्किया तन मन फिक्का होय, बिन परमेश्वर जो करे फिट सो जीवन सोय। अंचल गह कह साधका तरना एहो संसार, पार ब्रह्म आरादी है उदरै सब परवार। साजन बंद समित्र सो हर नाम हिरदय दे, औगण सब मटाए कह पर उपकार करे। माल खजाना थे हो कर हर के चरण निदान, नानक जाचक दर तेरा प्रभ तुधनो मंगे दान। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी महला नौवा, साधो मन का मान त्यागो काम क्रोध संगत दुर्जन की, ताते अहनस भागो रहाओ सुख दुख दोनों सम कर जान। और मान अपमाना हरख सोग ते रह अतीता, तिन जग तत पछाना। उस्तत निंदा दो त्यागे खोजे पद निर्वाना, जन नानक एहो खेल कथन है किन्हू गुरमुख जाना। गौड़ी महला नौवा साधु रचना राम बनाई, एक बिनसै एक अस्थर मान, अचरज लखियो ना जाई रहाओ काम क्रोध मोह बस प्राणी। हर मूरत बिसराई झूठा तन साचा करमा न्यो, ज्यो सुपना रह नाई। जो दिसै सो सगल बनासै ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जानियो मिथ्या रहियो राम सरनाई। गौड़ी महला नौवा प्राणी को हर जस मन नहीं आवे, एहन समग्न रहे माया में कहो कैसे गुण गावे रहाओ। पूत मीत माया ममता स्यों एह विद आप बंधावे, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देख तास उठ धावे। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूड ताहे बिसरावे, जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावे। गौड़ी महला नौवा साधु एहो मन गहियो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है याते थिर ना रहाई रहाओ। कठन क्रोध घट ही के भीतर जेहे सुध सब बिसराई,

गाई जन नानक हर भये दयाला तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवां साधु गोविंद के गुण गावो मानस जन्म अमोलक पायो बिरथा काहे गवावो रहाओ पतत पनीत दीन बंद हर सरन ताहे तुम आवो गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभमान मोह माया पुन भजन राम चित लावो नानक कहत मुक्त पंत एहो गुरमुख हुए तुम पावो गौड़ी महला नौवां को माई भूल्यो मन समझावै वेद पुराण साध मग सुन कर निमखना हर गुण गावै रहाओ दुर्लभ देह पाए मानस की बिरथा जन्म सरावै माया मोह महासंकट बन तास्यो रुच उपजावै अंतर बाहर सदा संग प्रभ तास्यो नेहो ना लावै नानक मुक्त ताहे तुम मानो जेहे कट राम समावै गौड़ी महला नौवां साधो राम सरन बिसरामा वेद पुराण पढ़े को एह गुण सिमरे हर को नामा रहाव लोभ मोह माया ममता फुन औ बिखियन की सेवा हरख सोग परसै जे नाहिन सो मूरत है देवा सुर्ग नरक अमृत बिख ए साधो।

गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां भयो तै बौरा अहलस औद कटै नहीं जाने भयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मान्यू हर सुंदर ग्रह नारी इन मैं कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी निमख ना लीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावे गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पार रे रहाओ वेद पराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर न पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उतर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुवार री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निद सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी बिमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पए सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्यो राता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोए न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रातो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना।

कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राखै आप वडियाई दे, नील अनील अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा में आँखों कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख भी चार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहे आसमाई, निज कर व्याप रहे आ निज ठाई, पुस्तक कर है केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरी महला पहला, ना मन मरे न कार्य होय, मन वस दूता दुरमत दोय, मन माने गुरते एक होय, निर्गुण राम गुण है वस होय, आप निवार बिचारे सोए रहाओ, मन भूलो बहु चित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम बुरु दूर है ना ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन

निरपो जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिव लावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जानै गुर कै शब्दे आप पछाणै साचै शब्द दर निसाणै शब्द मरै।

हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावे सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु पए बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारी।

जो है मनमुख को आवत जावत दुख मोह है रहाओ। अपयो पियो अकथ कथ रही है, निज कर बहस सहज कर लही है। हर रस माते एहो सुख कही है, गुरमत चाल निश्चल नहीं डोलै, गुरमत साच सहज हर बोलै, पीवै अमृत तत्व रोलै, सतगुर देखिया दीखिया लीनी, मन तन अर्पयो अंतरगत कीनी, गत मित पाई आत्म चीनी, भोजन नाम निरंजन सार, परमहंस सच जोत अपार, जह देखो तह एकंकार, रह निरालम एका सच करनी, परम पद पाया सेवा गुरचरणी, मन ते मन मानिया चूकी अहं भरमणी, इन बिद कौन कौन नहीं तारिया, हर जस संत भगत निस्तारिया, प्रभ पाए हम अवर ना पारिया, साच महल गुर अलख लखाया, निश्चल महल नहीं छाया माया, साच संतोखे परम चुकाया, जिनकै मन वसिया सच सोई, तिनकी संगत गुरमुख होई, नानक साच नाम मल खोई, गौड़ी महला पहला, राम नाम चित रापै जाका, उपजंप दर्शन की जय ताका, राम ना जपहु अपाग तुम्हारा, जुग जुग दाता प्रभ राम हमारा रहाओ। गुरमत राम जपै जन पूरा, तित काट अनहत बाजे तूरा, जो जन राम भगत हर प्यार, से प्रभ राखे कृपा धार, जिन कै हिरदय हर हर सोई, तिनका दर्श परस सुख होई, सर्व जिया मैं एको रवे, मनमुख अहंकारी फिर जूनी पवे, सो बूझै जो सतगुर पाए, हउ मैं मारे गुर शब्दे पाए, अर्ध उर्द की संद क्यों जाने, गुरमुख संद मिले मन माने, हम पापी निर्गुण को गुण करिए, प्रभ हुए दयाल नानक जन करिए, सोलह अष्टपदियां ग्वारी गौड़ी किया, गौड़ी बैरागण महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, ज्यो गाई को गोयली राख है कर सारा, एहन सुपाल है राख ले आत्म सुख तारा, इत उतराखो दीन दयाला, तो शरणागत नजर निहाला रहा, जह देखो तह राव रहे राख राखन हारा, तू दाता भुगता तू है तू प्राण अधारा, किरत पया अद ऊर दी बिन ज्ञान बिचारा, बिन उपमा जगदीश की बिन सैना अधियारा, जग बिन सत हम देखिया लोभे अहंकारा, गुर सेवा प्रभ पाया सच मुक्त द्वारा, निज कर महल अपार को अपरंपर सोई, बिन शब्द

अपनो नहीं पाया। मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता। चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस। इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक की नय आपको, सो अपर अपारा। सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूझिया, सब ब्रह्म समाया। राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ। मनमुख सूतक कबह न जाए, जिचर शब्द न पीजे हर कह नाए रहाओ। सबो सूतक जेता मोह आकार, मरमर जम्मे वारो वार। सूतक अगन पौने पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाहे। सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए। सतगुर सेवै सूतक जाए, मरे न जन्मे काल न खाए। सास्त सिमरत सोध देखो कोय, विण नामे को मुक्त न होए। जुग चारे नाम उत्तम शब्द विचार, कल मह गुरमुख उतरस पार। साचा मरे न आवे जाए, नानक गुरमुख रहै समाय। गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा। हर जियो राखो हृदय उर धारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा। पंडित हर पढ़ तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरोह पारा। रहाओ गुरमुख विचो हौमै जाए, गुरमुख मैल ना लागै आए। गुरमुख नाम वसै मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई। गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रत्ते सुख होई। अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई। गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई। जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे तौर ना काई। मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यो लाए बह नित ध्याना। जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई। गुर प्रसादी मिले हर सोई।

इहु संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हूं मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपटाई।

रह अहंकारी आप ना चीने बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुरु सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिसते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण परमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखान है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल संतावे गुरमुख जम काल नेड़ ना आवे हौ मैं दूजा शब्द जलावे ना मेरा ते हर गुण गावे माया दासी भगतां की कार कमावे चरनी लागे ता महल पावे सद ही निर्मल सहज समावे हर कथा सुन है से तनवंत दिस है जो गुमाही तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही सहजे गुण रवह साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक हौ मैं मार ब्रह्म मलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे अंतर तामस आप ना पछाणे ता प्रभ पाए।

तन सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसे अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया प्रसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जा शब्द पौ खाए मेरा प्रभ निर्मला सब तै रहया समाए गुर कृपा ते मिले मलाए हर दासन को दास सुख पाए मेरा हर प्रभ इन बिद पाया जाए हर कृपा ते राम गुण गाए त्रिग बहु जीवन जित हर नाम ना लगे प्यार त्रिग सेज सुखाली कामन मोह गुबार तिन सफल जन्म जिन नाम आधार त्रिग त्रिग ग्रह कटंब जित हर प्रीत ना होए सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए हर नाम बिना मैं अवर ना कोए सतगुर ते हम गत पत पाई हर नाम ते आया दुख सगल मटाई सदा आनंद हर नाम लिव लाई गुर मिले हमको शरीर सुध पई हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई बिनसे क्रोध खिमा गह लई हर आपे कृपा करे नाम देवे गुरमुख रतन को बिरला लेवे नानक गुण गावे हर अलख अपीवे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी बैरागुण महला तीजा सतगुर तेजो मोह फेरे तेवे मुख बुरे दिसन अन दिन बदे मारियन फिर वेला ना लहन हर हर राखो कृपा तार सत संगत मिलाए प्रभ हर हृदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओह क्यों मनो विसारी है हर रखिए हृदय धार नाम मिले है पत पाई है नाम मन्ने है सुख होए सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे ओए भ्रम दे ना टकन तरत असमान ना चलई विच विस्ता पए पचन एहो जग परम पलाया मोह ठगौली पाए जिन्ना सतगुर भेटिया तिन नेड़ ना पिटै माए सतगुर सेवन सो सोहणे हौ मैं मैल गवाए शब्द रते से निर्मले चलै है सतगुर पाए हर प्रभ दाता एक तू तू आपे बख्श मलाए जन नानक शरणागति ज्यों भावे तिवें छडाए राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहले एक ओंकार सतगुर प्रसाद करहले मन परदेसिया क्यों मिलिया हर माए गुर भाग पूरे पाया गल मिलिया प्यारा आए मन करहला सतगुर।

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय कित ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वडभागिया हर एक नदर निहाल आप छडाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिद नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़गा हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इह मन मह करत गुमाना तब इह बावर फिरत बेगाना जब इह हुआ सगल कीरीना तातेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इह जान समंदा तब सगले इस मेल है फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्ण करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरे सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवा, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदै रविया सोए, मन पन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाउ, जास जपत पौ अपदा जाए, धावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह हो मैं भागै, जास जपत वस आवै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगाह सिजै, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवै साध, जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै, जास जपत रतन हर मिलै, बहुर न छोड़ै हर संग हिलै, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कशु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताकै आत्मै हुई प्रगास।

जपना, सहजे भोजन सहजे पाओ, सहजे मिटियो सगल दुराओ, सहजे होआ साधु संग, सहज मिलियो पार ब्रह्मन संग, सहजे ग्रह में सहज उदासी, सहजे डुबदा तन की नासी, जाके सहज

दान सहज कथा मह आत्म रसिया ता कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सुहाया ता कै तार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास ता कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भवास ते तरिया पुत्र कलत्तर कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रैगुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करै गो सगलो लोगा जात वर्ण तुर्क अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दीसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सदवसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसह कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे ताका विचार कहो नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संग तरे गौड़ी महला पंजवा जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वड्याई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे तिसह मार राज जोग कमावे रहाव जो इस मारे तिसको पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वड भागा जो इस मारे सो अन दिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परे कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किछ मैला इस मारी बिन सब किछ जौला जाको भये कृपाल कृपा निध तिस भई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जा की है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यो जुरै ता सबको मीत हर स्यो जुरै ता निश्चल चीत हर स्यो जुरै ना व्यापै काड़ा हर स्यो जुरै ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जा कै सुन नाम, कोट पूजा जा कै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मैं फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कै रंग। जा कै काम उतरे सब भूख, जा कै काम ना जो है दूत। जा कै काम तेरा वड गमर, जा कै काम होवे तू अमर। जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान। जा

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

करी नमस्कार। काल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा। गौड़ी महला पंजवा, मिल मेरे गोविंद अपना नाम देव, नाम बिना त्रिग त्रिग असने।

ज्यो मृतक मिथ्या श्रृंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद ज्यो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहे हर की प्रीत सदा संग चाले दयाल पुरख पूर्ण प्रतपाले रहाव बिन सतनाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रहे आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण

सुन पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तकी ओट संतह लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किस ही नाही हर पूर भंडारिया, चहो जिस जपिए नाओ सूख सुवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ कुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्व निदान अकथक थारिया, हर दरगाह शोभावंत बहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भोजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जिहवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हों मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किनै गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो, दुख अंधेरा घर ते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेविया सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवा गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्स हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवा रंग संग बिखिया के भुगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा।

मिठरस भोग भोजन सब झूठ कितै ना लेखे मैं मत जोबन गर्भ गाली दुद्धा थनी ना आवे नानक सा धन मिलै मलाई बिन पिर नींद ना आवे मुंद न मानड़िया जियो बिन धनी प्यारे क्यों सुख पावेगी बिन उर तारे नाह बिन कर वास नाही पुछो हो सखी सहेलियां बिन नाम प्रीत प्यार नाही वसह साच सहेलियां सच मन सज्जन संतोख मेला गुरमती सहु जानिया नानक नाम ना छोड़े सा धन नाम सहज समानिया मिल सकी सहेलड़ी हो हम पिर रावेहा गुर पुछ लिखोगी जियो शब्द सनेहा शब्द साचा गुर दिखाया मन मुखी पछतानिया निकस जातो रह अस्थर जाम सच पछाणिया साच की मत सदा नौतन शब्द नेहो नवेलो नानक नदरी सहज साचा मिलो सखी सहेली हो मेरी इच्छ पुन्नी जियो हम कर साजन आया मिलवर नारी मंगल गाया गुण गाए मंगल प्रेम रहस्सी मुंद मन अमाहो साजन रहंसे दुष्ट व्यापे साच जप सच लाहो कर जोड़ सा तन करै बिनती रहन दिन रस पिनिया नानक पिर तन करह रलिया इच्छ मेरी पुनिया गौड़ी चंत महला पहला सुन नाह प्रभु जियो ए कलड़ी बन माहे क्यों धीरैगी नाह बिना प्रभ वे परवाहे धन नाह बाजो रह ना साकै बिखम रैण कनेरिया नह नींद आवै प्रेम पावै सुन बेनंती मेरिया बाजो प्यारे कोई ना सारे ए कलड़ी कुरलाए नानक सा तन मिलै मलाई बिन प्रीतम दुख पाए फिर छोड़ियाड़ी जियो कमन मलावे रस प्रेम मिली जियो शब्द सुहावे शब्दे सुहावे तां पत पावे दीपक देह उजारे सुन सखी सहेली साच सहेली साचे के गुण सारे सतगुर मेली तां फिर रावी बिगसी अमृत बाणी नानक सा तन तां फिर रावे जां तिसकै मन पाणी माया मोहनी नी करिया जियो कूड़ मुट्ठी कूड़ियारे क्यों खूलै गल जेवड़िया जियो बिन गुर अथ प्यारे हर प्रीत प्यारे शब्द विचारे तिस ही का सो होवै पुन दान अनेक नावन क्यों अंतर मल धोवै नाम बिना गत कोए ना पावे हठ निग्रह बेबाण नानक सच कर शब्द सियापै दुबदा महल के जाने तेरा नाम सच्चा जियो शब्द सच्चा विचारो तेरा महल सच्चा जियो नाम सच्चा वापारो नाम का वापार मीठा भगत लाहा अन दिनो तिस बाज वखर कोए ना सूजे नाम ले वो खिन खिनो परख लेखा नदर साची कर्म पूरे पाया नानक नाम महारस मीठा गुर पूरे सच पाया राग गौड़ी पूर्वी संत महला तीजा।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कहे सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रैन सुहेलड़िए जियो हर सिओ चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए हर गुण गाए अन

फिर मुक्ति सा तन महल न पाई। गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाई। नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मलाई। ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मलाए। बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन भरम चुकाए। गुर भरम चुकाए इउं मिलिए माए ता सा तन सुख पाए। गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए। कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारे। नानक कामण हर वर पाया गुर कै भाए प्यारे। गौड़ी महला तीजा।

कापड़ तन ना सुहाई। कापड़ तन सुहावै जां पिर भावै, गुरमती चित लाइऐ। सदा सुहागण जां सतगुर सेवे, गुर कै अंक समाइऐ। गुर शब्दै मेला तां फिर रावी, लाहा नाम संसारी। नानक कामण नाह प्यारी, जां हर के गुण सारी। सा धन रंग माणे दियो, अपने नाल प्यारे। अहनस रंग राती जियो, गुर शब्द विचारे। गुर शब्द विचारे हमें मारे, इन बिद मिलो प्यारे। सा धन सुहागण सदा रंग राती, साचे नाम प्यारे। अपने गुर मिल रही है अमृत गही है, दुबदा मार निवारे। नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचों हों मैं मारी। हर का नाम हृदय बसाए, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमानी, मैं नैनी नींद न आवे जियो, पावे अन्न ना पानी। पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाईए। गुर आगे करो बिनंती, जे गुर पावे ज्यों मिले तिवें मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए। नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस दे दीजियो, हर कै सहज सुपाए। मन मोहन मोए लिया जियो, दुबदा सहज समाए। दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, गल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै भाई प्यारे। रैण सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिया प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे हम मैं मारे, गुरमुख कार्य सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझै गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगे जाए पुकारे। नानक मनमुख थाओ ना पाए, बिन गुर अत प्यारे।

सेवा सुरत भगत एह साची विचों आप गवाई है। हम मत हीन मूरख मुगद अंधे सतगुर मार्ग पाए नानक गुरमुख शब्द सहावे अन दिन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे आपे सतगुर आप शब्द जियो जुग जुग भगत प्यारे। जुग जुग भगत प्यारे हर आप सवारे आपे भगती लाए आपे दाना आपे बीना आपे सेव कराए। आपे गुणदाता अवगुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सद बलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए। गौड़ी महला तीजा।

करि आवहु नाह प्यारी। हौ मन अर्पी सब तन अर्पी, अर्पी सब देसा। हौ सिर अर्पी तिस मीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा। अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया। खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया। दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा। बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वधाई। कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई। मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया। सब मीत बंधप हरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया। अनहत वाजे बजे है कर्म है, फिर संग सेज विछाई। बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई। गौड़ी महला पंजवा। मोहन तेरे ऊचे मंदर महल अपारा, मोहन तेरे सोहन द्वार जियो संत धर्मशाला। धर्मशाल अपार दयार, ठाकुर सदा कीर्तन गावे। जह साध संत इकत्तर होवे, तहां तुझे त्यावे। कर दया मया दयाल स्वामी, हो दीन कृपारा। बिनवंत नानक दर्श प्यासे, मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप, चाल निराली। मोहन तू मन है एक जी, अवर सब राली। मन है ता एक अलेख ठाकुर, जिन्ह सब कल धारिया। तुद बचन गुर कै वस किया, आद पुरख बनवारिया। तू आप चलिया आप रहिया, आप सब कल धारिया। बिनवंत नानक पैज राखो, सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना, मोहन जम नेर ना आवै तुद जपै निधाना। जम काल किनको लगै नाही, जो एक मन त्यावे। मन बचन कर्म जे तुद आराध है, से सबे फल पावे। मल मूत मूड जे मुग्ध होते, से देख दर्श सुगियाना। बिनवंत नानक राज निश्चल, पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे, मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे। तारिया जहान

ना आया। बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही, सतगुर पुरख मरारी। बिनवंत नानक टेक राखी, जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक, पतत असंख पनीत कर, पुनः पुनः बलिहार। नानक राम नाम जप पाव को, तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण, गोविंदा हर माधु। त्याए मना मरार मुकंदे, कटिए काल दुख फादु। दुख हरन दीन सरन सिरी तहर, चरण कमल अराधिय। जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर, निमक सिमरत साधिय। कल मलै दहता शुद्ध करता, गिन सरैन अराधु। बिनवंत नानक करहु कृपा, गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर, पै पंजन हर राया। श्री रंगो दयाल मनोहर, भगत वच्छल बिरदाया। भगत वच्छल पुरख पूरन, मन है चिंदिया पाईए। ताम अंध कूप ते उधार है, नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन, गुण अनक भगती गाया। बिनवंत नानक करहु कृपा, पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर, सर्व कला जिन तारी। करुणा में समरथ स्वामी, कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता, बेअंत अगम अपारू। शरण जोग समरथ मोहन, सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह, जपत नाम मरारी। बिनवंत नानक करहो कृपा, समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी, सब ते ऊच दयाला। विसंबर देवन को एक है, सर्व करे प्रतपाला। प्रतपाल महादयाल दाना, दया तारी सब किस। काल कंटक लोभ मोह नासे, जी जा कै प्रभ बसे। सो प्रसन्न देवा सफल सेवा, पई पूर्ण काला। बिनवंत नानक इच पुन्नी, जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा, सुन सखिए मिल उदम करेहा। मनाए लह हर कंत, मान त्याग कर भगत ठगौरी। मोह है साधु मंत, सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई। एह रीत भली भगवंत, नानक जरा मरन पै नरक निवार। पनीत करे तिस जंत, सुन सखिए एह भली बिनंती। एहो मतांत पकाइए, सहज सुपाए अपाद रहत हुए। गीत गोविंद गाइए, कल कलेश मिट है ब्रह्म नास है। मन चिंदिया फल पाइए, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर। नानक नाम ते आइए, सखी इश करी नित सुख मनाई। प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्स बैरागण। पेखो थान सबाए, खोज लहो हर संत जना संग। समरथ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता। सेवड भागी माए, सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे। मेरा मन तन हर संग हिलिया, सुन सखिए मेरी नींद पली। मैं आपनड़ा फिर मिलिया, प्रम खोयो शांत सहज स्वामी। प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी। नानक सुहाग ना टलिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा। गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा। गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा। गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत,
गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगादि जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा, सलोक आप है किया कराया आप है करना जोग, नानक एको रब रहया दूसर हुआ ना होग पौड़ी, ओ अंग साध सतगुर नमस्कारन आदि मद अंत निरंकारन, आप है सुन आप है सुख आसन, आप है सुनत आप ही जासन, आपने आप है उपायो, आप है बाप आप ही मायो, आप है सूखम आप है अस्थूला।

नै बुझै सो प्रभ सदहु संग। लेखै गणत ना छूटियै काची भीत ना सुध, जिसै बुझाए नानका तेहे गुरमुख निर्मल बुद्ध। सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग, जो राते रंग एक कह नानक गूढ़ा रंग पौड़ी। रारा रंग हो क्या मन अपना, हर हर नाम जप हो जप रसना। रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। वाह महली पावह तू बासा, जन्म मरन नह हुए बनासा। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता कै। सलोक लालच झूठ विकार मोह, व्यापत मूड़े अंध। लाग परे दुर्गंध स्यो, नानक माया बंद पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते। या माया मैं जन्मै मरना, ज्यो ज्यो हुक्म त्यों त्यों करना। को ऊन न को पूरा, को सुगर न को मूरा। जित जित लावो तित तित लगना, नानक ठाकुर सदा अलिपना। सलोक लाल गोपाल।

कहे आप अवर नह हो होमन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर ते जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए जास रसन हर हर जस भनिए आए बस है साधु कै संगे अन दिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जाको दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्स समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा भाव दुख दर्द तृष्णा बुझे नानक नाम समा

कर या भवजल करना यया जन्मना आवे सो एक नाम ले मन है परो यया जन्मना हारी है गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जान कह हिरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के मीत गुरपुरा अपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे छाड चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धीया ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सतनाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खात शास्त्र हो ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह जिस ब्रह्मे कर्म कीर्त की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कश दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कै पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेल है बिगसह अंध स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम ग्रह माल खेद ना दुख ना दान ते जा को नदर करी नानक जो प्रभ भाणिया पूरी तिना परी सलोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटै नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवो हो सास सास जपनीत कहां बसासा देहे का बिलम ना करे हो मीत नह बारक नह जोगन नह बिरदी।

तब दर्शन पायो, चार बचार बिनस्यो सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ, चिंत बिसारी एक दृष्टिता, नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। श्लोक। छाती शीतल मन सुखी,

लास्ट मारे, दास दासन के पानी हारे। सच्चा शार होत तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता। शाड सयानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई। शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। श्लोक जोर जुल्म फूलह घनो, साची दे विकार। हम बुद्ध बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी। जज्जा जान हो कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ। जो जान हो भगत ज्ञानी, आगे ठाकुर तिल नहीं मानी। जो जान मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता। साध संग जे हो मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। श्लोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध। कारहा तुझे ना व्यापई, नानक मिटे उपाद पौड़ी। चज्जा चूरन मिटे तुमारो, राम नाम स्यो कर व्यवहारो। चूरत चूरत साकत मुआ, जा कैरदै होत पाओ बीया। चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ। चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत। जीवत रहो हर हर भजो, नानक नाम प्रीत पवड़ी। जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एहेत। गणती गणो ना गण सको, ऊट सधारे केत। न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिय संग। ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग। ज्ञान सोई संत सोए, भ्रम ते की चत भिन्न। अंधकूप ते कढ़ो, जेह होवो सो प्रसन्न। ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग। नानक ते उस्तत करो, याहू कियो संयोग। श्लोक टूटे बंधन जन्म मरन, साध सेव सुख पाए। नानक मनो ना बिसरे, गुण निद गोबिंद राय पौड़ी। टहल करहो तौ एक की, जाते बिरथा ना कोए। मन तन मुख ही है बसै, जो चाहो सो होए। टहल मैल तां को मिले, जा को साध कृपाल। साधु संगत तौ बसै, जो आपन होहे दयाल। तोहे ताहे बहु पवन, बिन ना

तद्दा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सोभा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक तेह जन मिली वडाई सलोक नानक नाम नाम जप जपिया अंतर बाहर रंग गुरपूरै अपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी नन्ना नरक परहै ते नाही जाकै मन तन नाम बसाही नाम निधान गुरमुख जो जपते बिख माया मह ना होए खपते नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो निध निधान हर अमृत पूरे तह बाजे नानक अनहद तूरे सलोक पात राखी गुर पार ब्रह्म तज परपंच मोह बिकार नानक सो अरादियै अंत न पारा वार पौड़ी पप्पा परमित पार न पाया पतत पावन अगम हर राया होत पनीत कोट अपराधु अमृत नाम जप है मिल साधु परपंच त्रोहो मोह मिटनाई जाको राखो आप गुसाई पातशाह सत्तर सिर सो नानक दूसर अवरना को सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतह पई मन जीत नानक गुर ते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी फफा फिरत फिरत तू आया दुर्लभ देह कल युग मह पाया फिरया अवसर चरै ना हाथा नाम जप हो तो कटिया फासा फिर आवन जान ना होई एक जप हो जप सोई

मत पूरी प्रधान ते गुरपूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवा कै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं तेह माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाही नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे पवड़ी जैया यतन करत बहु विदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारै सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाता मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगटी आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटे तेरी बाकी रण दर्ग है तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बेकारा गुरपूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहू दुख दर्द ते मिटै खनाओ नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है पाई गुरपूरे बिन बिद ना बनाई गुरपूरे संयम कर दिया नानक तौ फिर दुख ना थिया। सलोक वासुदेव सर्वतर मैं ऊन ना कतहू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी ववा वैर न करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समाहू वासुदेव जल थल मैं रविया गुर प्रसाद विरले ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चिहन सगल ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता। सलोक हौ हौ करत बेहानिया साकत मुगद अजान रड़क मोए ज्यो त्रिखावन नानक किरत कमान पौड़ी अड़ाड़ा लाड़ मिटै संग साधु कर्म तर्म तत नाम अराधु रूड़ो जेहे बसे उरिद माही वा की डाड़ मिटत बिन साही अड़ाड़ करत साकत गावारा जेहे ही है हम बुद बेकारा राड़ा गुरमखड़ाड़ मटाई निमख माहे नानक समझाई। सलोक साधु की मन ओट गहो उकत सियान पत्याग गुर दीखिया जेहे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी सस्सा सरन परे अबहारी शास्त्र सिमरत वेद पुकारी सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम भूलन हारे तुम समरत अगनत अपारे सरन परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पये मन तन पये अरोग नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी खखा खरा सराहू ताहू जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमाना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम तां वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा नानक साहेब सदा दयारा। सलोक
सत कहूं सुन मन मेरे शरण पर हो हर राय उक्त सियानप सगल त्याग नानक ले समाए पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना सहस भांत करह चतुराई।

प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब किस सुझै। प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा।

आसन दसना प्रभु को सिमरह से तनवंते प्रभु को सिमरह से पतवंते प्रभु को सिमरह से जन परवान प्रभु को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरह से बेमोहताजे प्रभु को सिमरह से सर्व के राजे प्रभु को सिमरह से सुखवासी प्रभु को सिमरह सदा अविनाशी सिमरण ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगै रवाला प्रभु को सिमरह से पर उपकारी प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरह से मुख सहावे प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावै।

जन अवर न जानी, ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते, आठ पैर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग केते तरे, पार जात एहो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम।

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु भांति नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे महा उदास पीसर पीवे अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावे तौ पी हों मैं मैल ना जावे हर के नाम संसर कछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटे गर्भ गमान ना मन ते हुटे सोच कर

अपमान आप सुकौ जो जाने नीचा सोगनिय सब ते ऊंचा जाका मन हुए सगल की रीना हर हर नाम तिन घट घट कीना मन अपने ते बुरा मिटाना एक है सगल सृष्ट सा

काल अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी कवन मूल ते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार शिंगारिया गर्भ अग्न मह जिन्ह उभारिया बार व्यवस्था तुझ प्यारे दूध पर जोबन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साख सहन।

आवै दरगाह मान तिसह बसारै मुगद अजान सदा सदा एहु भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै

आश्रम करे संग सहाई किस पर हरे चंदन लेप उतारे धोए गर्धब प्रीत पस्म संग होय अंधकूप मह पतत बिकराल नानक काड ले हो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बाहर भेख अंतर मल माया छपश नाही कछ करे छुपाया बाहर ज्ञान ध्यान इस्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान।

सुन अंधा कैसे मार्ग पावे, कर गह लेहो ओढ़ निबिहावे, कहां बजारत दूजै डोरा, निस कहिए तो समझै पूरा, कहां

दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत, काल न आवे मूले चीत, बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ बकार महालोभ त्रोह, याहू जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख ले हो आपन कर कर्म, तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता।

अस बहुर साहले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे बहुर उसका विश्वास ना होवे जिसकी बसत तिसे आज्ञा राखे प्रभु की आज्ञा माने माते उसते चौगन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक भांत माया के हेत सर्प

पर लपट रहे हो तह अंध अंधार बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ न आवे के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन धन कुटुंब।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या ध्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर दर्ब को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को ताव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास लेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भये सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आरजा।

जाए। गोविंद भजन बिन बिरते सब काम, ज्यों किरपन के नरारथ दाम। तन तन ते जन जे घट बस्यो हर नाम, नानक तां कै बल बल जाम। रहत अवर कछ अवर कमावत, मन नहीं प्रीत मुखो गंध लावत। जन नहार प्रभु परबीन, बाहर भेख ना काहू भीन। अवर अपदेसै

सलय लड़ लाई थान थन अंतर रहे आसमाई सो सेवक जिस कृपा करी निमुख निमुख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जिह प्रसाद छत्ति अमृत खाहे तिस ठाकर को रख मन माहे। जिह प्रसाद सुगंधत तन लाव है तिसको सिमरत परम गत पाव है। जिह प्रसाद बस है सुख मंदर तिसै त्याहे सदा मन अंदर। जिह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पैर सिमरहु तिस रसना। जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग। जिह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है तिसै त्याग कत अवर लुभावै है। जिह प्रसाद सुख सेज सुइजै मन आठ पहर तांका जस गावीजै। जिह प्रसाद तुझ सब को मानै मुखता को जस रसन बखानै। जिह प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याहि केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगाह मान पावै नानक पत सेती घर जावै। जिह प्रसाद अरोग कंचन देही निव लाभ तिस राम स्नेही। जिह प्रसाद तेरा उल्ला रहत मन सुख पावै हर हर जस कहत। जिह प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताकै। जिह प्रसाद तुझ को ना पहुंचै मन सास सास सिमरहु प्रभ उच्चे। जिह प्रसाद पाई दुर्लभ देह नानक ताकी भगत करे। जिह प्रसाद अपूखन पहरीजै मन तिस सिमरत क्यों आलस कीजै। जिह प्रसाद अस्वहस्त अस्वारी मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी। जिह प्रसाद बाग मिलख धना राख प्रोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसह त्याई तिसह त्याई जो ए

का ध्यान जेह प्रसाद तू अचार व्यवहारी तिस प्रभ को सास सास चतारी जेह प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरहु सदा अनूप।

प्रसाद जेह प्रसाद पेख है बिस्माद जेह प्रसाद बोल है अमृत रसना जेह प्रसाद सुख सहजे बसना जेह प्रसाद हस्त कर चल है।

ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस पव को मूल।

साध जना की अचरज कथा अष्टपदी, साध कै संग मुख उज्जल होत, साध संग मल सगली खोत, साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान, साध कै संग बुझै प्रभ नीरा, साध संग सब होत नबेरा, साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन, साध की महिमा वरनै कौन परानी, नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी, साध कै संग अगोचर मिलै, साध कै संग सदा पर फुलै, साध कै संग आवह बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन, साध कै संग न कतहू धावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध कै संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

साधक्या संग नाही हौ ताप, साधक्या संग तजै सब आप, आपे जाने साध बुदाई, नानक साध प्रभु बने आई। साधक्या संग न कबहू तावै, साधक्या संग सदा सुख पावै, साध संग बस्त अगोचर लह, साधु कै संग अजर सह, साधक्या संग बसै थानी उच्चै, साधु कै संग महल पहुंचै, साधक्या संग दृढ़ सब धर्म, साधक्या संग केवल पार ब्रह्म, साधक्या संग पाहि नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान, साधक्या संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै, साधु कै संग सो धन पावै, जिस धन ते सब को वरसावै, साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग सोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सोहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छा सोई फल पावै, साध कै संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उदरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाओ, साध कै संग न मन ते बिसरै, साध संग सर पर निस्तरै, साध कै संग लगै प्रभ मीठा, साधु कै संग घट घट दीठा, साध संग भय आग्याकारी, साध संग गत भई हमारी, साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध भेटे संजोग, साध की महिमा भेद न जान है, जेता सुनह तेता बखियान है, साध की उपमा तेहो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभ भेद ना पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेखे एकस बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे

जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी की ना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्मज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्मज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्मज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्मज्ञानी सुख सहज निवास, नानक।

पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगवती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन परीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म में सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन

लोक उस्थित करह अनेक जन अंत न पारावार नानक रचना प्रभ रची बहु वेद अनक प्रकार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट भय तीर्थवासी कई कोट बन भ्रम है उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीश्वर होते कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब काब विचार है कई

कई कोट भय अभमहानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख न करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किस प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खोजंते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अबनास, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड, कई

नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करावन करन जोग जोत पावै सोई होग। हिन मह थाप उथापन हारा अंत नहीं किस पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनकरंग प्रकार।

प्रभ भावे बिन सास्ते राखे, प्रभ भावे ता हर गुण भाखे, प्रभ भावे ता पतत उधारे, आप करे आपन बीचारे, दोहा श्रेय का आप स्वामी, खेले बिगसे अंतर जामी।

लावै, इसकै हाथ हुए ता सब किछ ले, जो तिस पावै सोई करे, अनजानत बिख्या मह रचै, जे जानत अपने आप बचै, परमे फूला दह दिस धावै।

ब्रह्म परगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्ब को नाथ आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्म

पर राजा कबहु भिखारी नीच का साजा कबहु अपकीर्त मह आवे कबहु भला भला कहावे ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे गुर प्रसाद नानक सच कह कबहु होए पंडित करे बखियान कबहु मोन धारी लावे ध्यान कबहु तट तीर्थ इशनान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए बिसराम। नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

आप अहंकारी धर्मराय तिस करी खुआरी गुर प्रसाद जाका मिटे अब महान सूजन नानक दरगाह प्रवान कोट कर्म करे हों तारी श्रम पावे सगले बिरथारी अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे हर दरगाह कहू कैसे गवे आपस कहो जो भला कहावे तिसह भला।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई

को उठतावे, तृप्त न आवे, माया पाछे पावे, अनक भोग बिख्या के करे, नह तृप्तावे, खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राज्य, सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य, नाम रंग सर्व सुख होए, बड़भागी तिसे प्राप्त होए, करन करावन आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करन करावन करन हार, इसके हाथ कहां विचार, जैसे

तार अष्टपदी संत कै दुखन यार जा घटे संत कै दुखन जमते नहीं छुटे संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक मह पाए संत कै दुखन मत हुए मलीन संत कै दुखन शोभा ते हीन संत के हथे को रखे ना कोई संत कै दुखन थान भ्रष्ट होए संत किरपाल किरपा जे करै नानक संत संग निंदक पी तरै संत के दुखन ते मुख भवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को चलै संत कै दुखन तेज सब जाय संत कै दुखन नीच निचाय संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता उए पी गत पाहे संत का निंदक महा अतताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक

ज्ञान प्रमाइय संत का दुखी उजड़ पाइय संत का दुखी अंतर तेत होता जो सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किस नाहे आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी को अवर ना राखन हार नानक संत भावे ता लए उभार संत का दुखी इयों बिन लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै

नानक ज्योति पाव है सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी

है भगवान जिस कैदी रह अघाई बहुर न तिस न लागे आई मार है रख है इको आप मानुख कह किस नाही हाथ जिसका हुक्म बूझ सुख होए जिसका नाम रख कंठ परोए सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागे कोए उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्म

कर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जल मथा बड भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोल है हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोही निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिस है ना लाग है दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं दुलावे जिस प्रभ अपना

नह किस मरे आपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मह आ।

ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ

है, प्रभ की जोत सगल घट सो है, तनमंता हुए क्या को गर्भ है, जहाँ सब किस तिसका दिया दर्भ है, अत सूरा जे को कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे, जे को हुए बह दातार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद तूटे हो रोग, नानक सो जन सदा अरोग, ज्यों मंदर को थमे थमन, त्यों गुर का शब्द मने अस्थमन, ज्यों पाखाण नाव चढ़तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे।

मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाचो तूर, नानक की हर लोचा पूर। मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए। दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तो तिसह चितार। जो कछ करे सोई सुखमान, पूला काहे फिर है अजान। कौन बस्त आई तिरे संग, लपट रहे हो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती घर जाहे। जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। ताज अभमान ले हो।

राज मह राज, जोग मह जोगी, तप मह तपीसर, ग्रस्त मह भोगी, त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख का किन अंत ना पाया, जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे।

पाई, सब घट तिसके सब तिसके ठाव, जप जप जीवै नानक हर नाव, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरियां सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत, मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभु का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत ता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बीचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभु कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, वे दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

मन प्रतीत। ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत, ठाकुर को सेवक जान संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रभु पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु धारै, नानक सो सेवक।

वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई, अपने सेवक की आप पात राखै, ताकी गत मित कोए ना लाखै, प्रभु के सेवक को ना पहुंचै, प्रभु के सेवक उचते उच्चे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मह कल राखै, पसम करै लश्कर कोट लाखै, जिसका शासन काटते आप, तां को राखत दे कर हाथ, मानस जतन करत बहु भांत,

बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत इह मन तन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै।

0: नाम सिमर सिमर सदा सुख पाव। पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास। चित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी।
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा। आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव। इउ रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण आधार। अनक अपाव न छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे। हर की भगत करहु।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हों मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पाव है सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहां सुख दरगाह जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाके मस्तक लेख।

आया पड़या तो सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजै चाहो साध कै संग परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग बड़ भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी भई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सतसंग हजूरी जिसका साथ लिया मलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे घाल ना भान सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन दिया सो क्यों बिसरे जे अगन मह राखे गुर प्रसाद को बिरला लाखे सो क्यों बिसरे जे बिखते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे गुर पूरे ताते है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आन त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जप हो अवरहा नाम जपाव हो भगत भाई तरिय संसार बिन

जाओ, मन तन अंतर इही सो आओ, नेत्र हो पेख दर्श सुख होए, मन बिगसै साध चरण धोए, भगत जना कै मन तन रंग, बिरला कोहू पावै संग, एक बस्त दीजै करमया,

आप अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इस का वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अबनासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा।

आप पति यारा तह कौन कतह कौन सुनने हारा बहु बेअंत पूछते उच्चा नानक आपस को आपह पहुंचा जह आप रतियो प्रपंच अकार तेहो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन कह पई।

अपमान अनक प्रकार की बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकुच तो नानक एक है।

दृष्ट दर्शन पेठत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पये अमरा।

आए नानक तेह जन सोजी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत कट कट व्याप रहया भगवंत तरन माहे आकाश पायाल सर्व लोक पूर्ण प्रतपाल पांतिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पानी वैसंतर वाहे चार कुंट दैद से समाहे तिसते भिन्न नहीं को ठाव गुर प्रसाद नानक सुख पाव वेद प्राण सिमरत मह देख ससियर सूर नक्षत्र मैं एक पाणी प्रभ की सबको बोले आप अडोल न कब हूं डोले सर्व कला कर खिले खेल मोल ना

कवन निकट कवन कहिया दूर, आपे आप भरपूर अंतरगत जिसे आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए।

खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया। सब कै मत अलिप्तो रह, जो किस कहना सो आपे कह। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा भावे ता लई समाए। इसते हुए सो नाही बुरा, पूरे कहो किने कछ करा। आप भला करतूत अत नीकी, आपे जाने अपने जी की। आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच। ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख हुए, आप मलाई नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार।

आओ हस्तपदि पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार।

योग प्रवत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब

गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे, जाके मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध शरण नानक ते आई, जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, जिस जन आवै

सुख जाते सब कछु होए, चार कुंत दह दिस भ्रम्यो तिस बिन अवर ना कोय। वेद पुराण सिमरत सुने

तिस बिन अवर ना जाय। जो चाह है सोई मिले, नानक हर गुण गाय। गोविंद जस गाय हर नीत,

हर सरन परु हर राय प्रम कटिए नानक साध संग दुतिया भाव मिटाए पौड़ी दुतिया।

आप तजुहु गोबिंद भजुहु पाओ भगत प्रवेश लाभ मिले तोटा हिरे हर दरगाह पतवंत राम नाम धन संचवे साच साहा भगवंत उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत नानक दुरमत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत सलोक तीन ब्यापह जगत को तुरिया पावे कोए नानक संत निर्मल पहे जिन मन वस्या सोए पौड़ी तृतीया त्रै गुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच नरक सुर्ग भ्रम तो घणो सदा संघारे नीच हरख सोग सहसा संसार हों हों करत बिहाय जिन किए तिसह ना जाननी चित में

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध भजन।

पव बिन से अमृतर से रंग रत्ते निरंकार दुख दार्द अपवित्रता नासह नाम आधार सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल मन निर्मल मुख उजला हुए नानक साधरवा।

नानक प्रभ कै रंग पौड़ी पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहु रंग घणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझियै नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सो है गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सीख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीदे हर स्यों बीदे भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसियो पाई सरन दयाल चरण कमल मन तन बसे दर्शन देख निहाल लाभ मिले तोटा हिरे साध संग लिव लाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम त्याए सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी एकस स्यों लिव लाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोविंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पव जल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

कीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहार ने हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाई है तजी है अवर

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत नरो धर्मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

तार्य नरक स्वर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरे हो जत देखूं तत सोए मन बस

मन मह चितवै पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत कहल कमाइय नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइय।

पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनहु हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद वर्त संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

नानक प्रभ स्यों मिल रहे। बिनसे सगल जंजाल पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान। हर की भगत करो ताजमान, हर अमृत पान करो साध संग। मन तृप्ता सह कीर्तन प्रभ रंग, कोमल बाणी सब कौ संतोख है। पांच भू आत्मा

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरके अवतार हर हर भजन न मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख न गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिन विकार करत श्रम पायु नैनी नींद सुपन बरड़ायु हर बिसरत होवत एह हाल सरन नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौ

सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान। श्लोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंद। पौड़ी अमावस आत्म सुखी पई

हौ मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब सियो गुण गो

आया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभे आप दिन दिन चढ़े सो आया नानक होत ना।

सभी ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन योग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की शरण सलोक दुख बिन से सहसा गयो शरण गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाय पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेश को दृढ़ तिसका हुए उदहार किलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पलत मुखी उजला नह पोहै तिस माय सो सुरता सो वैष्णो सो ज्ञानी तनवंत सो सूरा कलवंत सोए जिन भजिया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद वैश्य।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यों बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करहें सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठै सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखै ब्रह्म इक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों किस्तिया ना कोई सतगुर सबना।

नानक करता सब किछ जानदा, जिदू किछ गुजा ना होए पौड़ी, जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी, जिस साहिब पावै तिस बख्श लए, सो साहिब मन पाणी, जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी, जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवै गुण आख बखाणी, नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी, सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है, निर्भउ निरवैर निरंकार, जिन जपया एक मन एक चित, तिन लथा हूं मैं भार, जिन गुरमुख हर आराध्या

कूड़ियार कूड़ो होए जावे। श्लोक महला चौथा। सतगुर धरती धर्म है, तिस विच जेहा को बीजे तेहा फल पाए। गुरसिखी अमृत बीजिया, तिने अमृत फल हर पाए। ओना हलत पलत मुख उजले, ओए हर दरगहा सची पैनाए। इकना अंदर खोट नित खोट कमावे है, ओहो जेहा बीजे तेहा फल खाए। जां सतगुर सराफ।

आपे वरतै नित कर कर देखै चलत सवाय। महला चौथा एक मन एक वरतदा जित लगै सो थाए पाए। कोई गल्ला करे कनेरियां जे घर वत होवै साई खाए। बिन सतगुरु सोजी ना पवै अहंकार ना विचों जाए। अहंकारियां नो दुख भुख है हथ तड है घर घर मगाए। कूड़ ठगी गुजी ना रह मलम्मा पाज लह जाए। जिस होवै पूर्व लिखिया तिस सतगुर मिलै प्रभ आए। ज्यों लोहा पारस भेटिया मिल संगत स्वर्ण होए जाए। जन नानक के प्रभ तू तनी ज्यों भावै तिवै चलाए। पौड़ी जिन हर हिरदै सेविया तिन हर आप मलाए। गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए। अवगण विकण पल्लरी जिस दे सो सच्चे पाए। बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगटे आए। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए। सलोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई। जो आन दिन हर हर नाम ते आवै हर हर नाम रमत सुच संजम। हर नामे ही त्रिपतावै हर नाम तान हर नाम देवान। हर नामो रख करावै जो चेत लाए पूजे गुरमूरत। सो मन इच्छे फल पावै जो निंदा करे सतगुर पूरे की। तिस करता मार दिवावै फिर ओह वेला ओस हथ ना आवै। ओह अपना बीजिया आपे खावै नरक कोर मुहे काले खड़िया। ज्यों तस्कर पाए गलावै फिर सतगुर की सरणी पवै ता उबरै। जां हर हर नाम ते आवै हर बातां आ

आया पौड़ी। सच सच्चा सबदू वड्डा है, सो लय जिस सतगुर टिके, सो सतगुर जे सच त्याईंदा। सच सच्चा सतगुर इक्के, सोई सतगुर पुरख है, जिन पंचे दूत कीते वस छिके, जे बिन सतगुर सेवे आप गणाईंदे, तिने अंदर कूड़ फिट फिट मोह फिके।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन हो सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चे वख कड्डे जजमाले सचियार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का आख्या सिखावे नाही तिना मुंह भलेरे फिरै दईए गाले जिन अंदर प्रीत नहीं हर केरी से किचर कवे राइन मन मुख बेताले सतगुर नू मिले सो अपना मन थाए रखै ओ आप वरतै अपनी

आमन दान हार तिनके काज दइए आंदे रास तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जां करता वल ता सब को वल सब दर्शन देख करह साबास साह पातशाह सब हर का किया सब जन को आए करह रहरास गुरपूरे की वड्डी वड्याई हर वड्डा सेव अतुल सुख पाया गुरपूरे दान दिया हर निहचल नित बख्शे चढ़े।

पौड़ी तुम साहिब अगम दयाल है वड दाता दाना तुद जेवड मैं होर को दिस न आवई तू है सुगड़ मेरे मन पाना मोह कटंब दिस आमदा सब चलन हारा आवन जाना जो बिन सच्चे होरत चित लाएं दे से कूड़े आर कूड़ा तिन माना नानक सच त्याए तू बिन सच्चे पच पच मोए अजाना सलोक महला चौथा अगों दे सत भाओ न दिच्चे पिछों दे आख्या कम ना आवे अद विच फिरै मन मुख वेचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुर की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभ करता ता सतगुर पार ब्रह्म नदरी आवे ता अपिहो पीवे शब्द गुर केरा सब काला अंदेसा भरम चुकावे सदा आनंद रहै दिन राती जन नानक अन दिन हर गुण गावे महला चौथा गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम त्यावे उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब किल विख पाप दोख लह जावे फिर चढ़ै दिवस गुरबाणी गावे बहिंदियां उठदियां हर नाम त्यावे जो सास ग्रास त्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन भावे जिसनों दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावे जन नानक धूड़ मंगै तिस गुर सिख की जो आप जपै अवरह नाम जपावे पौड़ी जो तुद सच त्याई दे से विरले थोड़े जो मन चित एक अराध दे तिनकी बरकत खाही असंख करोड़े तुदनो सब त्याई दी से थाई पए जो साहिब लोड़े जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैन दे से मोए मर जम्मे कोड़े ओए हाजर मिठा बोल दे बाहर विस कढ़ है मुख कोले मन खोटे दइये विछोड़े सलोक महला चौथा मल जूई भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वेमुख वेमुख नो पाया पास ना दे कोई बहन जगत मह गूह पर सगवी मल लाए मन मुख आया पराई जो निंदा चुगली नो वेमुख करके भेजिया उथे पी मुह काला दोहा वेमुखा दा कराया तड़ सुनिया सबत जगत विच भाई वेमुख सुने नफरै पौली पौंदी फावा होए कै उठ घर आया अगै संगती कुड़मी वेमुख रलना ना मिले ता बहुती भतीजी फिर आन घर पाया हलत पलत दोवें गए नित भुखा कूके तिहाया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच बह आप कराया जो निंदा करे सतगुरु पूरे की सो साचे मार पचाया।

रखै हलत पलत सब तिसका गया नित चहियां पाए झगू सुटे झकदा झकदा झड़ पया नित अपाव करे माया धन कारण अगला धन भी उड गया क्या ओह खट्टे क्या ओह खावे जिस अंदर सहसा दुख पया निर्वैर नाल जे वैर विचारे सब पाप जगत का तिन सिर लया ओस अगे पिछे ढोई नाही जिस अंदर निंदा मुहे अंब पया जे सोने नो ओह हाथ पाए आखेहू से तीर हल गया जे गुर की सरनी फिर ओह आवे ता पिछले औगण बख्श लया जन नानक अन दिन नाम त्याया हर सिमरत किल विक पाप गया पौड़ी तू है सच्चा सच तू सब तू ऊपर तू दीवान जो तुद सच त्याईंदे सच सेवन सच्चे तेरा मान ओना अंदर सच मुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान से भगत जिन्नी गुरमुख सा लाहिया।

सच साहा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ, वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लह, गुण कथ है निरारे सेवक पाए से जन मिले, गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहब अलख है, गुर शब्द लखारे। सलोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे, तिसदा कदे ना होवे भला, ओस दे आखे कोई ना लगे, नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे, कीता करत्या ओस दा सब गया, नित चुगली करे अनहोंदी पराई, मुंह कढ ना सके।

परताख गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मुह फिके थुक थुक मुहे पाही जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित भंबल भूसे खाही जिन गुर गोपिया अपना से लैंदे तहां फराही तिनकी भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कुकाही ओना दा आखिया को ना सुने नित हौले हौल मराही सतगुर की वड़ियाई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे थाऊ नाही जो सतगुर मारे तिन जाए मिलह रहंदी खुंदी सब पत गुआही ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे उस मिले तिस कुष्ट उठाही हर तिन का दर्शन ना करहो जो दूजे पाए चित लाही तुर करते आप लिख पाया तिस नाल केहो चारा नाही जन नानक नाम अराध तू तिस अपड़ को ना सकाही।

है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुख उजले तिनको सब देखण जाहे जिन निरपव नाम त्याया तिनको भव कोई नाहे हर उत्तम तिनी सरेविया जिनको धुर लिखिया आहे ते हर दरगह पैनाई है जिन हर बुठा मन माहे वे आप तरे सब कटंब सियो तिन पिछे सब जगत छडाहे जन नानक को हर मेल जन तिन वेख वेख हम जिवाहे महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए से जंत पई हरियावली।

जिन नाम अरादिया आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लए छाई हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोवै पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जान दिखा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी।

आप होए होर केती झक झक जाए सी जन नानक नाम त्याए तू हर हलत पलत छोड़ाए सी महला चौथा गुर सिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर राखो पैज सतगुरु की नित चढ़ै सुआई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हर तिन सब आन।

देख मेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड्याई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से

मन वजी वधाई। सलोक महला चौथा। जिन्ना अंदर अमरथल से जानन सूलियां, हर जान है से बिरहो। हौं तिन विटो सद घुम घोलिया, हर मेलोह सज्जन पुरख। मेरा सिर तिन विटो तल रोलिया, जो सिख गुर कार कमाव है। हौ गुलम तिना का गोलिया, हर रंग चलूलै जो रते। तिन भिन्नी हर रंग

रह त्यों संतो निर्मल होए गुरमुख गुण वे हाजी है मल होमै कड्डै धोए सच मणंजह रंग स्यों सच सौदा होए तोटा मूल ना आवे लाहा हर भावै सोए नानक तिन सच मणंजिया जिन्ना धुर लिखिया प्राप्त होए पौड़ी सालाही सच सालाहना सच सच्चा पुरख निराली सच सेवी सच मन वसै सच सच्चा हर रखवाली।

अवस्था सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचे नव खंड जगत नमस्कारिया तुदे आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अगे पिछे ढोई नाही गुर सिखी मन विचारिया सतगुरु नो मिले से ही जन उबरे जिन हिरदय नाम समारिया जन नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत भलाया दुरमत बिखिया बेकार सतगुर मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनो शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर भिजे जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध ना कबहू सिजे तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजे सच सच्चा जिन मन भावदा से मन सच्ची दरगाह लिजे तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजे सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुर आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरी जा गुर कह उठो मेरे भाई वह जाहे कुसर बगलारी गुर सिखा अंदर सतगुर वरत चुन कडे लद्दो वारे कोई अगे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथे नाही जाए कूड़ लहन भेड़ आरे जे साकत नर खवाई है लोची है बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो ओए मारे।

माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला, गुरमुख जापै शब्द लिवलाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए, जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया। पौड़ी, तू करता सब किश जानदा, जो जिया अंदर वरतै, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै, सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बनतै, तू घट घट एक वरतदा, सच साहिब चलतै, सतगुर नु मिले सो हर मिले, नाही किसे परतै। सलोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखी है, गुरमुख लाइय चित क्यों सास ग्रास वसारी है, बहंदियां उठदियां नित मरण जीवन की चिंता गई, एहो जियड़ा हर प्रभ वस, ज्यों भावै त्यों रख तू, जन नानक नाम बखश। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने, खिन आगे खिन पीछे, सदा बलाइय महल ना आवे, क्यों कर दरगाह सीजै,

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पापक संमल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा, जिन गुरु गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाऊ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाऊ, ओह वेला हाथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उतै सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड्डई मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले

आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के से परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए, राम नाम धन वखरो नानक सदा ते आए पौड़ी। पंजवा।

संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवे अंदरों लोभी नित माया नो फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिख्या ले नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

गुमान कर है मूड गुमानिया विसक आदि मरिये आए लगे नी दे थोड़े जो पक्का खेत लुनिये जे कर्म कमांडे तेवे हो पणिये जन नानक का खसम वड्डा है सब नादा तनिये सलोक महला चौथा मनमुख मूलों भुलिया बिच लभ लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अन दिन गुदरे शब्द ना कर है विचार शुद्ध मत करते सब हिर लई बोले।

के पूरै सतगुर भावै गुर सिखा अंदर सतगुरु वरतै जो सिखा नू लोचै सो गुर खुशी आवै सतगुर आखै सो कार कमावन सो जप कमावै।

काम कराए सो जंत महा दुख पावे पौड़ी। तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे। जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े। जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड़ गड़े। तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे। ज्यों पावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे। सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौज दी की वार की धुन उपर।

मद माया सुते फिर जून पवाईयन जम मार्ग मुते कीता पाइन अपना दुख सेती जुते नानक नाए वसारिया सब मंदी रुते। सलोक महला पंजवा उठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए नानक नाम सलाह है मन तन शीतल होए। महला पंजवा लालच अटिया नित फिर स्वार्थ करे ना कोए जिस गुर भेटै नानका तिस मन वसिया सोए। पौड़ी सबे वस्तु कौड़ियां सच्चे नाओ मिठा साध आया तिन हर जना चक साधी डिठा पार ब्रह्म जिस लिखिया मन तिसै बुठा एक निरंजन राव रहिया

एक जिस तो सदेव आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग में से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह गुठा सहज सुपाए अन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण।

रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद भावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

फुटान जिन्ना साहिं विसरै महला पंजवां प्रेतों की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काला जसवारी निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारी नानक का प्रभ।

जलत राम जल पाया, राम उदक तन जलत बुझाया रहाउ, मन मारन कारण बन जाइए, सो जल बिन भगवंत ना पाइए, जेह पावक सुर नर है जारी।

पात हर परवान, सर्व त्याग भज केवल नाम। गौड़ी कबीर जी नगन फिरत जौ पाईऐ जोग, बन का मिर्ग मुक्त सब होग। क्या नांगे क्या बांधे चाम, जब नहीं कीन से आत्म राम। रहाओ मूंड मुंडाए जो सिद्ध पाई, मुक्ति भेद न गईया काई। गेंद राख जो तरियै पाई, खुसरै क्यों ना परम गत पाई। कहो कबीर सुनो नर पाई, राम नाम बिन किन गत पाई। गौड़ी कबीर जी

रत बहु रूप रचाही तिनको दया सुपने पी नाही चार चरण कह बहु आगर साधु सुख पावे कल सागर कहो कबीर बहु काय करीजै सर्बस छोड़ महारस पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ पर हर लोभ अरलोकाचार पर हर काम क्रोध अहंकार कर्म करत बदे अहमेव मिल पाथर की कर ही सेव कहो कबीर भगत कर पाया भोले पाए मिले रघुराया गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती कहो रे पंडित बामन कब के हुए बामन कह कह जन्म मत खोए रहा जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया तो आन बाट काहे नहीं आया तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद।

जी अंधकार सुख कबह न सोई है, राजा रंक धू मिल रोई है। जो पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ। जस देखिए तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया।

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित परमन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बैकुंठ कहां ही जान जान सब कह तहां ही रहाओ कहन कहावन नह पति आई है तो मन माने जाते हों मैं जई है जब लग मन बैकुंठ की आस तब लग हुए नहीं चरण निवास कहो कबीर एह कही है काहे साध संगत बैकुंठ आहे गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाए।

ला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगै मरै माता पैसा अमोहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए।

गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर पयो मीना पूर्व जन्म हो तप का हीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर

सुगंध बसाई, कहत कबीर चेतरे अंधा, सत राम झूठा सब धंधा, गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके, जमते उल्ट भये है राम, दुख बिन से सुख कियो विश्राम, बैरी उल्ट भये है मीता, साकत उल्ट सुजन भये चीता, अब मोहे सर्ब कुशल कर मानिया, शांत भई जब गोविंद जानिया, रहाउ तन मह होती कोट अपाद, उल्ट भई सुख सह

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावू खोजत तन मह ठौर ना पावू लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाओ एक भाई देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पहाई मुक्त अनंत पुकार।

तिनकै सद बलिहारै जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे, सो भाई मेरे मन भावै रहाउ। जेहे कट राम रहया भरपूर, तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी, वाको कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ, सहज कलालन जो मिले आई, आनंद माते अन दिन जाई, चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनुभव पाया, गौड़ी कबीर जी मन का सुपहो मन व्यापी, मन है मार कमल सिद्ध थापी।

बूज बूजनहार सुभागा रहा सूरज चंद करह उजियारा सब मह पसरिया ब्रह्म पसारा कहो कबीर जानेगा सोए हृदय राम मुख रामै होए। गौड़ी कबीर जी बेर की पुत्री सिमरत पहाई सांकल जेवरी लै है आई आपन नगर आपते बांधिया मोह कै पांद काल सर सांधिया रहाउ कटी ना कटै टूट नह जाई सा सापन होए जग को खाई हम देखत जिन सब जग लूटिया कहो कबीर मैं राम कह छूटिया। गौड़ी कबीर जी

दूता राखै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ, काको जरै काहे होए हान, नटवट खेल

कैसे जीवन हुए हमारा, जब ना हुए राम नाम अधारा रहाउ। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या गर्भैया, राम नाम का

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहो सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना सो सुख हम हो साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन में

ओरठपी रे जी न लाज लाज तोहे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोई सो साहिब रहया भरपूर सदा संग नाही हर दूर कवला चरण सरन है जाके कहो जन का नाही घर ताके सब को कह जास की बाता सो समरथ निज पत है दाता कह कबीर पूर्ण जग सोई जाके हृदय अवर ना होई।

बताऊ कौन को पुरख कौन की नारी, या तत लेहो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यो मन मानिया, गई ठगौरी ठग पहचानिया। अब मोको भय राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाउ। साधु संगत दियो रलाई, पंच दूत ते लियो छडाई। अमृत नाम जपो जप रसना, मोल दास कर लीनो अपना। सतगुर की

माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखो तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे भाई।

सूतक सूतक श्रवनी होई, उठत बैठत सूतक लागे, सूतक परै रसोई, फासन की बिद सब को जाने, छूतन की एक कोई, कह कबीर राम हृदय विचारे, सूतक तिन्ह ना

धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखे एह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा।

है, बातन ही असमान गराव है। ऐसे लोगन स्यों क्या कही है, जो प्रभ किए भगत ते बाहज, तिन ते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू भर पानी, तेहे निंद है जेह गंगा आनी। बैठत उठत कुटलता चल है, आप गए और नहु काल है। छाड़ को चर्चा आन ना जान है, ब्रह्मा हूं को कहो ना मान है। आप गए और नहु खोव है, आग लगाए मंदर में सोव है। अवर्ण हस्त

सतगुर प्रसाद जीवत पितर न माने कोहु मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पाव है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जा।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाउ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्य सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

तज सरन कबीरा गौड़ी जोगी कह जोग भल मीठा अवर न दूजा भाई रुंडित मुंडित एक शब्दी ए कह सिद्ध पाई हर बिन भरम भलानी अंधा जा पह जाओ आप छुटकावन ते बांधे बहु

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कही है किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए।

जहां खांड ब्रह्मांड मह सिंगी मेरा बटुआ सब जग पसमा धारी ताड़ी लागे त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी थिर पई तंती टूटस नाही अनहद किंगरी बाजी सुन मन मगन पए हैं पूरे माया डोल ना लागी कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधिकाई गई बनावन माहो कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ गजी ना मिनिये तोल ना तुलिये पांचन सेर अढ़ाई जो कर पांचन बेग ना पावे चगर करे करहाई दिन की बैठ खसम की बरकस

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजै फूट मरै जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिलै सिद्ध पाई है।

गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातु ठाकुर सो क्यों मनहु बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

झूठा परपंच जोर चलाया किन्हूं लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम उसारी किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ जां तिस भावे ता हुक्म मनावे इस बेड़े को पार लंघावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर भज सार गपानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो लागत पवन खसम बिसरायो जियरा हर के गुना गाओ रहाओ गर्भ जोन मह उर्द तप करता तव जठर अगन मह रहता लख चौरासी जोन भ्रम आयो अब के छुटके ठोर ना ठायो कहो कबीर भज सार गपानी आवत दिसै जात ना जानी गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयम क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानिए भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखी है विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विध निरति आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जेह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक।

कह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले।

छाडोह परम प्रगट होए नाचोह, या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डरपै, सती के सांचे भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम।

को नंदन नंद सो नंदन का कोरे तरन आकाश दसो दिस नाही तब इहो नंद कहां थोरे रहाउ संकट नहीं परै जोन नहीं आवै नाम निरंजन जा।

करे उधार, जानक वीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपहु, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भये है, एक देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी। खट नेम कर कोठड़ी बांधी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुस्से घर जाई रहाओ, पांच पहरुआ दर में रहते। तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चेत होए रहो। तव लै परगास उजारा, नौ कर देख जो कामन भूली। बस्त अनूप ना।

निर्गास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना चंदन बास पये मन बासन त्याग घटियो अभमान हाना जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना तेहे बड भाग बस्यो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना काट सकत शिव सहज परगासियो एक है एक समानाना कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

आदि बावन अक्षर लोक त्रय सब कछ इन ही माहे ये अक्षर खिर जाहिंगे ओए अक्षर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखै ना कोई लह लहूं तो क्या कहूं कहूं ता को उपकार बटक बीज।

आद मैं जाना लिख अर मिटै ताहि न माना ओंकार लखै जो कोई सोई लख मिटना ना होई कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा हर जे तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा खखा एह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा खसमह जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

परवाना कत झख झख और न समझावा झगर किए झगरो ही पावा नन्या निकट सो घट रहे हो दूर कहां तज जाए जा कारण जग ढूंढ्यो नेरो पायो ताहे तटा बिकट घाट घट माही खोल कपाट महल के ना जाही।

न डर हुआ डर उर होए भागै टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़ो सो गड़ मह पावा।

बसेरा, अर्दह उर्दह मंज बसेरा, अर्दह चाड़ उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रही रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यो परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूल फल हुई,

भूपत पहचानिया, ममा मूल गया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, ममा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सियो, एहो मन पंच तत् को जियो, एहो मन ले जो उन मन रह, तो तीन लोक की बातें कह, जैया जो जान तो दुर्मत, हन कर बस काया गाँव, रण रूतो भाजे नहीं, सूरो थारो नाव, रारा रस निरस कर जानिया, होए नरस सो रस पहचानिया, ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਉਹ ਰਸ ਆਵਾ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ, ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲਿਵ ਮਨ ਲਾਵੇ, ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ, ਹਰ ਜੋ ਤਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਤਉ ਅਲਹਿ ਲਹਿ ਲਹਿ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ, ਵਵਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਸਨ ਸੰਹਾਰ, ਬਿਸਨ

होए एहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सुध हो घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा तो भवजल तरत ना लावै बारा। सत्सा सो सह सेज सुवारै सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना जब ही हुए तबह मन माना। है तो सही लख जो कोई तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो कर

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहू लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्ध उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरो ध्यान।

पंच चोर की जाने रीत, कर छोड़े बाहर जिन जाए, नातर खरार सहराई, राय बुधवार बुध करे प्रगास, हृदय कमल मह हर का बास, गुर मिल दो एक सम धरे, उर्द पंकल।

पाही, हैनस कसमल तो वह नाही, सो किरत सहारे सो एह ब्रत चढ़े, अन दिन आप आप स्यो लड़े, सुरखी पांचो राखे सबे, तो दूजी दृष्ट ना पैसे कवे, थावर थिर कर राखे सोई, जोत दी वटी घट मह जोई, बाहर भीतर भया प्रगास, तब हुआ सगल कर्म का नास, जब लग घट मह दूजी आन, तौ लो महल न लाभे जान, रमत राम सिंह।

जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद देवा पाहन तारियले राम कहत जन कस ना तरे रहाउ तारी ले गनका बिन रूप कुबजा ब्याज अजामल तारियले कर्ण बदक जन तेउ मुक्त भये हौ बाल बाल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्र सैन कौराज दिए जापहीन तापहीन कुलहीन क्रमहीन नामे के स्वामी तेउ तरे राग गौड़ी रवदास जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश विदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श।

करे मोसौ को न कह समझाय जाते आवा गमन बिलाय रहाउ बहु विद धर्म निरूपी है करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटी है जेह साजे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारी है शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभिमान बाहर उदक पखारी है घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर होए बो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत लेलाट उन मन मन मन ही मिले छुटकत बजर कपाट भगत जुगत मत सत करी भ्रम बंधन काट बेकार सोई बस रस मन मिले गुण निर्गुण एक बेचार अनक जतन निग्रह की।

तत पड़े रिखी सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो।

पुरुष निरंजन, हर पुरुष निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा, सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावहो संत हो जी, सब दुख वसारन हारा, हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज वडाणा, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हों तुद बिन अवर ना जा।

सेवह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एक।

कै भोग गुण एहो होर नाही कोय ना को हुआ ना को होय जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात जिन दिन करकै कीती रात खसम बसार है ते कम जात नानक नावे बाज सनात आसा महला पहला जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने भावै धीरक भावै धक्के।

चित तरे जा तू करनहार करतार क्या मोहताजी क्या संसार आप अपाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वस्सै मन आए दुख अनेरा विचों जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच ना दे जे किसै देव खाने नानक आगे पूछ ना ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घाट दोलक दुनिया वाजह वाज नारद नाचै कल का भाऊ

किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला जेता शब्द सुत धुन तेती।

होर नचना खुशियां मन माह रहाउ। सत संतोख वजह दोए ताल, पैरी वाजा सदा निहाल। राग नाद नहीं दूजा पाउ, इत रंग नाचो रख रख पाउ।

कही है, सर्ब निरंतर रव रहिया, नाल कटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सिष्ट गया, आग्या अंत न पायो ताका, कंस छेद क्या बड़ा पहया, रतन उपाय तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया, आसा महला पहला, कर्म करतूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप नारेख अनाहद वाजै, शब्द निरंजन।

तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बीना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद जब लग हृदय न आवह जाद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुद आपे पावे तिवें चलावे राग रतन परियां परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो विचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया ता मिल सखियां काज रचाया खेल देख मन आनंद भया सहो वी आहण आया गावो गावो कामणी बिबेक बिचार हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहो मिलिया ता जानिया तिहों लोका हमें शब्द रविया है आप गया मन मानिया अपना कार्ज आप सवारी पूर्ण कार्ज न हुई जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझै कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोए जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाय दुर्मत गत पई कीरत ठाए सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर सेव पाए निज थाम मन चूरे खट दर्शन जान सर्ब ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ अधिक त्यास भेख बहु करे दुख बिख्या सुख तन पर हरे काम क्रोध अंतर धन हिरे दुबदा छोड़ नाम निस्तरै सिफत सला

नानक अस्थिर नाम रजाई, आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप।

बिन जल सरवर कमल ना दीसै रहाउ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित भेद। नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए। मुक्तो रातो रंग रवंतो, राजन राज सदा बिकसंतो। जिस तू राख है कृपा तार, बूढ़त पाहन तार है तार। त्रे भवन मह जोत, त्रे भवन मह जानिया। उल्ट पई घर घर मह आणिया। अहनस भगत करे लिवलाए, नानक तिन कै लागै पाए। आसा महला पहला, गुरमत साची हुज्जत दूर। बहुत सियाणप लागै धूर, लागी मैल मिटै सच नाए। गुर प्रसाद रह लिवलाए, है हजूर हाजिर अरदास। दुख सुख साच करते प्रभ पास रहाउ। कूड़ कमावै आवै जावै, कहन कथन वारा नहीं आवै। क्या देखा सूझ बूझ ना पावै, बिन नावै मन तृप्त ना आवै। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमै माया दुख संतापे। से जन बाचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखै अमृत चाखै, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखै। साचै शब्द मुक्त गत पाई, नानक विचों

हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ, कर्म धर्म सच साचा नाओ, तां कै सद बलिहारे जाओ, जो हर राते से जन परवान, तिनकी संगत परम निदान, हर वार जिन पाया धन नारी।

जात पात सच नाव कर्म धर्म संयम सत भाव नानक बख्शे पूछ ना होए दूजा मेटे एको सो होए हासा महला पहला एक आव है एक जाव है आई एक हर राते रह समाई एक धर्म गगन में ठौर ना पाव है से कर्म हीन हर नाम ना त्याव है गुरपूरे ते गत मित पाई एहो संसार बिख वत अत भौजल

तेल गुरमुख निर्मल रह प्यारी ज्यो जल अंब ऊपर कमल नरारी बुरा भला कहो किसनु कहिए दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

नानक सतगुरु ब्रह्म दिखाया आसा महला पहला सेवक दास भगत जन सोई ठाकुर का दास गुरमुख होई जिन सिर साजी तिन फुन गोई तिस बिन दूजा अवर ना कोई।

प्रगट जाय। सच निशान ठाक न पाय। पंडित पढ़ै बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखां आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देह दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, इहो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। तिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवै। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हौ चरण सरेमो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है कर है सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आसन रास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हिरदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई, रोवै पूत ना कलपै माई। एत मोहे डूबा संसार, गुरमुख कोई उतरै पार। एत मोहे फिर जूनी पाहे, मोहे लागा जम पुर जाहे। गुर दीखिया ले जप तप कमाहे, ना मोह टूटै ना थाए पाहे। नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर स्यो रह समाए। आसा महला पहला, आप करे सच अलख अपार। हों पापी तू बख्शन हार, तेरा भाणा सब किछ होवै। मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ, मन मुख की मत कूड़ व्यापी। बिन हर सिमरन पाप संतापी, दुर्मत त्याग लाहा किस लेवो। जो उपजै सो अलख अपेवो, ऐसा हमरा सखा सहाई। गुर हर मिलिया भगत दिरडाई, सगली सौदी टोटा आवे। नानक राम नाम मन भावे, आसा महला पहला चौपदे। विद्या विचारी ता पर उपकारी, जा पंच रासी ता तीर्थवासी। घुंगरू वाजै जे मन लागै, तौ जम कहां करे मोस्यो आगै। रहाउ आस नरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता काया भोगी।

तेरा सहो जागै हौ निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागै हौ निस भर सोवा रहाऊ आस प्यासी सीजै आवा आगै सह भाव।

घर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पाए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमन लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाउ फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रु

पार ब्रह्म लिव एकं आसा महला पहला गुण कर ज्ञान ध्यान कर तावे कर करनी कस पाई है पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई है बाबा मन मतवारू नाम रस पीवे सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहया रहाउ पूरा साच प्याला सहजे तिसह पियाए जा कौ नदर करे अमृत का व्यापारी होवे क्या मद छूछे भाउ धरे गुर की साखी अमृत बाणी पीवत ही परवान भया दर दर्शन का प्रीतम होवे मुक्त बैकुंठ करै किया सिफती रत्ता सद बैरागी जूए जन्म ना हारे कहो नानक सुन भरथर जोगी खीवा अमृत धारे आसा महला पहला खुरासान खसमा ना किया हिंदुस्तान डराया आपे दोष ना दे करता जम कर मुगल चढ़ाया एती मार पई कर लाने तैं की दर्द ना आया करता तू सबना का सोई जे सकता सकते कौ मारी ता मन रूस ना होई रहाओ सकता सिंह मारे पै बगै

कोई, गुर के दर्शन सदा सुख होए, गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार, नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर, जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए, सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

समाहे सेवड भागी जिन नाम त्याया सदा गुण दाता मन वसाया जो गुण संग्रह तिन बलिहार है जाऊं दर साचे साचे गुण गाव आपे देवे सहज सुपाए नानक कीमत कहन ना जाए आसा महला तीजा सतगुर विच वड्डी।

आए, हर एकी मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जान कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जान कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाण कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अत रस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर किरपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, इनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाखै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहे।

हर रंग राते मोह चुकाए, हत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, हासा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्द बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सोजी होए, दूजै पाए न लागे कोए, मूल लागे से जन परवान, अन दिन राम नाम जप हिरदै।

सुख पाई, संत संगत मेल हर गुण गाय, नामी नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की वाणी नाम वजाय, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मन मुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाई, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाई, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाई, बिरथा जन्म दूजै लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाई, गर्भ जोन विस्टा का वास, तित घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति जोत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा, नानक हौ मैं मारी सदा उदासा, आसा महला तीजा, लाले अपनी जात गुआई।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरों फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मन मुख परम पुले संसार, बिन राशि कूड़ा करे व्यापार, बिन राशि वखर पल्ले ना पाई, मन मुख भुला जन्म गो

होए नानक नाम वडाई होए आसा महला तीजा मनमुख झूठो झूठ कमावै खसमै का महल कदे ना पावै दूजह लगी भरम पलावै ममता भादा आवै जावै दुहागणी का मन देख सिंगार पुत्र कलत धन माया चित लाए झूठ मोह पाखंड वकार रहाओ सदा सुहागण जो प्रभ पावै गुर शब्दी सिंगार बनावै सेज सुखाली अन दिन हरदावै मिल प्रीतम सदा सुख पावै सा सुहागण साची जिस साच प्यार अपना पिर राखै सदा उर धार नेड़ै वेखै सदा हदूर मेरा प्रभ सर्ब रहया भरपूर।

नानक साच समावै सोए। आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाई। गुर कै भै साचै साच समाई।

भंडार उत्तम रतन जवाहर अपार गुर प्रसादी देवनहार नानक बख्शे बख्शनहार आसा महला तीजा गुर साहिर सतगुर सच सोए पूरे भाग गुर सेवा होए सो बूझै जिसे आप बुझाए गुर प्रसादी सेव कराए ज्ञान रतन सब सोजी होए गुर प्रसाद अज्ञान बनासै अन दिन जागै वेखै सच सोए रहाउ मोह गमान गुर शब्द जलाए पूरे गुर ते सोजी पाए अंतर महल गुर शब्द पछाण।

आपे जान। गुर कै शब्द अंतर ब्रह्म पछाण, गुरमुख भगत अंतर प्रीत प्यार। गुर का शब्द सहज विचार, गुरमुख भगत जुगत सच सोए। पाखंड भगत निरत दुख होए, एहा भगत जन जीवत मरे। गुर प्रसादी भव जल तरे, गुर कै बचन भगत थाए पाए। हर जीव आप वसै मन आए, हर कृपा करे सतगुरु मलाए। निश्चल भगत हर सिउ चित लाए, भगत रते पिन सच्ची सोए। नानक नाम रते सुख होए। आसा घर अठवां काफी महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर कै भाणे सतगुर मिले, सच सूझी होई। गुर प्रसादी मन वसै, हर बूझे सोई। मैं सहो दाता एक है, अवर नाही कोई। गुर कृपा ते मन वसै, तां सदा सुख होई रहाउ। इस युग में निरपो हर नाम है, पाईऐ गुर विचार। बिन नामै जम कै वस है, मन मुख अंद गुआर। हर कै भाणै जन सेवा करै, बूझै सच सोई। हर कै भाणै सलाहियै, भाणै मन्नै सुख होई। हर कै भाणै जन्म पदार्थ पाया, मत उत्तम होई। नानक नाम सलाहे तू, गुरमुख गत होई। आसा

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़ी।

काई नाम रविया सब सासंगरासा रहा नामै सुरत सुनी मन पाई जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सखाई नाम हीन गए मूड नंगा पच पच मुए बिख देख पतंगा आपे थापे थाप उथापे नानक नाम देवै हर आपे आसा महला चौथा गुरमुख हर हर वेल वधाई फल लागे हर रस करसाई हर हर नाम जप अनत तरंगा जप जप नाम गुरमत सालाही मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाउ हर हर गुरमह भगत रखाई गुर तुठा सिख देवै मेरे भाई हौ मैं कर्म किस बिद नहीं जाने ज्यो कुंचर नहाए खाक सिर छाने जे वड भाग होवै वड ऊचे नानक नाम जपहै सच सूचे आसा महला चौथा हर हर नाम की मन भूख लगाई नाम सुनिए मन तृप्त मेरे भाई।

अंधा, सबने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, महला चौथा राग आसा घर छेवें के तिन, हथ कर तंत बजावै जोगी, तो तरवाजै बेन, गुरमत हर गुण बोलो जोगी, एह मनुआ हर रंग भेन, जोगी हर देहो मती उपदेश, जुग जुग हर हर एको वरतै, तिस आगै हम आदेश रहाउ, गाव है राग भांत बहु बोल है, एह मनुआ खेलै खेल, जो वह कूप सिंचन को बसधा, उठ बैल गए चर बेल, काया नगर मह कर्म हर बोव हो, हर जामै हरिया खेत, मनुआ अस्थर बैल मन जोव हो, हर सिंचो हो गुरमत जेत, जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी, जो देहो मती तित चेल, जन नानक के प्रभ अंतर जामी, हर लाभ मनुआ पेल, आसा महला चौथा, कब को पालै घुंगरू ताला, कब को बजावै रबाब, आवत जात बार खिन लागै, हम तब लग समारो नाम, मेरा मन ऐसी भगत बन आई, हम हर बिन खिन पल रह ना सको, जैसे जल बिन मीन मर जाई रहा, कब को मेलै पंच सत गायन, कब को राग धुन उठावै, मेलत चुनत खिन पल चसा लागै, तब लग मेरा मन राम गुण गावै, कब को नाचै पाम पसारै, कब को हाथ पसारै, हाथ पाम पसारत बिलम तिल लागै, तब लग मेरा मन राम समारै, कब को लोगन कौ पति आवै, लोक पतीने ना पत होए, जन नानक हर हिरदै सद त्याव हो, ता जय जय करे सब कोई, आसा महला चौथा, सत संगत मिली है हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया घट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए, हर जन नाच हो हर हर त्याए, ऐसे संत मिले है मेरे पाई, हम जन के तो वह पाए रहाओ, हर हर नाम जप हो मन मेरे, अन दिन हर लिव लाए, जो इच्छो हो सोई फल पाव हो, फिर भूख ना लागै आए, आपे हर अपरंपर करता, हर आपे बोल बुलाए, से संत भले तुद भावह, जिनकी पत पावह थाए, नानक आख नाराजै हर गुण, ज्यों आखै त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हर अपने, गुण गाहक वणज लै जाए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर अठवां के काफी महला चौथा, आया मन तुराहो हों मैं रोईऐ, गुरमुख नाम त्याए अस्थिर होईऐ, गुरपूरे साबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ, पूर्व लिखे देहे से आए माया, चलन अज के कल तुरहो फुरमाया, बिरथा जन्म तिना जिनी नाम वसारिया, जुऐ खेलन जग के इहो मन हारिया, जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया, आसा महला चौथा, जन्म पदार्थ पाए नाम त्याया, गुर प्रसादी भुज सच समाया, जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया, दर सच्चै सतियार महल बुलाया रहाउ, अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ, अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ, हम मैं गर्भै गर्भ आप खुआईऐ, नानक आपे आप खुआईऐ, गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ, राग असावरी कर सोलवां के दो महला चौथा सोधं, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं,
सतगुरु मुह को हर नाम बताया, हम हर बिन किन पल रह ना सको रहाउ। हमरा सरवण सिमरन हर कीर्तन, हम हर बिन रह ना सको हम एक खिन। जैसे हंस सरवर बिन रह ना सके, तैसे हर जन क्यों रह।

सोई फिर खाया, जिन सुख बैठा ली तिस भौ बहुत दिखाया। भाई मीत कुटुंब देख बिबादी, हम आई वसगत गुर प्रसादी। ऐसा देख बमोहित हुए, साधक सिद्ध सुर देव मनुखा। बिन साधु सब त्रोहन त्रोहे रहा, एक फिर है उदासी तिन काम व्यापै। एक संचह गिरी तिन हुए ना आपै, एक सती कहावे है तिन बहुत कल पावे। हम हर राखे लग सतगुरु पावे, तप करते तपसी पुलाय। पंडित मोहे लोभ सवाय, त्रै गुण मोहे मोहया आकाश। हम सतगुरु राखे।

वख वख परमावे घर की नायक घर वास ना देवे जतन करूं पुरजाई परेवे रहाव तुरकी भेजी।

दुए मनुख पहचावो, तृतीय मता किस करूं उपाया, मैं सब किस छोड़ प्रभ तुही ते आया, महा आनंद अचिंत सह जाया।

वस्त अनूप सुनी लाभाया गुण रास बन पल्लैयानी देख रतन इहु मन लपटानी सहा व्यापारी द्वारे आए।

समाना, कर मस्तक धार राखियो कर अपना, क्या जाने है एहो लोग अजाना रहाओ, सुहाग हमारो अब हुन सोहयो, कंत मिलियो मेरो सब दुख जोहयो, आंगन मेरा सोभा चंद, निसबासर प्रिय संग आनंद, वस्त्र हमारे रंग चलूल, सगल आभरण शोभा कंठ फूल, प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान, दुष्ट दूत की चूकी कान, सद कुचियां सदा रंग माने, नौ निद नाम ग्रह मह त्रिपताने, कहो नानक जहो पिरह शिंगारी, थिर सोहागन संग पतारी, आसा महला पंजवा, दान दे कर पूजा करना, लैत देत उन्मुख कर परना।

तानते मन निर्मल हर हर गुण गाय पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े।

परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावे निंदक रहाओ जे कोई उसका संगी होवे नाले लए सदावे अनहुंदा अजगर भार उठाए

मरना, मवाह होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाउ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत

चौपदी एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पाल दिन समो को कब हो ना बिहावे।

चहो जुगह समानी, रैण पई तब अंत ना जानी। पंच दूत मिल पिरो बिछोड़ी, ब्रह्म ब्रह्म रोवे हाथ पछोड़ी। जन नानक को हर दर्श दिखाया, आत्म चीन परम सुख पाया।

सुख निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राय सुख रैन विहानी सहज सुपाय। आसा महला पंजवा कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाव तोट न आवे नखोट न जाए। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवा। जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाढ़ परानी। जो जन्मे सो जानहु मुआ गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ। दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर हुए प्रभात। माया मोहे सोए रहे अभागे गुर प्रसाद को विरला जागे। कहो नानक गुण गाइए नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत। आसा महला पंजवा नौ निद तेरे।

ही संगा कुदरत वर्त रूप अर रंगा करह ना चुरे ना मन रोवन हारा अवनासी अवगत अगोचर सदा सलामत खसम हमारा रहाओ तेरे दासरे को किसकी कान जिसकी मीरा राख आन जो लौडा प्रभ किया अजात किस

त्यों कर प्रत पाला आसा महला पंजवा जी प्राण धन हर को नाम ईहा ऊहा उन संग काम बिन हर नाम अवर सब थोरा तृप्त अगावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमावत निहाल।

गुर पूरी बणत बनाई, नानक भगत मिली वडियाई। आसा महला पंजवां, गुर कै शब्द बंधावो।

रहाउ त्रिपत अगावन साक्य नाय अठसठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानू करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभिमान।

हर रस पीवे अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो शेरे रहाउ। हर रस की कीमत कही न जाए, हर रस साधु हाट समाए। लाख करोरी मिले ना केहे, जिसे प्राप्त तिस ही देह। नानक चाख पये बिस्माद, नानक गुरते आया साध। एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवा, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे। छुटकै दुर्मते अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावे। ता प्रीतम होवे मन प्यारी, सुन सुंदर साधु बचन उधारी।

काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग पवजल तरन कै, जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ, जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाये गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवां औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिन सिया थाउ ताप गया बचन गुर पूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवां पांचत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

पन्या सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पावे है किलख जाही सबे मन तेरे रहाओ कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल में जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी। बहुत दरब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बै आनी। आगे दरगह काम ना आवै छोड़ चले अब मानी। काहे एक बिना चित लाइए उठत बै

पार ब्रह्म का छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, अपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने, नांगा आया नांगो जासी।

जन्म जन्म की मल धोवे पराई, अपना कीता पावे इहां सुख नहीं दरगाह ढोई, जमपुर जाए पचावे निंदक अहला जन्म गवाया, पहुँच ना साके काहू बाते आगे ठौर ना।

बाहर कोए अंतर मन मैला दोए ठौरे अपने खोए इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया आगे मुस मुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा बरमी मारी साफ ना मरी नाम ना सुनी डोरा रहाओ माया की किरत छोड़ गवाई भगती सार ना जाने वेद शास्त्र को।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाली। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचे आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखे मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावे रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द।

मन की होर किस पह आख सुनाई बिन नावे सब जग बोराया नाम मिले सुख पाई है।

ते मुक्त भय अंधकूप महा घोर ते बाहा पकर गुर काढ लिए निरपव भय सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

कहे जिस जानी ऊपर तेरी कृपा तिसको बेपना को पाखे ओहो सुख ओहा वड्याई जो प्रभु जी मन पानी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिले रंग माणी।

तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनेओरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया

पंजवा दुख कनो जब होते दूर, अब मसलत मोहे मिली हदूर। चुका ने हो रहा सखी सहेरी, परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव। निकट आन प्रिय सेज तरी, कान कड़न ते शूट परी। मंदर मेरा शब्द उजारा, आनंद बनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया। नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर ओडलिया। सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया। सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया। आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया। अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी। जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंटा। बीच अमृत है भाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली। खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई। सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

नाम दृढ़ाया, पणत नानक मेरा मन सुख पाया, आसा महला पंजवां, जहां पठाव हो तह तह जाई।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सच शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

नैन निहारो सदा सदा हर नाम सुमारो राम रामा रामा गुण गावो संत प्रताप साध कै संगी हर हर नाम त्यावो रे रहाओ सगल समगरी जा कै सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की धूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग

पये मन निर्मल हर हर हर हर नाम सुना रहाउ। बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा सतगुरे अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे जागरे मन जागन हारे। बिन

खोया, आनंद रूप सब नैन अलोया, आसा महला पंजवा, मुक्त से आनप किशु ना जाना, दिन रैन तेरा नाम बखाना, मैं निर्गुण गुण नाही कोई, करन करावन हार प्रभ सोए, रहाओ मूर्ख मुग्ध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आस मन धारी, जप तप

हर हर अखर दुए एह माला, जपत जपत भय दीन दयाला, करो बेनती सतगुरे अपनी, कर कृपा राखो।

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो नान

प्रभ खबर ना जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, ताते आलस कहां करो री रहाओ, कर्म है अमृत आन सारे खिसर गयो।

देख चलत मन भये दलासा, नानक दास तेरा परवासा। आसा महला पंजवां, अनदिन मूसा लाज टुकाई, गिरत कूप मह खाए मठाई। सोचत साचत रहन बयानी, अनकरंग माया के चितवत। कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाउ, द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया। काल कै फांस सकत सर सांधिया, बालू किनारा तरंग मुख आया। सो थान मूड निश्चल कर पाया, साध संग जपियो हर राय। नानक जीवै हर गुण गाए। आसा महला पंजवा, दो तुके नौ, उनकै संग तू करती केल। उनकै संग हम तुम संग मेल, उनकै संग तुम सब को लोरे। ओस बिना को मुख नहीं जोरे, ते बैरागी कहां समाए। तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाओ, उनकै संग तू ग्रह महमाहर। उनकै संग तू होई है जाहर, उनकै संग तू रखी पपोल। ओस बिना तू छुटकी रोल, उनकै संग तेरा मान महत।

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस धंधा ना हम तांधे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना

सब हुमा गर्भ मोह तज हूं रेन उनके संग देखो प्रभ नैन निमख निमख एही आराधो दिन सरहन ए सेवा साधो भये कृपाल गोपाल गोबिंद साध संग नानक बख्शिंद आसा महला पंजवां प्रभ की प्रीत सदा सुख होए प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

सगल उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस सार संग भूले।

बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद मैं खोटी डीठी अगरक उसके वड्डे ठगाऊ छोड़ह नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाके एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हा।

सगल धर्म हर के गुण गाम, महा पवित्र साधका संग, जिस भेट तलागे प्रभ रंग, गुर प्रसाद होए आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा, ताकी गात मित कह

ते लेखा भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा कहो नानक जिस सतगुर पूरा वाजे ता कै अनहद तूरा आसा महला पंजवा दुपदा एक साधु संग सखायो नाम सर्ब मनोरथ पूर्ण काम बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी जप जप जीवा सारग पानी करन करावन सरन परिया गुर प्रसाद सहज कर पाया मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाउ लाल जवे हर भरे भंडार तोट न आवै जप निरंकार अमृत शब्द पीवै।

सूख सहज मेरा धन सुहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोलै कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाव, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे

वहां पकड़ हम राखा आशा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहा उहा कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रव तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत नाही।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्रह मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जा की सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जाका दान न खूटै नाही, पली भांत सब सहज समाही, जा की बख्श न मेटै कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गहे निरभउ पद पाई, सास सास सो गुण निद गाई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नदर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुरपूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए, अगन बुझी

बंधन काट सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे, वड्डे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना, गुर नानक जाको भया दयाला।

क्या कहां। गुर विवेक सत सर ओहो आदि जुगादी जुगह जुग पूरा परमेश्वर नाम त्यागो सद सदा हर हर मन रंगे।

सुनी सच्चे तिस धणी सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी नैन पसंदो सोए पेख मस्ताक भई मैं

पंजवा लाख भगत आराध्य है जप ते पियो पियो कवन जुगत मलावो निर्गुण बिखे जियो तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाऊ

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे जिन मन उठा आप पूरे भगत से जिसनो मन्ने आप सोई मानिए प्रगट पुरख परवान सब ठाई जानिए दिन सरैन अराध संभाले साहा साह नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहया सब ठाई हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यों पावे त्यों राख राखन हारिया तुझ बिने अवर ना कोई नदर निहारिया रहाओ प्रतपाले प्रभ आप घट घट सारी है।

जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई। नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई। आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए। रस कास सब पुंचह अमृत नाम हर हर जपह।

सर्व सुख पावं आज्ञा पावं के ना पावं एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हम मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाध बोध कीमत पर न पावो ताकी शरण सत पुरख की सत गुरु पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आ

मार्ग पंथ सुमारी नाम दृढ़ गुरमन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवां महला पंजवां जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ानी दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की

गंधण वहन सुन है उर जावे है, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पारतान पारतान पारती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच तर्म स्यो रुच नहीं आवे, सत सुनत शोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाते, बहुर बहुर जन माते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुरमेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मुहूर्त रंग माण है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ, पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तू मर, जैसा संग बिसियर स्यो है रे, तैसो ही एहो परग्रहो, बैरी कारण पाप करता, बस्त रही अमाना, छोड़ जाहे तिन्ही स्यो संगी, साजन स्यो बैराना, सगल संसार एह बिद व्याप्यो, सो उबरेओ जिस गुर पूरा, कहो नानक पाव सागर तरेओ, पये पनीत शरीरा, आसा महला पंजवा दोपदे, लूक कमानो सोई तुम पेखेओ, मूड मुग्ध मुकरानी, आप कमाने कौले बांदे, फिर पाछे पछतानी, प्रभ मेरे सब विद्या गै जानी, भ्रम के मूसे तू राखत परदा, पाछे जी की मानी रहाओ, जित जित लाए तित तित लागे।

रहाउ। तिस सेवक कह हो बलिहारी, जो अपने प्रभ भावे तिसकी सोए सुनी मन हरिया। तिस नानक परसन आवे, आसा घर ग्यारवां महला पंजवां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, नटुआ भेख दिखावे बहु बिद। जैसा है ओहो तैसारी, अनक जोन भ्रम्यो भ्रम भीतर। सुख है नाही परवेसारी, साजन संत हमारे मीता। बिन हर हर अनीतारी, साध संग मिल हर गुण गाई। एहो जन्म पदार

गाखरी गुर शब्दी पार उतरी है रे खोजत खोजत खोज बिचारे तत नानक एहो जाना रे सिमरत नाम निदान निर्मोलक मन मानक पतियाना रे आसा महला पंजवां धोपदे गुर प्रसाद मेरा मन वसिया जो मांगो सो पावो रे नाम रंग एहो मन त्रिपताना बहुर न कतहु तामो रे हमरा ठाकुर सब ते उच्चा रहण।

के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे सुंदर सुगर स्वरूप सियाने पंच हो ही मोहे शलीरे जिन मिल मारे पंच सूर वीर ऐसो कौन बलीरे।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवा नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर ना कि

मोहल्ला पंजवां हमारी प्यारी अमृत तारी गुर निमुख न मन ते तारी रे रहाओ दर्शन परसन सरसन हरसन रंग रंगी करतारी रे खिन राम गुर गम हर दम नह जम हर कंठ नानक उरहारी रे।

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग सगल सियान।

भौजल लंघी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिया मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता, सरन राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाम, हलत पलत सहाए संगे, एक स्यों लिवलाओ रहाओ, वेद शास्त्र जन त्या

दुख पाया, बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस, पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिया नीत, सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाओ, कर्ण कारण समरथ सो प्रभ जी दाता आप, त्याग सगल सियाणपा आठ पहर प्रभ जाप, मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार।

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई।

किरम अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यों त्यों रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

प्रसाद सतगुर बचन तुम्हारे निर्गुण निस्तारे रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी ते पनीत संगारे जन्म पवंते नरक पड़मते तिनके कुल उधारे कोई ना जाने कोई ना माने से प्रगट हर द्वारे कमन उपमा देओ कमन वडाई नानक खिन खिन वारे आसा महला पंजवा बावर सोए रहे रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते मिथ्या गहन गहे मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास मन मुख सत कहे अमृत नाम पदार्थ संगे तिल मर्म ना लहे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

सोहिना कारण करना तारण तरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राख हो संत संगाहे नाम त्याव हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हर वित चित दुखाही

निपट बाजी हार मुका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जिहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब राते आ गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए।

प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मटावो निध नाम नानक मोरै आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल का।

पवन पार ब्रह्म हर चरण सिमर जाग कर भगत नानक पूर्ण भाग आसा महला पंजवां हरख सोग बैराग आनंदी खेल रीद खायो रहाओ खिनहु भय निरभय खिनहु खिनहु उठ तायो खिनहु रस भोगन खिनहु खिनहु तज जायो खिनहु योग ताप बहु पूजा खिनहु परमायो खिनहु कृपा साधु संग नानक हर रंग लायो राग आसा महला पंजवां घर सतारवां असावरी एक ओंकार सतगुर प्रसाद गोविंद गोविंद करहां हर हर मन प्यार हां।

दृढ़ संत मंत ज्ञान हा, सेवा गुर चरान हा, तो मिलिया गुर कृपान मेरे मना रहाव टूटे अन परान हा।

मना असावरी महला पंजवां एका ऊट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आगे आ सत सहो हां मन है निदान लहो हां सुख

कहूं कौन सियो मन की, लोभ ग्रसियो दस हूं दिस तावत, आसा लागियो धन की रहाओ, सुख कै हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की, द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की, मानस जन्मे अकारथ खोवत, लाज ना लोक हसन की, नानक हर जस क्यों नहीं गावत, कमत बनासै तन की, राग आसा महला पहला, अष्टपदियां घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, उत्तर अव कट सरवर नावे, बकै न बोलै हर गुण गावे, जल आकाशी सुन समावे, रस सत झोल महारस पावे, ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे, भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ, सच ब्रत नेम ना काल संतावे, सतगुर शब्द क्रोध जलावे, गगन निवास समाद लगावे, पारस परस परम पद पावे, सच मन कारण तत् बलोवे, सुपार सरवर मैल ना धोवे, जैस्यो राता तैसो होवे, आपे करता करे सो होवे, गुर हे वसी तल अगन बुझावे, सेवा सुरत बेभूत चढ़ावे।

कीमत पाई। सब दुख तेरे सुखर जाई, सब दुख मेटे साचै नाई। कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझै ता सच निहाला। अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राखै रखवाला। त्रे भवन सूजै आप गवावै, बाणी बूझै सच सुभावै। शब्द विचारे एक लिव तारा, नानक धन सवार नहारा। आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान। मन मानिया सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ भार। लेख असंख अलेख या

जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई।

है दुख कोई, सो रोवै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना, निरपहु आपने।

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता मीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख बिन पै भगती।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपूरा गुरमान मन ते मन ती।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

महस निदान जिस कायन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल फाही बवरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

कहावह बीते बिन नावै मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाणे निरंकार मह आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाऊ गुर प्रसादी कर्म कमाऊ नामे राता हर गुण गाऊ गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता।

नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल साकत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना इत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरहो राम नाम अत निर्मल अवर त्याग हो हौमै कौरा रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुर मेले काल कंटक मारे सच पेले इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रे भवन सोजी होई इहो मन जोगी भोगी तप तापै गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै मन बैरागी होमै त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख।

तू आप भुलावह नाम विसार, तू आपे रख है कृपा तार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जप है जप दूजा। आद पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द है जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जा की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की।

0: दुख ते सलागे।
1: जो जन राम नाम लिव जागे,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग, आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जाने, दुख मिटे सच शब्द पछाने।

साहा संचह धन जाए, बिन हर भगत ना पवी थाए। बंधन बेद बाद अहंकार, बंधन बिनसै मोह विकार। नानक राम नाम सरनाई, सतगुर राखे बंध ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदिया।

खाली कामण जिस वेख नींद ना पाई कहां सुपान तंबोली हरमा होया शाई माई इस जर कारण घणी विगुत्ती इन जर घणी खोआई।

कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया, कोई मुगल ना हुआ।

भाणे होवे किस थै जाए रुआईए हुक्मी हुक्म चलाए बिगसै नानक लिखिया पाईए एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा काफी महला पहला कर अठवां अष्टपदियां।

मनसा मन है समाये ले भवजल सच तरना आदि जुगाद दयाल तू ठाकुर तेरी सरना तू दातो हम जाचिका हर दर्शन दीजै गुरमुख नाम त्याई है मन मंदर भीजै रहाउ कूड़ा लालच छोड़ी तो साच पछाने गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने इहो मन राजा लोभिया लुभ तहु लोभाई गुरमुख।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हो मैं बिख मारी दुबदा छोड़ को आटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मर परमाई है हर नाम ना लेवे ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवै जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आखी है वेखै वडियाई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर महारो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गिया उल गी हम छोरू थारी ज्यों त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारे रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेखै वड्याई गुरमुख होए निहालीए।

जो तिस पाया सच्ची सच्ची दात देह दयाल है जिस सेवी दिन रात नाम अमोल है तू उत्तम हो नीच सेवक कांडिया नानक नदर करे हो मिले सच वांडिया आसा महला पहला आवन जाना क्यों रह क्यों मेला होई जन्म मरण का दुख घणो नित सहसा दोई बिन नावे क्या जीवना हित त्रिग चतराई सतगुर साधना सेविया हर भगत ना पाई रहाऊ आवन जावन तौ रह पाइए गुर पूरा राम नाम धन रास दे बिनसै भ्रम पूरा संत जना को मिल रह तन तन जस गाए आदि पुरख अपरंपरा गुरमुख हर पाए नटुए सांग बनाया बाजी संसारा खिन पल बाजी देखिए उजरत नहीं बारा हों मैं चौपड़ खेलना झूठे अहंकारा सब जग हारे सो जिने गुर शब्द विचारा ज्यों अंधले हाथ टोहना।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप ना जाही लखणी।

शब्द सुनाए, कर कृपा नाम मन वसाय, एहो सिर दीजै आप गवाय, हुक्मै बूझै सदा सुख पाए, आप करे तै आप कराए, आपे गुरमुख नाम वसाई।

बाहर किश नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होए सो लए पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल ले गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई नानक।

नानिवह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वासे आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दियां।

आज्ञा जुग जुग प्रगट होए ए मन रूढ़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूढ़ी बाणी जे रपै ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार बिन गुर कोए ना रंगी है गुर मिलिया रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाऊ ना कोई जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

ठीक है। बहुविध श्रेष्ठ उपाय हुक्मी कार कराईंदा, दूजा किस कही है भाई, बुझना अबुझना तुद किया, ए तेरी सिरकार, एक ना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार, एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपजे, सच्चे शब्द बुझाए, एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए, ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए, नदर करे जिस अपनी तिसनु भावनी लाए, सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए, लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए, गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए, इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वीच।

रहाओ। एक पिर हदूर ना जाननी, दूजे परम भलाए, क्यों पाए निडोहागनी, दुखी रहन विहाए। जिनकै मन सच वसिया, सच्ची कार कमाए, हन दिन सेवह सहज स्यो, सच्चे माहे समाए। दोहागणी परम भलाइया।

कर गए पल्ले किशना पाए महल नाही दोहागनी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है एक सस्यो लिवलाए नानक जे सुख लोड़ है कामनी हर का नाम मन वसाए आस्ता महला तीजा अमृत जिना चखायुन रस आया सहज सुभाए सच्चा वी प्रवाहो है तिसनो तिल ना तमाई अमृत सच्चा वरसदा गुरमुखा मुख पाए मन सदा हरियावला सहजे हर गुण गाए रहाओ मन मुख सदा दुहागनी दर खड़िया बिल लाहे जिन्ना पिर का स्वाद ना आयो जो तुर लिखिया सो कमाए गुरमुख बीजे सच जम्मे सच नाम वापार जो इत लाहे लायन भगती दे भंडार गुरमुख सदा सुहागनी भै भगत शिंगार आनंद निरावे फिर अपना सच रखे उरतार जिन्ना फिर रावया अपना तिन्ना बिटो बल जाओ सदा फिर कै संग रह विचो आप गवाई तन मन शीतल मुख उजले फिर कै भाई प्यार सेज सुखाली फिर रवै हो मैं तृष्णा मार कर कृपा घर आया गुर कै हित अपार वर पाया सुहागनी केवल एक मरार सबे गुनाह बख्शाए लयन मेले मेलन हार नानक।

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

साथ चरण कमल बोहित भय लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद भावे सो भला तेरे पाणे कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद हासा।

पार ब्रह्म प्रभ सिमरिय प्यारी दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बिसरह प्यारी सो क्यों तजना जाय एह तन वेखी संत पह प्यारी प्रीतम दे मलाए सुख सिंगार बिखिया के फीके तज छोड़े मेरी माय काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाय जो जन राते राम स्यों प्यारी अनत ना काहू जाय हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रहे आगाय अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराय जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

सत्य सोहे श्रेष्ठ जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया।

जलिया जमराज के ही रूह आए माया कै संगल बंद लया खखै खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगै गोए गाए दिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहै तई किया कगै काल सेवक जे कालै शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवै एको देवै अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहिया दे वेखै हुक्म चलाए ज्यों जियां कारज कपया।

या प्राणी घड़ी के मोहत के उठ चलना जूऐ जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे डंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसै सरे वो ता सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहया डड्डे ताहे उसारे आपे ज्यो तिस पावे तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चिल्लाए तिस निस्तारी जा को नदर करी नाणै रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्ते तारु पवजन हुआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्ते थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला दद्दे दोष ना देऊ किसे दोष करमा आपणिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जना तद्दे धार कला जिन छोड़ी हर की जी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्ने ना हा भोग नित भोगे ना दीठा ना संभलिया गली हो सुहागण पैने कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पे पातशाह परमेश्वर वेखण को परपंच किया देखे बूझे सब किस जाने अंतर बाहर रव रहया फप्फे फाही सब जा

ओ आद पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आदि जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोड़ो सहजे होए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण परहर करनी सारी दर सच्चै सत्यारु आवन जावन थाक रहाए गुरमुख तत विचारु साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन परगासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मेलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बै

कित पवह जंजाले राम। साचा साहिब मन वसै की फासह जम जाले राम। मछली वछुनी नैण रुनी जाल बदक पाया। संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया। भगत कर चित लाए हर सिउ छोड़ मनो अंदेसिया। सच कह नानक चेतरे मन जीअड़िया परदेसिया। नदियां वाह विछुनिया मेला संजोगी राम। जुग जुग मीठा विस भरे को जाने जोगी राम। कोई सहज जाने हर पछाने सतगुरु जिन चेतिया। बिन नाम हर के भरम भूले पचह मुगद अचेतिया। हर नाम भगत नारद साचा से अंत ताही रुनिया। सच कह नानक शब्द साच मेल चिरीव सुनिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा संत घर पहला। हम करे साचा सुहिला साचे शब्द सुहाया राम। धन पिर मेल भया प्रभ आप मलाया राम। प्रभ आप मलाया सच मन वसाया। कामन सहजे माती गुर शब्द शिंगारी सच सुवारी। सदा रावी रंग राती आप गवाए हर वर पाए। ता हर रस मन वसाया कहो नानक गुर शब्द सवारी। सफलो जन्म सवाया दूजड़ै कामण भरम भुली हर वर ना पाए राम। कामण गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम। बिरथा जन्म गवाए मनमुख इयाणी अवगुणवंती झूरे। अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे। देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चा शब्द सुपाए। नानक बिन नावे कामण परम पलानी मिल प्रीतम सुख पाए। फिर संग कामण जानिया गुरमेल मलाई राम। अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम। शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई। सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणी। सच्चे शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके। भेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना। सच्चे शब्द मलाई सा तन मन आनंद भया। हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै रस रसी। गुर कै शब्द अपारी राम शब्द अपारे मिले प्यारी। सदा गुण सारे मन वसी सेज सुहावी जां फिर रावी। मिल प्रीतम अवगण नसी जित कर नाम हर सदा त्याई। सोहे लड़ा जुग चारी नानक नाम रते सदा आनंद है। हर मिलिया कारज सारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा महला तीजा संत घर तीजा।

का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे, साचे नाल तेरा गंध लागे, गुरमुख

सहज धुनि उपजे, जित शब्द जगत थम रहाया, तह अनेक वाजे सदा आनंद है, सच्चे रहे आसमाए। यूं कह नानक सतगुर मिले है, तावत थमिया निज।

सहो जान है मरण जीवन की सोजी होई। गुर प्रसादी एको जान है ता दूजा भाव ना होई। मन शांत आई बजी बधाई।

बसाए, सब संसार दुख गवाया, अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया, पवित्र परम पद पाया, अनहद धुन वाजे है नित वाजे, गाई सतगुर बाणी, नानक दात करी प्रभ दाता, ज्योति ज्योत समाणी, मन मुखा मन मुख मुए, मेरी कर माया राम, खिन आवे खिन जावे, दुर्गंध मड़े चित लाया राम, लाया दुर्गंध मड़े चित लागा, ज्यों रंग कसुंब दिखाया, खिन पूरब खिन पच्छम शाए, ज्यों चक कुम्हार पवाया, दुख खावे हैं दुख संचे हैं भोग हैं, दुख की बिरद वधाई, नानक बिकम सहेला तरिए, जाया वै गुर सरनाई।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भारती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोल करतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेली भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक

राम निस्तारी रामो राम नाम जपया दुख किल विखनास गवाया राम गुर परचै त्याया

मुख गवाई, मन तन शीतल श्रृंगार सब हुआ, गुरमत राम परगासा, नानक आप अनुग्रह किया, हम दासन दासन दासा, जिन्नी रामो राम नाम वसारिया, ते मन मुख मूड अपागी राम, किन अंतरे मोह व्यापै, खिन खिन माया लागी राम, माया मल लागी मूड पए अपागी, जिन राम नाम नह पाया, अनेक कर्म करह अभमानी, हर रामो नाम चुराया, महाबिखम जम पंथ दुहेला, कालू खत्म हो अंधियारा, नानक गुरमुख नाम त्याया, ता पाए मोख द्वारा, रामो राम नाम गुरु, राम गुरमुखे जाने राम, एह मनुआ खिन ऊब पयाली, परमदा इकत कर आणै राम, मन इकत कर आणै सब

रम उचा गुण कहते अंत ना पाया नानक राम नाम सुन पीने राम नाम सुमाया जिन अंतरे राम नाम वसे तिन चिंता सब गवाया राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम त्याया राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद गई सुध हुई राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब हुआ जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

आवै। नानक गुरमुख राम पछाता कर कृपा आप मलावे। रामो राम नाम सते सत गुरमुख जानिया राम। सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम। मन तन अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

पतत पावन हर नाम जियो, हर सेवा पाई परम गत पाई, हरे उत्तम हर हर काम जियो, हरे उत्तम काम जपिए हर नाम, हर जपिए अस्थिर होए, जन्म मरण दोए दुख मेटे, सहजे ही सुख सोए, हर हर कृपा तारो ठाकुर।

गुण गाया। जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया। जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो। हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो। जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो। हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो। हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया। से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया। जन नानक रेण मंगै पग साधू,

गुरमुख हुई अंतर बाहर हर प्रभे को दूजा अवर ना कोई हर हर लिवलाई हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो सत जुग सब संतोख शरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हिरदय क्रोध जलाए दियो मन हिरदय क्रोध महा बिसलोद निरपता वह लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हौ मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाय जियो तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है अत किरिया कर्म कमाए जियो किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया दोए पग टिके टकाए जियो महाजुद जोद बहुकीने विच हों मैं पचै पचाए दियो दीन दयाल गुर साध मलाया मिल सत गुर मल लह जाए दियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाए दियो कल जुग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए जियो हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई हर हर नाम केत जमाया।

कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो आसा महला चौथा हर कीरत मन भाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक भाग प्राण जियो तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग हर नामे हर गुण गाया मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगति हर नामे हर सुहाया ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो तिन हम चरण सरे वह खिन खिन पग धोवे है जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रती चारी गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नाम कंठ धारी सब एक दृष्ट समत कर देखै सब आत्म राम पछाण जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर ना कोए जियो अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कद ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

एको होए हर जन प्रभ एक समान जियो तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया जन उभरे हर हर ध्यान जियो जग उपजै बिनसै बिनस बनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए हर अमृत हर मुख चोए जियो हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया फिर बहुड़ मरना होई हर हर नाम अमर पद पाया।

बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो। ता की गत कही ना जाई अमित वडियाई मेरा गोविंद अलख अपार जियो। गोविंद अलख अपार।

गोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहया समाए जियो, घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत न पाया, किस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर, गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहै दिन राती, सहजे नाम समाए जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो, हर हर प्रभ एको अवर न कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो, पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड़े अवर न कोई, तेरा शब्द सब तू है वरत है, तू आपे करह सो होई, हर सब मह रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो, सब तू है करता सब तेरी वडियाई, ज्यों भावै तिवें चलाए जियो, तुदे आपे भावै तिवें चलावहें, सब तेरे शब्द समाए जियो, सब शब्द समावै जां तुद भावै, तेरे शब्द वडियाई, गुरमुख बुद्ध पाईऐ आप गवाईऐ, शब्दे रहिया समाई, तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईऐ।

मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जाप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

रस पिनी मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मनी हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिनी दे होरी अमृत बुर के राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बनजे है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब भांडे तुदै साजिया विच वसत हर थारा जो पावै भांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा।

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल ताई पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर कुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर कुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुर तुठा। जन नानक हर हर होया, हर

तिन्ना सुख सद हुई, जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्ना मिलिया हर सोई। जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है, तिन हर रखण हारा राम राजी। तिनकी निंदा कोई क्या करे, जिन हर नाम प्यारा, जिन हर सेती।

हर जुग जुग भगते अपाया, पैज रख दाया राम राजी, हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारियां।

हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मुख।

सहज भया ग्रहवास आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियो मन।

सोहे बंक द्वारे नव निदे नौ निदे मेरे घर मह आई राम सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे

सरसियड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्रा

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूक संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम, सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता। घट घट रव रहा सब थाई।

पुरख विधाता गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे बिनवंत नानक शरण तेरी राख कृपा तारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर धूड़ी नाइय मैल गवाई है जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरन तरिय अपने प्रभ पावा।

राम राजी मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजी हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे प्रियो सह

जल संगराती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यों हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना सो।

जम पंथ भणी है तह साध संग ना डरपी है कर कीरत गोविंद गुणी है सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करीजै इहो मन दीजै हथ लाइय चित।

कहो नानक संत अनंत ठाकुर की हरसियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घनी कद दिनियर देखी गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग की जिया हर प्रीत करी जै मान ना की जै इक राती के हब पाहुनिया हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावनिया थिर साधु सरनी पड़ी है चरनी अब टूटस मोह जो कीती है कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जै जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी तेरे अपना पाया रंग लाल बनाया।

गीत की जय। आस्था महला पंजवा सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जां को खोजह असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ है आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक, मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार शंकर जटा धार, चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व त्यावह जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत, गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे, सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात, पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा, सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी, एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वड भागी हो सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है दुख दर्द भ्रम जाए। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है, भेटत साधु संग जमपुर नह जाई है। दुख दर्द ना पौ ब्यापे नाम सिमरत सद सुखी, सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल फल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दैवसिया। मिटे तिसैव सूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरे। सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरे। आद अंत बेअंत खोजह सुनी उधरन संत संग बिदे। नानक पयंपै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

रावे अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नवतन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सहनार सोभा पूर बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कशु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ता कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

संत पास सेवा लागी है, जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहु ना तामू शरण पावो, करना मैं प्रभ कर्मया। समर्थ अगत अपार निर्मल,

हठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत ना

संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगमते आयो बहु परदेसह धायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझ ते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीक उदारे भगत है संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

पंजवा पुरख पते भगवान ता की शरण गही निरपव भये प्राण चिंता सगल लही मात पिता सुत मीत सुरजन इष्ट बंधप जानिया गह कंठ लाया गुरमलाया जस बिमल संत बखाणिया बेअंत गुण अनेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही प्रभ एक अनक अलख ठाकुर ओट नानक तिस गही अमृत बन संसार सहाई आप भये राम नाम उरहार बिख के दिवस गए गत परम मोह बेकार बिनसे जोन आवन सब रहे अग्न सागर भये शीतल साधे अंचल गह रहे गोविंद गोपाल दयाल समृत बोल साधु हर जय जय नानक नाम त्याहे पूर्ण साध संग पाई परम गति जह देखो तह संग एको रव रहिया घट घट वासी आप विरले किने लहिया जल थल महियल पूर पूरन कीट हस्त सुमानिया आदि अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुण निध जन कहिया सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहिया दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे चरण कमल संग प्रीत कल मल पाप तरे दुख भूख दारिद्र नाठे प्रगट मग दिखाया मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया हर देख दर्शन इश पुन्नी कुल संभूहा सब तरे दिन सरैन आनंद अनदिन सिमरंत नानक हर हरे आसा महला पंजवा शंत कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत पिन्नी रैनड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुख हगामी चाव मंगल रस परे अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरे मन इच पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखिया पुछ है कहो कंत निशानी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए ते आए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्ते प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक शरण स्वामी सदा हर जन तागे आसा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या
तन पसम टेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी, रहे ओ पैनन खाया नानक कमाना संग जुलिया, नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें, पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख पए नित पाप कमायन, पापा कमाने छड़ह नाही लै चले कत गलावया, हर चंदौरी देख मूठा कूड़ सेजा रावया, लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समायन, नानक मृग अज्ञान बिनसे नह मिटै आवन जायन, मिठै मख मुआ क्यों लए उडारी, हस्ती गर्त पया क्यों तरियै तारी, तरण देहला भया खिन मह खसम चेतना आयु, दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायु, गुजा कमाना प्रगट होआ ईत उतह खुआरी, नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरनी, कंठ लगाए लिए तिस ठाकुर सरनी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया, साध संगत आप हुआ आप जगत तराया।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायन विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायन निध सिद चरण गहे ताके काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने करतार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हमें हर रस चाखिया।

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथे संग देखे करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी पाज साध संगत सदा नानक मिट हैं दोख कमाते वलवंच कर उदर पर हैं मूर्ख गावारा सब किश दे रहया।

तज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्त्र किस नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरहण संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भावो दुतिया जाली है मीत जोबन माल सर्बस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड़ा।

पाद कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारथ जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञान हीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद बचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजा ले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जम पै पतत पावन हर दर्श पे।

करत न लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार एते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार महला पहला नानक गुरु ना चेतनी मान।

आए रते से जन गए हार गए से ठगण वाले आ लिखना वै धर्म बहालिया। श्लोक महला पहला। विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेद वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। महला पहला। कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

कुदरत जाति जिन सी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

यो बहुते जन्म परमया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचो आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल नानक मुस्ते ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर उड़ उड़ रावा झट पाए।

सगल जहान सेवक सेव है कर्म चढ़ाओ पिन्नी रहन जिन्ना मन चाओ सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरखा चक्की चक थल वारोले बहुत अनंत लाटू मादानिया अनगाह पंखी पौंदिया लैन ना साह सूए चाड़ पवाई है जंत नानक पौंदिया गणतना अंत बंधन बंद पवाए सोए पै किरत नचे सब कोए नच नच हसे है चल है से रोए उड़ ना जाही सिद्ध ना होए।

तीर्थ नावह अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन, कर प्रगट आख सुनाया।

कितहु उपजे कित संजम एह जाय। हम एहो हुक्म है पय किरत फराहे। हम दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे। कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए। नानक कह सुनहो जनहो इत संयम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया। ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देहे तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलै सच पाया, जिन कै हिरदै सच वसाया, मूरख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला, पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ भरी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, पड़ी है जेते बरस बरस, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती आर जा, पड़ी है जेते सास। नानक लिखे एक गल, होर हूं मैं चखना चाख। महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहु तीर्थ भविया ते तो लविया, बहु भेख किया देही दुख दिया, सहोवे दिया अपना किया, अन्न न खाया साध गुआया, बहु दुख पाया दूजा पाया, वस्त्र न पहरै अहनिस कहरै, मोन बगूता क्यों जागै गुरबिन सूता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, हलमल खाई सिर शाई पाई, मूर्ख अंधै पत गुआई, विण नावै किस थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाई, हर का नाम मन वसाई, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते निह केवल, हूं मैं शब्द जलाए पौड़ी, भगत तेरे मन भाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे, नानक करमा बाहरे, दर ढो ना लहनी धाम दे, एक मूल ना बुझन अपना, अण हुंदा आप गणाई दे, हों ढाडी का नीच जात, होर उत्तम जात सदाई दे, तिन मंगा जे तुझे त्याई दे। श्लोक महला पहला, कूड़ राजा कूड़ प्रजा,

निर्मल उत्तर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

मुँह पूछ के बह रह करे निवास। सच सब ना हुए दारू पाप कड्डे तोए, नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी। दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइय, कूड़ा लाल च छड़ी होए एक मन अलख ते आई है। फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है। जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है, मत थोड़ी सेव गवाई है। सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया, कल कालख बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवै दाल। जे एक होए ता उगवै रुती हूं रुत होए, नानक पाहै बाहरा पूरै रंग ना सोए। भै विच खुंब चढ़ाई है शर्म पाह तन होए, नानक

पाहे परे मरदार। ज्ञानी नचह बाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत

भाग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद हुना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती कखाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेर करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई सोच होवे ता सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एह करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पासारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

तेता जित मुख नाम ना ऊच रह बिन नामै रस खाहे नानक एवें जानिए तित मुख थुका पाहे महला पहला पांड जमीए पांड निमीए पांड मंगण वे आह पंडों होए दोस्ती पंडों चले राह पांड मोआ पांड पालीए पांड होए बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जम है राजान पंडों ही पांड उपजे पंडे बाज ना कोई नानक पंडे बाहरा एको सच्चा सोए जित मुख सदा सलाही है पागा रती चार नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार पौड़ी सब को आखे अपना जिस नाही सो चुन कड़ी है कीता आपो अपना आपे ही लेखा संडी है जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गार बहंडी है।

आए, फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए। महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल। अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरै नाही मैल। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार। तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसे है रंग रूवे है चुप भी कर जाहे। परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह। दरवाटे ऊपर खर्च मंगा।

किसनो अगली ओह वजहो पे दूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

जियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो जित पै

इन बिद अपियो ना चूके कही ना उपजै उपजी जाने भाव अभाव बिहूणा उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तौ सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तौ मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के संतन।

हारी, मुई मेरी माई हों खरा सुखाला, पहरों नहीं दगली लगे ना पाला, रहाउ बाल किस बापे जिन्हों जाया, पंचा ते मेरा संग चुकाया, पंच मार पावा तल दीने, हर सिमरन मेरा मन तन पीने, पिता हमारो वड गोसाई।

मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एकै ठाहर दोहा बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी, आस पास पंच जोगिया बैठे, बीच नकट दे रानी, नकटी कोठन गन बाडाडू, किन्ह बबेकी काटी तू रहाउ, सगल माहे नकटी का वासा, सगल मार ओहेरी, सगलियां की हो

आओ आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे

कर कर मुसरी मंगल गावे, कछुआ शंख बजावे, वंश को पूत ब्याहन चलिया, सोइने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की पृथ्वी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाऊ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे तिसका पाओ लये हृदय अंतर चहो जुग ताड़ी लावे सब जोग तन राम नाम है जिसका पिंड पराना कहो कबीर जे कृपा धारे दे सच्चा निशाना आसा हिंदू तुर्क कहां ते आई किन एह रहा चलाई दिल में सोच विचार कवा दे पिस्त दोजक किन पाई काजी कै कवनक ते बबखानी पढ़त गुनत ऐसे सब मारे किन्हू खबर ना जानी रहाओ सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए मैं न बदौगा पाई जौरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा आपन ही कट जाई सुन्नत किए तुर्क जे होएगा औरत का क्या करिए हर्द शरीरी नार ना छोड़े ता ते हिंदू ही रही है शाड कतेब राम भज बौरे जुल्म करत है पारी कबीर पकरी टेक राम की तुर्क रहे पचेहारी आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती तब सूजे सब कोई तेल जले बाती ठहरानी सुना मंदर होई रे बौरे तोहे करी ना राखे कोई तू राम नाम जप सोई रहाओ का की मात पिता कहो काको कमन पुरख की जोई ठट फूटे को बात ना पूछे काढ़ो होई देहरी बैठी माता रोवे खटिया ले गए पाई लट छिटकाए तिरिया रोवे हंस अकेला जाई कहत कबीर सुनो रे संतो पै सागर कह ताई इस बंदे सिर जुल्म होत है जम नहीं हटे गुसाई दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाओ तन कर मटकी मन माहे बलोई इस मटकी मह शब्द संजोई।

नैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते।

खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर पाया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

सलाम कहत कबीर राम गुण गावो हिंदू तुरक दो समझावो आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ दो तुके पंज एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी पाती पाती जीओ जिस पाहन को

नडारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्द फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछु ऐ लै ना गयो, आई तलब गोपाल राय की, माया मंदर छोड़ चलियो, आसा काहू दीने पाट पटंबर काहू।

सो कृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुग्ध कह धन मेरा, जम का डंड मूंड मह लागे किन मह करै निवेरा, हर जन उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

आसा हम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन पावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाओ रोजा तरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा कट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीकी। माटी एक पेख तर नाना ता मैं ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक

पूरे चराए कह डिसियर को दूध पियाए सात संगत मिल बबेक बुद्ध हुई पारस परस लोहा कंचन सोई साकत सुवान सब करे कराया जो तुर लिखिया सो।

घर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण घर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपत रसोई, वै संतर जाके कपड़े धोई, गुरमत

राम रमत तिस सब किश सूजै, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे आठ, दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकड़ै, तब है काहे रोया, जीव न की आस करह, जम ने

आओ नाब कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे, मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण, हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे, तब क्या कहस मुकंदा रहाओ हम गोरु तुम ग्वार गुसाई, जन्म जन्म रखवारे कबहू ना पार उतार चिरायो हो, कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कांसी के जुलहा, बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे, हर सो मोहर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन सुमान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान, बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ, नैन देख पतंग उर्जे पास ना देख आग, काल पास ना मुग्ध चेत कनक कामन लाग, कर विचार विकार पर हर तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय, आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब पुन रूप न होई, तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई, अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ, काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

मैं तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करे दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पी।

रहु रहुरी बहुरिया कुंगट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाउ। कुंगट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। कुंगट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

सुकंत नार हम सोई कहत कबीर सुनो रे लोई अब तुमरी प्रतीत ना होई आसा कोरी को काहू मर्म ना जाना सब जागे आन तनायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले बेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछ।

जे तीर्थ नावे तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग हर फेन बुध बदा जल ते भिन्न न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी। हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जत्र जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं। ईबै बीठल ऊबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवै पूर रहे हो तू सर्वमही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी। कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

अपना खसम त्यावो सोने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को की जय ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जाने ऐसे ही ठग दे हो बखाने नामे के स्वामी लाहे ले चगरा राम रसायन पियो रे दगरा आसा पार ब्रह्म जे चीन सी आसा ते ना पावसी रामा भगत है चेतियले अचिंत मन राखसी कैसे।

आदि मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाध जाम है तां की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग

गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत सरण तुम्हारी हम यौगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता

ऐ सुने बोले दौड़ियो फिरत है रहाओ, जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रास कसै लुभाना।

तन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे लालच बिख काम लुभ धराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया ध्यान मान मन एक मय प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भये जोत समाए समानी जाकै अशली प्रभ पहचानिया धन्य धन पाया धरनी तर मिल जन संत सम

साध दिनहु मोहब्बत जिन से सच्चिया जिन मन होर मुख होर से कांडे कच्चिया रत्ते इश्क खुदाए रंग दीदार के विसरिया जिन नाम ते भोए भारथिए रहाओ आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से तिन तन जड़ेंदी माओ आए सफल से।

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरी द खैर दीजै बंदगी आसा बोलै सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन होसी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आईए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

पीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख है आती जागना कोई थिर रहिया जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक पूंजा चेत डौ सावन बिजलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़िया चले चलन हार बचारा ले मनो गा डेंदिया छे माह तुड़ंदिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे।

प्राण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाव राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका जोत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाध करह नित झगड़ा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचै महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला।

पाई, ऐसा सतगुर सेविय मना, जित सेवे हैं गोविंद प्रीत उपजे, अवर विसर सब जाए, हर सेती चित गहर है, जरा का पौ न होवे, जीवन पदवी पाए रहाओ। गोविंद प्रीत स्यों एक सहज उपजिया, वेख जैसी भगत बनी, आप सेती आप खाया, ता मन निर्मल हुआ, ज्योति ज्योत समई, बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईए, जे लोचै सब कोई, कूड़ै की पाल विचों निकलै, ता सदा सुख होए, नानक ऐसे सतगुर की, क्या ओह सेवक सेवा करे, गुर आगै जियो तरे, सतगुर का पाणा चित करे, सतगुर आपे कृपा करे, गुजरी महला तीजा, हर की तुम सेवा करो, दूजी सेवा करो ना कोई जी, हर की सेवा ते मनो चिंदिया फल पाई है, दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

आओ, हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साख अंत होए सखाई, हर दिन होर रास कूड़ी है, चलदियां नाल ना जाई, हर मेरा धन मेरे साथ चल, जहां हों जाऊं तहें जाई, सो झूठा जो झूठे लागे।

बहु गई वेखो को व्योपाय बलिहारी गुरे अपने सद बलिहार जाऊं सतगुर मिले हर मन वसै सहजे रह समाय रहाऊ जा पहु पाए अपना बैराग उपजे मन आय बैराग ते हर पाईए हर स्यों रह समाय से मुकत जे मन जिन है फिर तात न लागे आय दसवें द्वार रहत करी त्रिभवन सूजी पाय नानक गुर ते गुर होया

जिस नर की दुबदा ना जाए, धर्म राये तिस देश जाए, कर्म होवे सोई जन पाए, गुरमुख बूझे कोई, नानक विचो हउमै मारे, ता हर भेटै सोई, गुजरी महला तीजा, तिस जन शांत सदा मत निश्चल, जिसका अभिमान गवाए, सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे, हर चरणी चित लाए, हर चेत अचेत मना, जो इच्छा है सो फल होई, गुर प्रसादी हर रस पाव है, पीवत रह सदा सुख होई, रहाओ सतगुर भेटे ता पार सो होवै।

जो आप ना पछाणे सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरख।

एव मोकौ राम नाम परगास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाउ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर शरदा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्तासह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख सा

भागहीन मत फीके नाम सुनत आवे मन रोहै कौआ काग कौ अमृत रस पाईऐ तृप्तै विष्टा खाए मुख गोहै अमृत सर सतगुर सतवादी जितना तै कौआ हंस होहै नानक धन तन वड्डे वड भागी जिन गुरमत नाम हृदय मल धोहै गुजरी महला चौथा हर जानी उत्तम उत्तम बाणी मुख बोलह पारे उपकारी जो जन सुने सरदा भगत सेती।

मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सरना, तिन दरगाह हर

उठा जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर सिउ चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोहे मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर ध्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कहो संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है। शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई। जित कारे कम हम हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवां चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उदम, जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय, तां कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर रिज

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरै हुम बिन गुरबाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा धारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

तात हिन मह थाप उथापन हारा आपन हाथ मतांत स्यान पकाहू काम नायात जो अनरूपी उठा तुर मेरे होए रही ओह बात रहाउ देश कमावन धन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास सब त्यागे जम पुरूठ सदास होए अनन मन हट की दृढ़ता आप सुकौ जानात जो अनिंद निंद कर छोड्यो सोई फिर खात सहज सुपाई भई कृपाला तिस जन की काटी फास कहो नानक गुरपुरा भेटिया प्रवान ग्रस्त उदास गुजरी महला पंजवा नाम निदान जिन जन जपियो तिनके बंधन काटे काम क्रोध माया बिख ममता एह व्याध ते हाटे हर जस साध संग मिल गायो गुर प्रसाद पयो मन निर्मल सर्ब सुखा सुख पायो रहाउ जो किछु कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काट।

पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया बिन सुनाया वह जाई हर जप माया बंधन टूटे पये कृपाल दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे।

तिन्ही रख लिया सगल जुगत बन आई। कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई। गुजरी महला पंजवा दो पदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमस्कारु। वर्ण जात को पूछे नाही वांछ चरण रवारु। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल सृष्ट को तनी की जय। जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु। मुक्त भयो चमियारु गुजरी महला पंजवा। है नाही को बूजन हारु जान कमन पता। शिव ब्रंच अर सगल मोन जन गह नास काहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझिए।

यत्र कता गुजरी महल्ला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कशु न आयु जह जह अवसर आई बनियो है तहां तहां हर त्यायु प्रभ को भगत वच्छल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम कर।

पंजवा मुन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश न रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

तह परम अंधेरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही, कर कृपा सर्व प्रत पालक, प्रभ को सदा सलाही। रहाउ सास सास तेरा नाम सुमारो, तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पई करते की, और आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवा, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गाँव निसे अर पूर।

मिथ्या पज सदा भगवंत रहाव नाम एक आधार भगता ईत आगै टेक कर कृपा गोविंद दिया गुर ज्ञान बुद्ध विवेक करन कारण समर्थ श्री धर तरन ता की गही मुकत जुग तरवाल साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटै सगल उपाद रहाओ मात पिता सुत मीत भाई किस बिना नहीं कोई ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कस नाया वै काम सरण साधु निर्मला गा

साध संग उधार इहु मन आठ पहर आराद काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगल उपाद अटल अशेद अपेद स्वामी शरण ताकी आओ चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ त्याया गई संका टूट दुख अनेरा पै बनासे पाप गए निखूट हर हर नाम की मन प्रीत मिल साध बचन गोविंद त्याए महा निर्मल रीत रहाओ जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम कर अनुग्रह आप राखे भये पूर्ण काम सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ गुण अन

भगत गोपाल सिमरन मिटत जूनी भवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद प्रमते पकार है कतह नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ की दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां घर चौथा दोपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरनार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरन को दाता दुख भंजन सुख राय जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाय गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुर्मत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परे ओ नानक प्रभ तुमरी दे राख्यो हर हाथ गुजरे अष्टपदिया महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केत हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज पाए जाए ते नानक पार ब्रह्म लिव जागे पार जात घर आंगन मेरा पोह पपत्र तत डाला सर्ब ज्योत निरंजन संभू छोटो बहुत जंजाला सुन सिखवंते नानक बिनवै।

काम क्रोध अहंकार तजियले, लोभ मोह तिस माया, मन तत अवगत त्याया, गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ध्यान सब दात कथियले।

बूझे अंतर शब्द विचार। अब तबे और ना मांगो हर पै, नाम निरंजन दीजे प्यार। नानक चातरक अमृत जल मांगे।

रसन रवह प्रभ संगी जो तिस भावै सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐजी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करै प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

आय तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही। गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिल लाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त सुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मगन हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहित व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबर है हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मन सहज विचार सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं पै पाए भगत तर पव जल मना चित लाए हर चरणी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरणी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरनं। गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन नचाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पाव है अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहियै अपना प्यार आप लाई आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाए अन

वै मनमुख भगत ना होई सुर नर विरत पख करमी नाचे मुन जन ज्ञान बीचारी सिद्ध साधक लिव लागी नाचे जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे जिन लागी हर लिव तुमारी जी जंत सबे ही नाचे नाच है खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाच है जिन गुरमुख शब्द लिव लाए।

आवह है ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे है जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई है जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन नारद मुन सेव है अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई तिनकी पैज सुवारी।

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहा।

कार राख धर्म परम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्बत रमन परम हंस है रीत बेत दर्शन श्रवन हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

नानक हुक्म बुझ परवान होए तां फल पावै सच कतनी बदनी करता फिरै हुक्मै मूल ना बुझई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा बिचन महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर भावै सतगुर कै भाणै वडियाई पावै नानक आप छोड़ गुर माहे समावै महला तीजा गुर की सिख को विरला लेवै नानक जिसे आप वडियाई देवै पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत भारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरियै तारी अन दिन भगती रत्या हर पार उतारी गुर

आई ऐसा सतगुरु जी मिले तुठा करे पसाऊ मुक्त द्वारा मोकला सहजे आवो जाओ महला तीजा नानक मुक्त द्वारा।

सतगुर मिलया हो मैं गई जोत रही सब आई इहो जियो सदा मुक्त है सहजी रहया समाई पौड़ी।

वसयो मन आए त्रिग अवेहा जीव्या क्या जुग मह पाया आए माया खोटी रास है एक चसे मह पाज लह जाए हथों छुड़की तन स्याहो होए बदन जाए कमलाए जिन सतगुर स्यो चित लाया तिन सुख वसया मन आए हर नाम त्यावह रंग स्यो हर नाम रहे लिवलाए नानक सतगुर सो तन।

पाए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मोई कंत ना लायो भावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाय किते ना पाईए। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। इस नो कूड़ बोल के खवाली है।

सतगुरु की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई अपनी कृपा करे गुर पाई है विचों आप गवाई कृष्णा भुख विचों उतरे सुख वसे मन आई सदा सदा सलाही है हिरदय लिवलाई सलोक महला तीजा जे सतगुर सेवे अपना तिसनो पूजे सब कोए सबना उपावा सिर उपाऊ है हर नाम प्राप्त होए अंतर शीतल शांत वसै जप हिरदय सदा सुख होए अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा ए मन गुर की सिख सुन हर पाव है गुणी निदान हर सुख दाता मन वसै हऊ मैं जाए गुमान नानक नदरी पाई है तायन दिन लागे ध्यान पौड़ी सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता अंदरों कपट वकार गया मन सहजे जिता तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता अन दिन हर के गुण रवे गुण प्रगट किता सबना दाता एक है इको हर मिता सलोक महला तीजा ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है जे अन दिन हर लिव लाए सतगुर पुछे सच संयम कमावे हम मैं रोग तिस जाए हर गुण गावे है गुण संग्रह ज्योति ज्योत मलाए इस युग में है को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम ते आए महला तीजा अंतर कपट मरमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजे नित वेखै सुनै सुभाए दूजे पाए जाए जग प्रबोधै।

रहे। जप हरनामा उरतार सलोक महला तीजा, गुरमुख ध्यान सहज धुन उपजे, सच नाम चित लाया, गुरमुख अनदिन रह रंग राता, हर का नाम मन पाया, गुरमुख हर वेख है, गुरमुख हर बोल है, गुरमुख हर सहज रंग लाया, नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त होवे, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया, जिसनो कर्म होवे धुर पूरा, तिन गुरमुख हर नाम त्याया, महला तीजा, सतगुर जिन्ना ना सेवियो, शब्द ना लगो प्यार, सहजे नाम ना त्याया, कि त्याया संसार, फिर जूनी पाई है, विस्ता सदा खुआर, कूड़ै लालच लग्या, ना उरवार ना पार, नानक गुरमुख उबरे, जे आप मेले करतार पौड़े, भगत सच्चा दर सोहदे, सच्चा शब्द रहाए, हर की प्रीत तिन उपजी, हर प्रेम कसाए, हर रंग रह सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए।

क्रोध अहंकारा एहे जम की सिरकार है। एना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन

रस भोगी आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर जोगी जो तिस भावै सो करे सो होगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी।

कर्म प्रापत होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागियां वाह वाह मुंह कढ़ाई,

बात न जाए सी मन मुख दुख खाता रसना हर रसना चखे हो फीका बोलाता जिन्ना गुरमुखे अमृत चाखिया से जान त्रिपताता सलोक महला तीजा वाह वाह तिसनो आखिया जे सच्चा गहर गंभीर वाह वाह तिसनो आखिया जे गुणदाता मत धीर वाह वाह तिसनो आखिया।

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाउ सदा त्याया संत जना के संग दुख मिटाया। नानक भये अचिंत हर धन चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उचा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाउ परवदगार दा जिसनु करे रहम तिस ना विसार दा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनु लाए सच तिसे उधारदा जिस दै होवे वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ अपना

संग जिन संग जपी है नाउ तिन संग संग ना की चई नानक जिन्ना अपना सुहाउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निश्चल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुखो बोलेटिया हुक्मे बोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर ना खोटिया सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जे सो धनी मलन नानक सुख संभूह सच महला पंजवा जिमी वसंदी पाणी है ईंदन रखे पाहे नानक सो सहो आहे जाकै आडल हब को पौड़ी तेरे कीते काम तुदैही गोचरे सोई वरतै जग जे किया तुद तुरे बिसम भये बिसमाद।

तै सह दित्ती वाड़, नानक खेत ना सिजई पौड़ी, अराध्य हो सच्चा सोए सब किस जिस पास, दुहां सिरियां खसम आप किन मैं करे रास, त्याग हो सगल अपाव तिसकी ओट गहो, पौ सरनाई भज सुखी हूं सुख लहो, कर्म धर्म तत् ज्ञान संता संग होए, जपिए अमृत नाम बिघन ना लगे कोई, जिसनो आप दयाल तिस मन गुठिया, पायन सब निदान साहिब तुठिया, सलोक महला पंजवा लगम लबन हार, कर्म करन दो मां पिरी इको सिरजन हार, नानक ब्याह ना पसी है महला पंजवा, पापड़िया पछाड़ बाण।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

ना जाए। गुर समरथ देव गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अपेव। सलोक महला पंजवा। उदम करेंदिया जियो तू कमाम दिया सुख पुंच त्याए दिया तू प्रभु मिल। नानक उतरी चिंत महला पंजवा। शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग। नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर किरपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता हुए ता काहे डरपी है जिस मिल जपी है ना।

अहंकार सब किस तिसकै वस न कोई बाहरा सो भगता मन बुठा सच सुमाहरा तेरे दास ध्यान तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै पलाए आप मर मर जमह नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकै है।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाभ्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत पर।

ठाकुर लिव लागी जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे रहाउ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम पई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाव प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई ओह सुंदर हर ढुल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाव हों फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेल है मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गोल गोली है।

पार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार, रहाव लोकन की चतुराई उपमा, ते बै संतर जार, कोई भला कहो पावे बुरा कहो, हम तन दियो है तार, जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा तार, जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार, देव गंधारी, हर गुण गावे हों तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन, जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी, हम क्यों कर मिल है जूठारी, हम रह जिये होर मुख होर होत है, हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी, हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन तुम्हारी, देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नक्ति, ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाव, जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति, ज्यों नु गुरा बहु बातां जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ति, जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती, नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सत

बहुल करत निमक न बिसरोहिए मोरे ते बिसरत जाई हौं मरत सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कुल हीन नानक हौं आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै।

ज्यो अपने प्रभ भाव नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे ता स्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्ब सुख बड़े आई नानक जीवो मुखों बलावो देव गंधारी प्रभ जी

श्री सेवा दर्शन दुख अवतारेउ नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारेउ काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारेउ माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारेउ देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाउ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया भरम अंधेरा लही।

राम नाम रस माते महा किल बिख कोट दुख रोगा प्रभ दिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

आ रहाउ। खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पह आहा। तिने प्राप्त एहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा। ते बड़ भागी ते पत

देव गंधारी पंजवा मन गुर मिल नाम अरादेव सुख सहज आनंद मंगल रस जीवन का मूल भादेव रहाउ कर कृपा अपना दास कीनो काटे माया पादेव भाव भगत गाए गुण गोविंद जम का मार्ग साधेव भयो अनग्रहो मिट्यो मूर्चा अमोल पदार्थ ला देव बलिहार है नानक लख बेरा मेरे ठाकुर अगम अगा देव देव गंधारी पंजवा माई जो प्रभ के गुण गावे सफले आया जीवन फल ताको पार ब्रह्म।

सुपनै ही पुरजायो इतनी ना बूझै कबहू चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुनै मन सुख कर मानै बेग तहां उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो देव गंधारी पंजवां।

हर चरनी लागो जिस प्रभे अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के शरण स्वामी की अही है कोट पराद महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दूप बनाते उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विखनाश हैं

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ धारो देव गंधारी।

ताको उपजी छोड़ ना कतहु जाता रहाउ बैठत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता

तलाइय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया।

जब चितवो तब तुहारी, उन समाहार मेरा मन साधारी, सुन गावो गुरबचनारी, बल बल जाऊं साध दरसारी, मन मैं राखो एक असारी, नानक प्रभ मेरे करने हारी, देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ यह मनोर

पाए। छोड़ न जाए सद ही संगे, अन दिन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना, त्याग न कतहु जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रिय रोम न समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार, अनहत रुण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणी, ग्रह प्रिय तीके सद थाई।

दीन दयाल भय प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया कुलह समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पुत्र तास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीश पुनः पुनः बलिहारियो।

चार बरन्ना मुक्त भये देव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो राग देव गंधारी महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रे हर एक जान एक रे गुरमुख जान रहाउ काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई रव्या रे रव्या सर्वथान ज्यों बैसंतर काष्ट मझार बिन संजम नहीं कार्य सार बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताज अभमान

प्राण आधार समर्थ अथाह बड़ा प्रभ मेरा कट कट अंतर साहिब नेरा ताकि शरण आसर प्रभ नानक।

छुटकी रे मन छुटकी रे काकत संग ना छुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू की रे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा।

साध पगां हे तरुण तीरे राग देव गंधारी महला पंजवां कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब दिन के सम्राट पंथ बिठले हों बल बल जाओ।

रहाउ। मद माया कै भयो बावरु, हर जस नह उचरै। कर परपंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै। स्वान पूछ ज्यों होए ना सूदो, कहो ना कान धरै। कहो नानक भज राम नाम नित, जां ते काज सरै। देव गंधारी महला नवा, सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव। तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीरत प्रेत पकार। आद घड़ी को नह राखै, घर ते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार। देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं झूठी।

पोयंगल बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख एकत्रिया बहुबंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवां हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिए अर बहु लोग सियाने रहाव इन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी।

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइया मेरी जिंदड़िए, अनक ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभु, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। गिरीव चुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावै राम। हौ मन देवो तिसे आपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावै राम। नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उडीनी।

0: राम। वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए, गुरपूर गत मित पाया राम। गुर अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए, फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए, तिनके सब दुख गवाया राम।
1: अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए,
0: जित जपया पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए, चहो कुंडी चहो जुग जाते राम। हौमै मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए, हर अमृत हर तरनाते राम। अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए, जन नानक खिन हर राते राम। बिहागड़ा महला चौथा हौ बलिहारी।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम ते सर्वन भले शोभ नीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरे राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुरु देख है राम ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर जस हर हर लेख है राम तिस जन के पग नित पूजिए है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम मने सह राम धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम।

राम जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झख मारन।

लड़िए मिल साधु संग अगाणे राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए, जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए, इस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए, सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए, नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ मेरी जिंदड़िए,

मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगहा सूबा पाइये जिनको बधाते तुरहुं लिखिया तिन्ना रहन दिन लिव लाइये हौं मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादे कर जोड़े हो संत इकत्तर होए मेरे लाल जियो अविनाशी पुरख।

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम, पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते, नित देहे चढ़ सो आया, रिद सिद्ध नव निदहर जप, जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर

जो जन प्रभ सिंह रातिया एक जन है एक मन है राम कै रंग मातिया लग संत चरनी पड़े सरनी मन तिना उमाहा बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै।

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वध सुख रैनड़िए प्रिय प्रेम लगा घट दुख नींदड़िए परसों सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रिय रंग राती सहज माती महा दुरमत त्यागनी गह पुजा लीनी प्रेम पीनी

चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाइए प्रभ त्याइए, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड़ पुरख पूरन गुण संपूर्ण, प्रम पीत हर हर मिल भगे है, बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिए, हर नाम नित नित नित जपे है, हर नार सुहागनी सब रंग माणी, रांड ना बैसे ही प्रभ पुरख चिराणी, नह दुख पावे प्रभ त्यावे, तन ते बदभागिया, सुख सहज सोवे है, किल विख खोवे है, नाम रस रंग जागिया, मिल प्रेम रहना हर नाम गहना, प्रिय बचन मीठे पाणी, बिनवंत नानक मन इच पाई, हर मिले पुरख चिराणी, तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा, मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा, हर कंत अनंत दयाल श्री धर, गोविंद पतत उधार नु, प्रभ कृपा धारी हर मुरारी, भय सिंध सागर तार नु, जो सरन आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरध स्वामी संदा, बिनवंत नानक।

करहु निवास मन, करमज्जन हर सरी सब किलविख नास मन, कर सदा मज्जन गोविंद सज्जन दुख अंधेरा नास्ते, जन्म मरण ना होए तिसको कट्टे जम के पासे, मिल साध संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो, मिनवंत नानक तार कृपा हर चरण कमल निवासो, तह अनद बनोद सदा अनहद चुनकारो राम, मिल गावह संत जना प्रभ का जय कारो राम, मिल संत गावह खसम पावह हर प्रेम रस रंग भिन्निया, हर लाभ पाया आप मटाया मिले श्री विचुनिया, गह पुजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारु, बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु, सुन बड भागिया हरे अमृत बाणी राम, जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम, अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे, अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे, हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी, बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत बाणी, मन तन गलत भय किस कहन ना जाई राम, जिसते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम, मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया,

सद मना, शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, प्रभु ऊचे अगम अपारी, बिनवंत नानक सफल सब किश, प्रभ मिले अत प्यारी, बिहागरा।

बलवंच लूक करहै, सब जानै जानी राम। लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम, किरत कमाणे दुख सहो प्राणी, अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया। एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी, बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी। बीच ना कोई करे किरत घण विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया, महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया। तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा, खोए ज्ञान पछतापया। बिनवंत नानक संजोग भूला, हर जाप रसन ना जापया। तुझ बिन को नाही प्रब राखण हारा राम, पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम। पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला, अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

यारा सो दिन सफल गणिया हर प्रभु बुलाया राम सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम सुख सहज आनंद बनोद सद ही गुण गोपाल नित गाई है भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताई है गह कंठ लाए सहज सुभाए आद अंकुर आया बिनवंत नानक आप मिलया बहुड़ कतहू ना जाया बिहागड़ा महला पंजवा संत सुनहो बेनंतिया स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे तेरे राम दुख हरन कृपा करन मोहन कल कलेश भंजना सरन तेरी रख ले हो मेरी सर्ब मैं निरंजना सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो कर के चेरे तू समरथ सदा

बंधन रहत करता किया अपना पावने कर अनग्रहो पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महाचंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन समर

ज्ञान मैं प्रगट भए तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

शब्द मन भेजी है सदा वसै हर नाल, नानक नाम तिना कौ मिले, जिन हर वेखै नदर निहाल। महला तीजा, सिफत खजाना बख्श है, जिस बख्शै सो खर्चै खाई, सतगुर बिन हाथ ना आवई, सब थके कर्म कमाई। नानक मनमुख जगत धनहीन है, अग्गै भुखा के खाई पौड़ी। सब तेरी तू सब सदा, सब तुद उपाया, सब ना विच तू वरतदा, तू सब नी त्याया। तिस दी तू भगत थाए पाए, जो तुद मन पाया, जो हर प्रभ भावै।

सब लोई। श्लोक महला तीजा, मन प्रतीत ना आईया, सहज ना लगो भाव, शब्द साधना पायो, मन हठ क्या गुण गाय। नानक आया सो प्रवान है, जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा, अपना आपना पछाणे मूड़ा, अवरा आख दुखाए, मुंडा है दी खसलत ना गईया, अंधे विछड़ चोटा खाए। सतगुर कै भै भन ना घड़ियो, रह अंक समाए, अन दिन सहसा कदे ना चूकै, बिन शब्द दुख पाए। काम क्रोध लोभ अंतर सबला, नित

आय गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसया मेरा स्वामी तिसनू क्यों अंदेसा किसै गलै दा लोड़ी है हर सुखदाता सबना गल्ला का तिसनू त्याई दया किव निमख घड़ी मुँह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनू सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुँह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़िए हर कृपा ते हुआ हर भगत जना कै मुहे दिठे जगत तरिया सब लोड़िए। सलोक महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का स्वाओ ना पाया नानक रसना शब्द रसाए जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा सारस ना जल जाओ जिन हर का नाउ वसारिया नानक गुरमुख रसना हर जपै हर कै नाए प्यारिया। पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत हर आपे करे कराए हर आपे वेखै विगसै आपे जित पावै तित लाए हर इक ना मार्ग पाए आपे हर इक ना उजड़ पाए हर सच्चा साहिब सचत पावस कर वेखै चलत सुभाए।

नानक तरवर एक फल दुए पंखेरु आहे आवत जातना दी सही ना पर पंखी ताहे बहुरंगी रस भोगिया शब्द रहै निर्वाण हर रस फल राते नानका कर्म सच्चा निशान पौड़ी आपे धरती आपे है राहत आप जमाए पिसावै आप पकावै आप भांडे दे परोसै आपे ही बह खावै आपे जल आपे दे शिंगा आपे चुड़ी भरावै आपे संगत सद बहालै आपे विदा करावै जिसनु कृपाल हुए हरे आपे तिसनु हुक्म मनावै। सलोक महला तीजा। कर्म धर्म सब बंदना पाप पुन संबंध ममता मोह सो बंदना पुत्र कलत्र सो तंद जह देखा तह जेवरी माया का संबंध।

आए। गुर कै शब्द मन तन भिजे आप वसै मन आए। नानक नदरी पाईए आपे लय मलाई पौड़ी। आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथै आप भिजे। आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजे। आप परविरत आप निर्विरति आपे अकथ कथीजे। आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वर्तीजे। आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजे। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छाड तू पहो कर झल गवाए। गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए। शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए। नानक काम

सलाहा मंडी पौ मास आहार नानक इहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत किसकी धार सत संगत स्यों मेलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोसत आप उपदेसै आपे

हर सियों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुखदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़े, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

गुर प्रसाद जीवत मर ता फिर मरन ना होए पौड़ी। जिसदा कीता सब किस होए तिसनो परवाह नाही किसै केरी। हर जियो तेरा दिता सब को खावे सब मोहताजी कढ़े तेरी। जे तुदनो सलाहे सो सब किस पावे।

गुर पर साथी जीवत मरे हुक्मे बूझे सोय नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए पौड़ी जा आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाओ हर आप जपावे आपे सतगुर मेल सुख देवे अपना सेवक आप हर भावे अपनिया सेवका की आप पैज रखे अपनिया भगता की पैरी पावे धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवे जो हर का प्यारा।

नानक गुरमुख पाई है जां कौ नदर करी पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

अमृत भोजन नाम हर रज रज जन खाहु सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहु संत प्यारी पार ब्रह्म नानक हर अगम अगाहु सलूक महला तीजा सब किस हुक्मे आमदा सब किस हुक्मे जाए जे को मूर्ख आपहु जाने अंधा अंध कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बुझै जिसनो कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनो गुरमुख नाम प्राप्त होए किस जोगी की नगरी सब को वसै भेखी जोग ना होए नानक ऐसा बिरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जंत उपाय।

जो सह कंठ ना लगियां जलन से बाहड़िया सब सहियां सहुरावन गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तैं सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टियां भरिया मांग सदूरे अगे गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

छड़ी गुर कै शब्द मलाए मेरी मेरी कर दे घट गए इना हाथ के हो ना आया सतगुर मिले है सच मिले सच नाम समाया आसा मनसा इहो शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मन मुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा सुहागनी सदा मुख उजला गुर कै सहज सुभाए सदा फिर राव है अपना विचों आप गवाए मेरे मन तू हर हर नाम त्याए सतगुर मोह को हर दिया बुझाए रहाओ दुहागनी खरिया बिल लांदियां तिन्ना महल ना पाए दूजे भाई कुरूपी दुख पाव है आगे जाए गुणवंती नित गुण रवे हिरदय नाम वसाए अवगुणवंती कामणी दुख लागे बिल लाए सब

मिलाया पूरा सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी माया मोह पसारा महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने तामस बहुत अहंकारा। किसन सदा अवतारी रूदा कित लग तरै संसारा। गुरमुख ज्ञान रते जोगे अंतर चूकै मोह गुबारा।

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर, गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझै गुर शब्दी, हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेश करी पिर कारण, जे हर प्रभ साचे पावा।

खाले। जिसनो नदर करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले, सो हर हर नाम सदा सदा संभाले। जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलया नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवां घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हत ऊंचा ताका दरबारा अंत नाही किश पारा वारा। कोट कोट कोट लख तावै एक तिल ताका महल ना पावै। सहावी कौन सो वेला जित प्रभ मेला रहाउ। लाख भगत जाको अराध है लाख तपीसर तप ही साध है। लाख

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महल।

सो जानी। सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी, आए ना जावे मेरा प्रभ अबनासी। तुम मेहरवान दास हम दीना, नानक साहिब भरपुर लीना।

प्रभु दाते, जिसह जनावो हो तिनह तुम जाते, सदा सदा जाई बलिहारी, इत उत देखो ओट तुम्हारी, मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता, नानक साधु देख मन राता, वडहंस महला पंजवां, अंतर जामी सो प्रभ पूरा, दान दे साधु की तूरा, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ, जल कल महियल रहे आपर पूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे, जिसनो नदर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए, जी जंत सगले प्रत पारे, सरन परे हो नानक हर द्वारे, वडहंस महला पंजवा, तू वड दाता अंतर जामी, सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी, मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा, हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव, तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे, चरण कमल हृदय उरतारे,

साध संग हर अमृत पीजै, ना जियो मरे ना कबहू सीजै, वडभागी गुर पूरा पाइय, गुर किरपा ते प्रभु त्याय रहाउ। रतन जवाहर हर मानक लाला, सिमर सिमर प्रभ भए निहाला, जत कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना, घट घट अंतर

मन हुक्मे मरना नाम तेरा मन तन आधारी नानक दास बख्शीश तुम्हारी। बड़ा हंस महला पंजवां घर दूजा।

अंतर भूख ना उतरे अमाली। जे सौ भोजन मैं नीरे मेरा मन तन प्रेम पिरम का, बिन दर्शन क्यों मन तीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई,

किस बिन रह ना सका। ज्यों चातरक जल को बिल लाता, हौ क्या गुण तेरे सार संभाली। मैं निर्गुण को रख लेता, हौ पई उडीनी कंत को अमाली। सो पेर कद नैनी देखा, सब रस भोगण विसरे, बिन पिर कितै ना लेखा। इहो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हौ वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिने आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जां सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हौ वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

मनसा सब पूरे। मैं सर्व सुखा सुख पाया अमाली, फिर सर्व रहया परपूरे। जन नानक हर रंग माणिया अमाली, गुर सतगुर कै लग पैरी। वडहंस महला तीजा अष्टपदिया, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच्ची बाणी सच धुन सच शब्द विचारा, अन दिन सच सलाहना, तन तन वड भाग हमारा।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई न मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुल ना समसरे नानका जिन नाम मिलया कर्म होवा तुर कदे सब उपायन आप आपे नदर करे बड़हंस महला पहला करहो दया तेरा नाम बखाना सब उपाय आप आपे सर्ब समाना सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावह जो तेरे मन भावहे माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहे एक मूड मुग्ध न

कब हो ना जावे, राजू ता तेरा सदा निहचल, एहो कब हो ना जावे, चाकर ता तेरा सोए हो वै, जोए सहज समावे, दुश्मन ता दुख ना लगे मूले, पाप नेड़ ना आवे, हों बलिहारी सदा हुआ, एक तेरा नावे, जुगा जुगंतर भगत तुम्हारे।

किनारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे भाई प्यारी सच्चा भाई प्यारी कंत सवारी हर हर स्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मे

ब्राह्मण वडभागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुपाया नानक कामन सहजे राती जिन सच सिंगार बनाया हों मैं मार मुइये तू चल गुर कै पाई हर वर रावे हैं सदा मुइये निज कर वासा पाए निज कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागन नारी फिर रलियाला जोबन बाला अन दिन कंत सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चा शब्द सुहाए नानक कामन हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वापार भला जे सहजे की जय राम अन दिन नाम वखाणी है लाहा हर रस पी जय राम लाहा हर रस लीजै हर रा बीजै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजियै, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हऊ मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

वारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुटियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

ला रसना हर रस पीजे राम, रसना हर रस पीजे अंतर पीजे, साच शब्द बिचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काड पिए पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागे, रसना राम रबीजे, नानक नाम रते से निर्मल, होर हम मैं मैल परिजे, पंडित ज्योत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागे, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोए ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, और मूरख कूक मुए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख इहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे पंडार।

सकै कोई। जिन शिष्ट साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई। मनमुख अंधा तप तप खपै बिन शब्दै शांत ना आई। नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खोआई। एहो जग जलता देख कै भज पय हर सरनाई। राम अरदास करी गुर पूरे आगै।

सेवा लागे सेवट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवे हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजे होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते सेई महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस।

राम जप हर हर नाम कमल पर गास्ते हर नाम नमंग निद पाई हऊ मैं रोग गया दुख लाथा हर सहज समाद लगाई हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसते हऊ जीवा सतगुर देख सरसे।

हो मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाती देहो सतगुर चरण हम तूरा।

देव हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख भरम भओ भागा सेवक भाई मिले वडभागी जिन गुर चरनी मन लागा कहो नानक हरे आप मलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई वडहंस महला चौथा हौ गुर बिन खरी निमाणी राम जग जीवन दाता गुर मेल समाणी राम सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया जिस कारण हौ ढूंढ टुनेंदी सो सज्जन हर घर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हौ गुर बिन खरी निमाणी जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया

किन के जिन सतगुर पुरख प्रभ के आया तू वरदाता अंतर जामी मेरी शरदा पूर हर राया गुरसिख मेल मेरी शरदा पूरी अन दिन राम गुण गाए जिन सतगुर पाया किन हर प्रभ मेल मलाए हों वारी गुरसिख मीत प्यारे राम हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नाम अधारे राम हर हर नाम मेरा प्राण सिखाई किस बिन घड़ी निमख नहीं जीवा हर हर कृपा करे सुख दाता गुरमुख अमृत पीवा हरे आपे शरदा लाए मलाए हरे आपे आप सवारे हों वारी गुरसिख मीत प्यारे हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम हरे आपे मेलै करै सो होई राम जो हर प्रभ भावै सोई होवै अवर न करना जाई बहुत सियानप लया न जाई कर थाके सब चतुराई गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बिन अवर ना कोई हरे आपे पुरख निरंजन सोई बड़ा हंस महला चौथा हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर बनासे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास ग्रासे जिनको हर प्रभ कृपा धारी ए सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया

सतगुरु पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा धारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे है जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करह बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुख दाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनके दुख पाप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाते पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनमिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया तिन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देह तेजन जी राम पाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी बिखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ बड़ भागी लंघे गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कढ़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा
जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा धन सब आसै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरै मिल संत जना जानी आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई बड़ा

राम जड़ हर हर नाम रतन्ना राम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सुख घने गुर शब्द पाया हर नाम त्याया बड़भागी हर रंग हर बाणी हर मिले स्वामी अंतर जामी हर नव तन हर नव रंगिया नानक बखाने नाम जाने हर नाम हर प्रभ मंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सा धन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सो है हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हर दास कहत है वडभागी हर हर त्याया देहे घोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी।

प्रभ जाए पावै रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाय हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस महल।

इहो तन मन दित्तड़ा वारो वार आराम। तन मन दित्ता पवजल जित्ता चूकी कान जमाणी। अस्थर थिया अमृत पिया रहया आवन जानी। सो कर लता सहज समता हर का नाम अधारा। कहो

धान्य से पर धान्य हर से तीरंग राते हर रस अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुरे अपने पाणे कहो नानक जिन हर प्रभ डिठा इनकै सद कुरबाणी सलोक देह अंधारी अंध सुनी नाम विहूणिया नानक सफल जनम जय घट गुठा सच धनी संत तिन खनिया वन्या जिन मेरा हर प्रभ डीठा राम जन चाख अगाणी हर हर अमृत मीठा राम हर मने मीठा प्रभु तूठा हमें बूठा सुख भये दुख नास भरम बनास तन ते जप जगदीश ईसह जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तिन खनिया वन्या जिन घट मेरा हर प्रभु बूठा सलोक जो लड़ींदे राम सेवक से कांडिया नानक जाने सत साई संत ना बाहरा शंत मिल जल जलह खटाना राम संग ज्योति ज्योत मलाना राम समाए पूर्ण पुरख करते आप आपह जानिए तह सुन सहज समाध लागी एक एक वखाणिए

उर्वकमाय तन्नसरंदा सत्या पात्याह जिन जग तंदै लाया साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण इतै तंदा कूड़ा चार देह आगै सर पर जाना ज्यो मेहमान काहे गार्ब कीजै जित सेवै दरगहा सुख पाइय नाम तिसै कालीजै आगै हुक्म न चल।

ऐथे आया सब को जासी, कूड़ करहो अहंकारो, नानक रुन्ना बाबा जानिए, जे रोवे लाए प्यारो, वड़हंस महला पहला, आव हो मिल हो सहेली हो, सचड़ा नाम लए हां, रोवे है बिरहा तन का, अपना साहेब संभाले हां, साहेब संभाले हैं पंथ निहाले हैं, असा पे उथे जाना, जिसका किया तिन्ही लिया, हुआ तिसे का पाणा, जो तिन

रेव रुव माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेव धंधा रूव मैल न धोव सुपनंतर संसारू ज्यो बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरै राखी नानक सहज सुपहाय वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी।

मिला है। जे सतगुरु लाग है साचे पाए, सतगुरु सदा दयाल है। अवगुण शब्द जलाए, अवगुण शब्द जलाए।

प्रेम समाय जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप।

सब आखुहु सतगुरु वाहु वाहु जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपो हर जीओ सोए सतगुर सेवै हर मन वसै तिथे भौ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रते से ना विछड़ सतगुर सेव समाहे पौड़ी तिस मिलिया सतगुर सज्जन है जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीतम है जिन हम मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी नित जप्यो हो संतो हो राम नाम भौजल बिख तारी गुरपुरै हर उपदेश

क्रोध विनाश सतगुर का भव छोड़िया मन हट कामना आवै रास जमपुर बदे मारी है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिन हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो एक निमख निमख जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाय इस पे कह थाम हो गिर हो भला जिथ हो को वरसाय शब्द रत्ते तिना सूजी पई दूजे भरम भुलाय पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए नानक ज्योति सुभावै।

ना हो गई अचिंत वत्सय मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल हुआ अमृत सारे तीर्थ नहाय सज्जन मिले सज्जना सच्चा शब्द सुपहाय घर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाय पाखंड जम काल ना छोड़े ले जासी पत गवाय नानक नाम रते से उबरे सच्चे सिंह निबलाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जितै हर का हर नाम बिलोई सहजे ही हर नाम लेहो हर तत् ना खोई नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोई है सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोई है तिस गुर को सब नमस्कार करो जिन हर की हर गाल गलोई है। श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार मिल प्रीतम तिनी त्याया सच्चा प्रेम प्यार मन ही ते मन मानिया गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़े जिन्ना दूजे भाए प्यार मनमुख सेती दोस्ती थोड़िया दिन चार इस प्रीति टुटदी विलम ना होवे

मारी साप ना मरे त्यों गुरे कर्म कमाहे सतगुर दाता सेवी शब्द वसै मने आए मन तन शीतल शांत होए कृष्णा अग्न बुझाए सुखा सिर सदा सुख होए जा विचों आप गवाए गुरमुख उदासी सो करे

अंध बहु कर्म कमावे, दूजे भाई प्यार अणहुंदा आप गणाईंदे, जम मार करे तिन खुआर, नानक किसनो आखी है, जां आपे बख्शन हार पौड़ी, तू कर

नानक साई भली परीत जित साहिब सेती पात्र है पौड़ी हर इको दाता सेवी है हर एक त्याई है हर इको दाता मंगी है मन चिंदिया पाई है जे दूजे पासों मंगी है ता लाज मराई है जिन सेविया तिन फल पाया तिस जन की सब भुख गवाई है नानक तिन विकटों वारिया जिन अन दिन हिरदय हर नाम त्याई है।

नानक नाम निदान है गुरमुख पाया जाय मनमुख घर हुंदी वत ना जाननी अंधे भौंक मुए बिललाय महला तीजा कंचन काया निर्मली जो सच नाम सच लागी निर्मल ज्योत निरंजन पाया गुरमुख भ्रम पौ भागी नानक गुरमुख सदा सुख पाव है अन दिन हर बैरागी पौड़ी ते गुरसिख धन धन है जिनी गुर उपदेश सुनिया हर कन्नी गुर सतगुर नाम दृढ़ आया तिना हूं मैं दुखदा भन्नी।

की गल मन्नी जो गुरमुख नाल के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायर रूप है बिन नावै लक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही।

होने गुरु का शब्द कमाए अंतर शांत सदा सुख दर सत्य सुबा पाए नानक गुरमुख हर नाम पाया तहजे सच समाए पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई गुरमुख हर भगत हर आप लहाई श्लोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावें सौ गेड़ा आवो जाओ नानक गुरमुख सहज।

0: खलवाया हर नावै की वडियाई कर्म प्राप्त होवै गुरमुख विरलै किन्हें त्याया।
1: श्लोक महला तीजा। बिन सतगुर सेवे जगत मोआ बिरथा जन्म गवाए दूजै भाए।

पछताए महला तीजा। इस जग में पुरख एक है, और सगली नार सबाई, सब कट भोग वह लिप्त रह, लख ना लखना जाई। पूरा गुर वे खालिया, शब्दे सूझी पाई, पुरखे सेव है से पुरख हो वह, जिन्नी हों मैं शब्द जलाई, तिसका शरीक को नहीं।

सेवक सेवा करी हर सच्चे के गुण गाई नानक वेख विगस्या हर सच्चे की वडियाई पौड़ी जिनकै हर नाम वसे।

पौड़ी जिन उपाय जी तिन हर राखिया अमृत सच्चा नाव भोजन चाखिया तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया सब अंदर एक वरत है तिन विरले लाखिया जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया। श्लोक महला तीजा सतगुरु नो सब को वेखदा जेता जगत संसार दिठे मुक्त ना हो गई जिचर शब्द ना करे विचार हम मैं मैल ना चुकई नाम ना लगे प्यार इक आपे बख्श मलायन दुबदा ताज विकार नानक एक दर्शन देख मर मिले सतगुर हेत प्यार। महला तीजा सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार दूजे भाए।

0: मन हर सरनी पड़ रही है।
1: हर बिन कोई मार जीवाल न सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख इत तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यो झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यो वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंधन वहन रत्ता हित कारी शब्द सुरत ना आई रंग ना राता रस नहीं भेदया मनमुख पत गुआई साध सभा मह सहज ना चाखिया

मैं मूर्ख किस दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, डुबदा पत्थर लीजै, सोठ महला पहला, हौ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी, अमृत चाख परम रस राते, ठाकुर शरण तुम्हारी, करता तू मैं मान निमाणी, मान महत नाम धन पल्ले, साच्या शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम पूरे होशे, तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते एहनस प्रभाते, हर रसना जप मान रे, तुम साचे हम तुम ही राचे, शब्द भेद फुन साचे, एहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे, अवर ना दीसै किस सालाही, तिसह शरीक ना कोई, प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई, सोठ महला पहला, अलख अपार अगम अगोचर, ना तिस काल ना कर्मा, जात अजात अजोनी संपहो, ना तिस भाओ ना भरमा, साचे सचियार विटोह कुरबान, ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचै शब्द नीशान रहाओ, ना तिस मात पिता सुत बंदक, ना तिस काम ना नारी, अकुल निरंजन अपर परंपर, सगली जोत तुम्हारी, कट कट अंतर ब्रह्म लुकाया, कट कट जोत सबाई, बजर कपाट मुक्ते गुरमति, निर्भय ताड़ी लाई, जंत उपाए काल सिर जंता, वसगत जुगत सबाई, सतगुर सेव पदार्थ पावह, छूटह शब्द कमाई, सूचै भांडै साच समावै, विरले सूचाचारी, तंतै को परम तंत मलाया।

केहो रस त्यों लहू। गुर मेलै हर दे रहाउ, संत जना मिल संगति गुरमुख तीरथ होए। अट तट तीरथ मजना गुर दर्श प्राप्त हो।

बिहारी जियो सतगुर बंधन तोड़ नरारे बहुड़ ना गर्भ मजारी जियो नानक ज्ञान रतन परगासिया हर मन वसिया निरंकारी जियो सोठ महला पहला जिस जल निद कारण तुम जागे आए सो अमृत गुर पाही जियो छोड़ो हो वेस भेख चतराई दुबदा इहो फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत दुख पाव है घर अमृत घट माही जियो रहाओ अवगुण छोड़ गुणा कौ धावो कर अवगुण पछताही जियो सर अपसर की सार ना जाने फिर कीच बढ़ाही जियो अंतर मैल लोभ बहु झूठे बाहर नावो काही जियो निर्मल नाम जपो सद गुरमुख अंतर की गत ताही जियो पर हर लोभ निंदा कूड़ त्यागो सच गुर बचनी फल पाही जियो ज्यों भावै त्यों राखो हर जियो जन नानक शब्द सलाही जियो सोठ महला पहला पंच पदे अपना घर मूसत राख ना साक है की पर घर जोहन लागा घर दर राख है जे रस चाख है जो गुरमुख सेवक लागा मन रे समझ कमन मत लागा नाम विसार अन रस लोभाने फिर पछताहे अभागा रहाओ आवत को हरख जात को रोवह यह दुख सुख नाले लागा आपे दुख सुख भोग पगावै गुरमुख सो अनरागा हर रस ऊपर अवर क्या कही है जिन पिया सो तृप्तागा माया मोहित जिन इहो रस खोया।

यो गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरे सुख होई जियो पीवो अपेओ परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाइए।

प्रभ पाया छबदे हूं मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत बिचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धामदा दूजै भाई खुआया मनमुख मुगद हर नाम

आया पूरे गुरु की सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों भरम चुकाया हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा वो पाए गुर विचारा हर कै रंग राता शब्दे माता हम मैं तजे विकारा नानक नाम रत्ता इक रंगी शब्द सुवारण हारा सोठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन बिसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से पाई गुर कै शब्द परगासा हर जियो तुम आपे देहो बुझाई हर जियो तुद विटोह वारिया सद ही तेरे नाम विटोह बल जाय रहाओ हम शब्द मोए शब्द मार जवाले पाई शब्दे ही मुक्त पाई शब्दे मन तन निर्मल होआ हर वस्या मन आई शब्द गुरदाता जित मन राता हर स्यों रहे आसमाई शब्द ना जान है से अन्ने बोले से कित आए संसारा हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया जम है वारो वारा बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी मान मुख मुग्ध गोबारा आपे कर वेख मार्ग लाए भाई किस बिन अवर ना कोई जो तुर लिखिया सो कोई ना मेटै भाई करता करे सो होई नानक नाम वसया मन अंतर भाई अवर ना दूजा कोई।

आप राखै जो तेरे मन पाणी तू गुण दाता शब्द पछाता गुण कह गुणी समाणी मन मेरे हर जियो सदा संभाल अंत काल तेरा बेली होवे सदा लिब है तेरे नाल रहाव दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे ना बूझ विचारी निंदा दुष्टी ते किन फल पाया हरनाक्ष नख है बिदारी प्रहलाद जन सद हर गुण गावे हर जियो लय उबारी आपस कहो

नाई अपनी नदर करे पत राखै हर नामो दे वड्याई रहाउ पूरे गुरते आप पछाता शब्द सच्चा विचारा हृदय जग जीवन सद वस्या अज काम क्रोध अहंकारा सदा हजूर रव्या सब।

पिछाता सफल जन्म जागे आया हर रस चाख सदा मन तृप्तिया गुण गावे गुणी अगाया कमल प्रगास सदा रंग राता अनहद शब्द बजाया तन मन निर्मल निर्मल बाणी सच्चे सच समाया राम नाम की गत कोए ना बूझे गुरमत हृदय समाई गुरमुख होवे सो मग पजाने हर रस रसन रसाई जप तप संयम सब गुरते होवे हृदय नाम वसाई नानक नाम समल है से जन सोहन दर साचे पत पाई सोठ महला तीजा दुतुके सतगुर मिले उल्टी पई पाई जीवत मरै तां बूझ पाई सो गुरु सो सिख है पाई जिस ज्योति ज्योत मलाई मन रे हर हर सेती लिव लाए मन हर जप मीठा लागै पाई गुरमुख पाए हर थाए रहाउ बिन गुर प्रीत ना उपजै पाई मनमुख दूजै पाए तोह कुटह मनमुख कर्म करह पाई पल्लै किशु ना पाए गुर मिलै नाम मन रविया पाई साची प्रीत प्यार सदा हर के गुण रवै पाई गुर कै हित अपार आया सो परवान है पाई ये गुर सेवा चित लाए नानक नाम हर पाई पाई गुर शब्दी मेलाए सोठ महला तीजा घर पहला तिही गुणी त्रे भवन व्यापिया पाई गुरमुख बूझ बुझाए राम नाम लग छूटी है पाई।

तेरा मन वसै पाई सदा हर के गुण गाय रहाऊ नामै ते सब उपजे पाई नाए विसरै मर जाए अज्ञानी जगत अंध है पाई सूते गए मोहाए गुरमुख जागे ते उभरे पाई भवजल पार उतार जग मैं लाहा हर नाम है पाई हिरदै रखिया उरतार गुर सरनाई उभरे पाई राम नाम लिवलाए नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई जित लग पार जन पाए सोठ महला तीजा घर पहला सतगुर सुख सागर जागे अंतर होर थै सुख नाई हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया मर जन मैं रोवै ताही प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

आवे है। हर रस साधना आया संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, सतगुरु दाता मेल मलाव हो हर नाम देव हो आधारे रहाओ, मनसा मार दुबदा सहज सुमानी पाया नाम अपारा, हर रस चाख मन निर्मल हुआ गिल बिख काटन हारा, शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही ता फिर मरन ना होई, अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावे कोई, दाते दात रखी हाथ अपने जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया दरगाह जाप है से, सोठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वस्या, नामे नाम समाई।

लंगा आपे सागर बोहे था प्यारा गुर खेवट आप चला आपे ही चढ़ लंगदा प्यारा कर चोज वेखे पातशाह आपे आप दयाल है प्यारा जन नानक बख्श मला सोरठ महला चौथा चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज आपे खंड आपे सब लोए।

या अमृत मुख चोए रहाउ, आपे जल थल सबत है प्यारा, प्रभ आपे करे सो होए, सब नारिजक समाह दा प्यारा, दूजा अवर ना कोई।

आपे जाल बताए दा प्यारा, सब जग मछली हरे आपे, आप अपुल ना भुलई प्यारा, अवर ना दूजा जापे, आपे सिंगी नाद है प्यारा, तुने आप बजाए आपे, आपे जोगी पुरख है प्यारा, आपे ही तप तापे, आपे सतगुरे

प्यारी ज्यों हर प्रभ मेरे पाया आपे जंती जंत है प्यारा जन नानक वजह वजाया सोठ महला चौथा

प्यारी, जप नानक भगत समाहा। सोठ महला चौथा दो तुके, अनक जन्म विछड़े दुख पाया। मन मुख कर्म करे अहंकारी, साधु पर सत ही प्रभ पाया। गोविंद शरण तमारी, गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी। जब सत संग भए साधु जन, हिरदय मिलया शांत मरारी। रहाओ तू हिरदय गुप्त वस है दिन राती, तेरा भाव ना बुझ गवारी। सतगुरु पुरख मिलया प्रभ प्रगटिया, गुण गावे गुण विचारी। गुरमुख प्रगास भया शांत आई, दुर्मत बुद्ध निवारी। आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया, सत संगत पुरख तुमारी। पुरख है पुरख मिलया गुर पाया, जिनको कृपा भई तुमारी। नानक अतुल सहज सुख पाया, अन दिन जागत रह बनवारी। सोरठ महला चौथा, हर सिओ प्रीत अंतर मन भेदिया।

कृपा जल देव हो हर नाय। हो अंतर नाम मंगा दिन राती, नामे ही शांत पाई रहाओ। ज्यों चातरक जल बिन बिल लावे, बिन जल प्यास ना जाई। गुरमुख जल पावे सुख सहजे, हरिया भाए सुभाई।

हर रस अंतर पाई, नानक दीन दयाल भये है, तृष्णा शब्द बुझाई, सोरठ महला चौथा पंच पदा, अचार चरै तां सिद्ध होई, सिद्धि ते बुद्ध पाई, प्रेम के सर लागे तन भीतर, तां भ्रम काटिया जाई, मेरे गोबिंद अपने जन को देह वड़े आई।

नाही, जे को रखै लुकाई, सब किश तेरा तू अंतर जामी, तू सबना का प्रभ सोई, जिसनो दात करह सो पाई, जन नानक अवर ना कोई, झूठ महला पंजवा घर पहला ते तुके, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किस हौ जाती किस आराधी, जा सब को कीता होसी, जो जो दिसै वड्डा वडेरा, सो सो खाकू रलसी, निरपहो निरंकार भव खंडन, सब सुख नव निध देसी, हर जियो तेरी दाती राजा, मानस बपड़ा क्या सलाई, क्या तिसका मोहताजा रहा, जिन हर ध्याया सब किस तिसका, तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाता, नखोटना कब ही जाई, आनंद भया सुख।

जिन कौ कृपाल हुआ प्रभ मेरा, थे लागे गुर की बाणी। कीमत कौन करे प्रभ तेरी, तू सर्व जिया दयाला। सब किस कीता तेरा वरत, क्या हम बाल गोपाला। राख ले हो नानक जन तुमरा, ज्यों पिता पूत कृपाला। सूरठ महला पंजवा घर पहला, चौतुके गुरु गोविंद सलाहिय पाई। मन तन हिरदय तार, साचा साहिब मन वसै भाई। एहा करनी सार, जित तन नाम ना उपजै भाई। से तन होए शार, साध संगत को वारिया पाई। जिन एकंकार आधार, सोई सच आराधना पाई। जिसके सब किश होए, गुरपूरै जानाया पाई। तिस बिन अवर ना कोई रहाव, नाम मिहूने पच मोए पाई। गणत ना जाए गणी, बिन सच सोच ना पाईए पाई। साचा अगम धनी, आवन जान ना चुकई पाई। झूठी दुनी मणि, गुरमुख कोट उधारदा पाई। दे नावै एक कणी, सिमरत सात सोधिया पाई। बिन सतगुर भरम ना जाए, अनक कर्म कर थाकिया पाई। फिर बंधन पाई, चारी कुंडा सोधिया पाई। बिन सतगुर नाही जाए, वडभागी गुर पाया पाई। हर हर नाम त्याय, सच सदा है निर्मला पाई। निर्मल साची सोई, नदर करे जिस अपनी पाई। तिस प्राप्त होए, कोट मदे जन पाईए पाई। बिरला कोई कोई, नानक रत्ता सच नाम पाई। सुन मन तन निर्मल होए, सूरठ महला पंजवा दो तुके। जौ लो भाउ अभाउ इहु मानै, तौ लो मिलन दुराई। आन अपना

आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरह नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निधान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक कौ तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने, जाको तुदे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिटियो अज्ञाना, प्रगट भय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुपहाई। कहो नानक जिस भय दयाला, ता को मन ते बिसर ना जाई। सोट महला पंजवा, सगल समग्री।

साध शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात है एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सब ना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवो हो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाउ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्ब सुखा का दाता अपने दास को भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाईए हृदय त्याईए सोई करण कारण समर्थ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाए।

हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम यह हवाला।

मह सुख नहीं पाइए। हो होरेन तू सगल की मेरे मन तव आनंद मंगल सुख पाइए। काल ना भाने अंतर बिद जाने ता की कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ। अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी पार।

तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह न जाई रहाओ दुख सोग का टाहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहा सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछ ना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय अवरदा।

तब हो पूर्ण अविनाशी काम क्रोध बिख जारे महा बिखम अग्न को सागर साधु संग उधारे पूरा गुर मेत्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निधान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहे ओ परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ताकी पूर्ण काला काल क्लेश मिटे।

जीवै बिघन बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाए हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हो आ बेली सोठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हो मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवा सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु दुआरी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बिदारी सोठ महला पंजवा कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी कट कट माधो जिया संतो हो कट कट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहे सर्ब मह जल थलर मैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायु सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सोठ महला पंजवा जां कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निद पावह बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह होवह मन शीतल अग्न ना अंतर तुखी

गुर पूरा भेटियो वडभागी, जन नानक कतह ना धावहु, सूरठ महला पंजवां, जाकै सिमरन सब कछ पाई है, बिरथी काल ना जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु, जो सब मह रहे आसमाई, हर हर सिमरहो संत गोपाला, साध संग मिल नाम त्यावहु, पूर्ण होवै काला रहाउ, सार समालै नित प्रतपालै, प्रेम सहत गल लावै, कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै, सूरठ महला पंजवां, अबनासी जीयन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन कहो बरतन, बिरला पावै कोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी सरन पया सुख पाई है, बहुड़ दुख ना होई रहाओ, वडभागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई, तिन की धूर नानक दास बांचै, जिन हर नाम हृदय परोई, सूरठ महला पंजवां, जन्म जन्म के दुख निवारै, सूका मन साधारै, दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम बीचारै, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा रहाउ, समरथ पुरख पूर्ण बेधाते, आपे करनै हारा, अपना दास हर आप उभारिया, नानक नाम अधारा, सूरठ महला पंजवां, अंतर की गत तुम ही जानी, तुझ ही पाहे नबेरो, बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फेरो।

जंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपूरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए जीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोहित चढ़ लंघो बिक संसार रहाव पई कृपाल पूर्ण अविनाशी आपह कीनी सार पेख पेख नानक बिगसानु नानक नाही सुमार चौठ महला पंजवा गुरपूरै अपनी कल धारी सब घट उपजी दया आपे मेल वडाई कीनी कुसल खेम सब भया सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जप सदा निहाल रहाऊ अंतर बाहर थान तनंतर जत कत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जे वडे अवन ना कोई चौठ महला पंजवा सूख मंगल कल्याण सहज धुन प्रभ के चरण निहारिया राख नहारै राखियो बारक सतगुर ताप उतारिया उबरे सतगुर की सरनाई जाकी सेवना बिरथी जाई रहाउ धर्म है सूख बाहर पुन सूखा प्रभ अपने भय दयाला।

रतन जास गाय मिट गई चिंता सिमर अनंता सागर तरिया पाई हृदय हर के चरण वसाई सुख पाया सहज धुन उपजी रोगां घाण मटाई रहा क्या गुण तेरे आख बखाणा कीमत कहण ना जाई नानक भगत पए अबनासी अपना प्रभ भया सहाई।

गुरुग गए गुरबचनी, मन इच्छे फल पाया, मेरा गुरु पूरा सुखदाता, करन कारण समरथ स्वामी, पूर्ण पुरख बधाता रहाउ, आनंद बनोद मंगल गुण गावहु, गुरु नानक पए दयाला, जय जयकार पए जग भीतर, हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

आप गवाया भाई ठांड पई संसार अपने जी जंत आपे राखे जमह कियो हटतार हर के चरण हृदय उरतार सदा सदा प्रभ सिमरिय भाई दुख किल बिख काटन हार रहाओ तिसकी सरणी उबरै भाई जिन रखिया सब कोय करन कारण समरथ सो भाई सच्चे सच्ची सोए नानक प्रभु त्याइए भाई मन तन शीतल होए चौठ महला पंजवा संतो हर हर नाम त्याय सुख सागर प्रभ विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रभ भये दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निदान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पात राखी परमेश्वर उदरिया सब संसारू सोठ महला पंजवां।

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाओ। अन दिन नानक नाम त्याए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे। ज्यों बारिक पित माता सूरठ महला पंजवां घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदारो नह पति आया। उमराव हो आग्या तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतो ना जाई। गोविंद भेटे।

सोच हमारी कर स्नान ग्रह आए आनंद मंगल सुख पाए संतो राम नाम निस्तरिय उठत बैठत हर हर त्याई है अन दिन सो कृत करिए रहाओ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ पा।

जी जंत सब पए पवित्रा, सतगुर की सच साखी, बिघन बनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दिरड़ाया, होए पाप पए सब पावन, जन नानक सुख का।

हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ। हर चरण की ओत सतानी, सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया। हर रसक रस